0: में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
1: जी मालिक, ये बात तो है।
0: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं। बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहां की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
1: जी मालिक, कोशिश करता हूं। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
0: अच्छा,
1: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 सेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
0: भाई इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
1: जी मालिक।
2: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
1: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
0: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा। तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
2: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहां जाऊं। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, फुचकारा और बोल उठा,
1: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूं तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा, मेरी प्यारी सुंदरिया।
2: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
0: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 सेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
1: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 सेर दूध दोहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा।
0: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
1: जी सेठ जी।
2: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
0: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
1: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
0: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
2: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी
1: सुंदरिया, तुम मेरी प्यारी सुंदरिया।
2: वो अपराधी

0: ने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, अब मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
1: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
0: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
1: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं उनका क्या होगा?
0: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
2: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
0: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
2: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
1: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। अरे, तुमसे यहां मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
0: जी सेठ जी।
1: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले हमसे मिलने जरूर आना।
0: धन्यवाद सेठ जी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
4: नमस्कार श्रोताओ, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
5: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
4: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
5: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
4: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
5: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
6: यही कहीं तो थी वो दुकान। कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ, वो रही।
5: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, पपीज फॉर सेल।
4: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।

0: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
1: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
2: हाँ, यहाँ से अंदर चलता हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और ले प्यारे प्यारे पपीज भी हैं। आजा आजा।
0: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
1: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है। इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
0: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
2: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
2: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
2: ओह।
3: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
2: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
2: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो।
2: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा। आप उनके दाम बताइए तो सही।
3: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
2: अच्छा,
3: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
2: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
3: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। समझो मेरी बात, वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
2: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
3: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
4: हाँ जी बताइए।
3: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
4: हाँ हाँ अभी लाते हैं, बस एक मिनट।
1: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
0: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे, लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
3: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए,

0: हो इसे?
1: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है। अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापिस चलो।
2: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा इधर आ।
3: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
2: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
3: हैं? अब अच्छा समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
2: नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
3: अरे बेटा कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
2: क्या?
3: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
2: मैडम मैं खरीदूंगा इसे, मैं इसे ही खरीदूंगा।
3: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
2: मुझे यही चाहिए।
3: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो, शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
2: नहीं।
3: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
2: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ, मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा, ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा, चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
3: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
2: यूं ही?
3: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
2: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
3: अच्छा, समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
2: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना, इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
3: पर बेटा ये तो
2: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
3: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए, मेरा मतलब है कि।
2: तो यही इसकी कीमत भी है, अब ये रहे 1500 रुपए।
3: अब
2: और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना, है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त, तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
3: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
2: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
4: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
3: अरे बेटा ये तुम्हारा?
2: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा, अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता,

0: तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
1: अरे अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस
0: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
1: बेटा।
0: इसलिए मुझे लगता है कि ये पापी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ, आजा मेरा दोस्त, आजा।
1: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो,
0: आजा।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
9: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
8: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
10: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
11: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
10: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
12: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
13: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
14: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
15: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
14: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
15: आपकी सेहत की बातें,
14: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
15: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
14: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
15: वो कहाँ पर?
14: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
15: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
14: उन्नत कृषि।

0: किसान भाइयों, आप सभी को आरजे अनु का प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और लेकर आए हैं हम आपके लिए, जी हां, सिर्फ आपके लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जो आपको देता है बहुत सारी उन्नत बातों की जानकारी। वैसे हर विषय में जो है हम कुछ खास बातें लेकर आते हैं। अभी फिलहाल रबी फसलों की बात, हम इस फसलों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और जब रबी फसलों की बात होती है तो दलहनी फसलों को हम छोड़ नहीं सकते। जी हाँ, दलहनी फसलों की आज बात होगी, और खास तौर पर आपकी आय से जुड़ी बात होगी। जी हाँ, आज आपको बता दें कि हमारा विषय है किसान की आय को दुगना करने के लिए रवी दलहन फसल की खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग। वैसे दोस्तों, हम बात करें किसान भाइयों की, तो किसान भाई हमेशा अपने मेहनत लगाते हैं इन दलहनी फसलों को उपजाने में, लेकिन जब आधुनिक तकनीक को उनसे जोड़ दिया जाए, उनकी मेहनत के साथ जोड़ दिया जाए, तो उनकी आय और भी ज़्यादा हो सकती है, दोगुना हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: और सबसे पहले तो जहाँ तक हमारा विषय है, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, वैसे तो पौष्टिकता की बात करें तो दाल जो है वो बहुत ज़रूरी है, हमारे खाने में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो। अब मुझे लगता है कि दाल के बिना हमारा जो खाना है, हमारा जो आहार है, वो अधूरा रहता है। तो सबसे पहले इसके महत्व को हम जानना चाहेंगे, भारत में दालों का क्या महत्व है।
1: किसान बंधुओं नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में दालें जो है मुख्य रूप से प्रोटीन स्रोत के रूप में भोजन का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा टिकाऊ कृषि हेतु भी मृदा की उर्वरा शक्ति को वृद्धि करने एवं आहार तथा चारे के विभिन्न रूपों में उपयोग आदि इन फसलों के लाभ हैं। आधुनिक तकनीकों को अपनाकर दलहन की वर्तमान उत्पादकता को दुगुना किया जा सकता है।
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो महत्व जाना हमने कि कैसे, मतलब क्या इसके पौष्टिकता के महत्व हमने जाना कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हमारे जो गरीब हैं वो भी अगर दाल को अपने डाइट में शामिल करें, तो उन्हें जो अतिरिक्त उनके शरीर को पोषण मिलना चाहिए वो मिल जाता है। तो आय को दुगना करने के लिए कौन कौन सी तकनीक हमारे किसान भाइयों की मेहनत के साथ जोड़ा जा सकता है।
1: यदि हम उन्नत तकनीकियों की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले उन्नतशील प्रजातियों के चयन की बात आती है, तत्पश्चात फसल उत्पादन तकनीक की, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, कृषि रसायनों का उपयोग, दलहन आधारित प्रमुख फसल चक्र, मृदा का चुनाव एवं खेत की तैयारी, बीजोपचार, उचित बीज दर एवं बुवाई का समय, पौधों की उचित संख्या, खरपतवार प्रबंधन, जल प्रबंधन, संसाधन संरक्षण, उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग एवं फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी इत्यादि है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, बिहार की बात करें, तो मुख्य रूप से बिहार में रबी दलहन फसलों में कौन कौन से प्रमुख दालों की हम बात कर सकते हैं।
1: देखिए, मुख्य रूप से जो जिनका क्षेत्रवार हम बात करते हैं, तो मुख्य रूप से हमारे बिहार में मसूर की जो खेती सबसे अधिक
0: जी
1: स्तर पर की जाती है, तत्पश्चात चने की खेती की जाती है। रबी फसलों की बात करें तो इसमें जो है कि विभिन्न दलहनी फसलों के जो व्यापक क्षेत्रों के अनुकूल उच्च उत्पादन क्षमता वाली प्रजातियों का विकास हुआ है, जिससे उत्पादकता में जो उतार चढ़ाव में कमी जो होती थी उसमें कमी आई है।
0: अच्छा।
1: तथा उत्पादकता में स्थायित्व तो आया है। अतः विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में, जिसे हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स बोलते हैं, या गैर परंपरागत क्षेत्रों के लिए उन्नतशील प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं, अतः इनके प्रयोग से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जहां तक आपने बात की कौन कौन सी
0: तकनीक
1: दलहनी फसलें जो मुख्य रूप से हैं, उसमें चना और मसूर के बारे में बताया। मसूर में भी दो तरह की किस्में होती हैं, छोटे दाने वाली और बड़े दाने वाली। इसी प्रकार से चने में दो तरह की किस्में हैं, देसी चना और काबली चना।
0: अच्छा।
1: मसूर में यदि हम छोटे दाने वाले किस्मों की बात करें, तो इसमें अरुण, हल 57, NDL1, KLS 218, PL 406, PL 639, PL 6, PL 7 और शिवालिक इत्यादि हैं। जबकि बड़े दानों में IPL 406, DPL 15, DPL 62, DPL 81 और K75, जिसे मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है, का उपयोग हम कर सकते हैं। जबकि देसी चने में GCP 105, DCP 92-3, PUSA 256, JG 14, PUSA 362, PG 186,

0: एंड पूसा 372 इत्यादि प्रमुख हैं। काबुली चने के बारे में यदि हम कहें तो इसमें उन्नत किस्मों में सुभरा, पूसा चमत्कार और GNG 1969 इत्यादि प्रमुख हैं।
1: अच्छा, और जहाँ तक तकनीक की बात हो रही थी डॉक्टर साहब, तो फसल उत्पादन तकनीक के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कुछ।
0: जी, इन सभी तकनीकों के बारे में हम विस्तार से आपको बताते हैं, जिसमें हमने आपको उन्नतशील प्रजातियों के चयन के बारे में आप बताया। अब हम बात करेंगे फसल उत्पादन तकनीक के बारे में। इसमें महत्व है कि सिंचाई, उर्वरक तथा कृषि रसायनों के प्रयोग के बारे में यदि हमारे कृषक बंधु जागरूक हों तो दलहन की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। सामयिक बुवाई के साथ साथ पर्याप्त पौधों की संख्या, राइजोबियम कल्चर तथा कवकनाशियों से बीजोपचार, खरपतवार प्रबंधन तथा संसाधन संरक्षण तकनीक जैसे बिना लागत के अथवा न्यूनतम निवेश वाले आदान भी उत्पादकता की वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम दलहन आधारित प्रमुख फसल चक्र को अपनाएं, जैसा कि उत्तर पूर्वी मैदानों एवं उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में रबी ऋतु हेतु यदि आप चना ले रहे हैं या मसूर ले रहे हैं, इसके साथ आप सरसों, चाहे तो सूरजमुखी या अलसी प्रमुख रूप से इंटर क्रॉप के रूप में ले सकते हैं।
1: अच्छा,
0: और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है मृदा एवं खेत की तैयारी। तो प्रमुख ध्यान देने योग्य बात यह है कि उचित जल निकास वाले खेत जिनमें घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक ना हो तथा पीएच मान 6.5 से 8.5 के बीच हो एवं बलुई दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी दलहनी फसलों के आदर्श होती हैं। दलहनी फसलों को सामान्यतः बहुत अच्छे खेत की आवश्यकता नहीं होती है। एक गहरी जुताई के बाद क्रॉस हैरोइंग तथा पाटा लगाने से बुआई हेतु खेत तैयार हो जाता है। मसूर जैसी दलहनी फसलों को यूटेरा पद्धति से बुआई करने हेतु किसी भी प्रकार की कृषण क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये भी सुना है कि बीजों को पहले बीजोपचार करना जब बहुत ज़रूरी होता है, तो किन चीज़ों से बीजोपचार करें, कैसे करें, उसके बारे में बताएं।
0: जी, बुआई से पूर्व बीजों का उपचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बुआई से पूर्व मृदा जनित रोगों से बचाव हेतु बीजों को कवकनाशी जैसे कैप्टॉन या थीरम 2-3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एवं फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राइजोबियम एवं फास्फेट घुलनशील जीवाणु जिसे PSB कहते हैं 15-20 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी देखा जाए हमारे बिहार क्षेत्र में रवि दलहनी फसलों की हम बात करते हैं, तो चना और मसूर जो है एक प्रमुख दलहनी फसल है हमारे बिहार क्षेत्र की, तो इसकी बीज दर क्या होती है ये जानना चाहेंगे हम, और बुआई का उचित समय क्या है इसका।
0: जी, बुआई हेतु बीज शुद्ध, रोग तथा भौतिक क्षति मुक्त तथा 90-95% अंकुरण क्षमता वाला होना चाहिए। चने की बात करेंगे यदि हम, तो इसमें छोटी दाने वाली प्रजातियाँ जिनके 100 दाने का वजन 12-15 ग्राम होता है की बीज दर 50-60 kg प्रति हेक्टेयर होती है, तथा मध्यम एवं बड़े दाने वाली प्रजातियाँ जिनके बीजों का 100 दाने का वजन 25 ग्राम तक होता है कि 80-85 kg प्रति हेक्टेयर उचित रहती है। बुआई का उचित समय उत्तर पूर्वी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बरानी दशाओं में अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा तथा सिंचित दशाओं में नवम्बर का प्रथम पखवाड़ा है। मसूर की बात करते हैं तो छोटे दाने वाली प्रजातियां हेतु बीज की दर 40-45 kg पर हेक्टेयर तथा बड़े दाने वाली प्रजातियां हेतु 55-60 kg प्रति हेक्टेयर उचित होती है। उत्तर पूर्वी मैदानों में या मध्य क्षेत्र में भी नवंबर का दूसरा पखवाड़ा बुआई का उचित समय है। यदि नमी की कमी है तो उस अवस्था में मध्य अक्टूबर बुआई का उचित समय होता है। बुआई में देरी की अवस्था में अथवा धान से खाली हुए क्षेत्रों में यूटेरा पद्धति से बुआई हेतु बीज दर 15-20% बढ़ा देनी चाहिए।
1: अच्छा, इन फसलों की सस्य क्रियाओं की भी बात करते हैं हम, तो उनके बारे में बताएं हमें।
0: जी, सस्य क्रियाओं से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चने में और मसूर में पौधों की प्रॉपर संख्या का होना आवश्यक है। अतः चने में 33-40 पौधे प्रति मीटर स्क्वायर तथा मसूर में 80 पौधे प्रति मीटर स्क्वायर उपयुक्त माने जाते हैं। सस्य क्रियाओं में सबसे पहले बात करते हैं हम उर्वरक प्रबंधन की, तो सामान्य दशाओं में जो नाइट्रोजन है आपका 15-20 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम तथा पोटेशियम 20 किलोग्राम एवं गंधक 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बुआई से पूर्व आधारीय प्रयोग संस्तुत किया जाता है। फली बनते समय अथवा देर से बोई गई फसल में शाखाओं के बनते समय 2% यूरिया या DAP के घोल से

0: छिड़काव करने से समुचित पैदावार मिलती है। मृदा में विशिष्ट सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने पर 15 से 20 केजी जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर तथा 1 से 1.5 केजी अमोनियम मोलिब्डेट का प्रयोग की संस्तुति की जाती है। इसके बाद बात आती है खरपतवार प्रबंधन की। उत्पादकता में कमी को रोकने हेतु फसलों को खरपतवार से मुक्त रखना आवश्यक है। इसके लिए गुड़ाई एवं हाथ से निकाई जैसी कर्षण क्रियाओं के साथ खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग उचित रहता है। खरपतवारों की आरंभिक वृद्धि पर नियंत्रण हेतु बुआई के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर पैंडी मिथिलिन 1 से 1.5 केजी AI प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक जल प्रबंधन की बात है तो हल्की मृदाओं में अधिकांशतः शीतकालीन दलहनी फसलों में शाखाएं निकलते समय तथा फली बनते समय 1 से 2 सिंचाई लाभप्रद पाई गई है। फूल आने की अवस्था में सिंचाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा फूलों के गिरने तथा अतिरिक्त वानस्पतिक वृद्धि होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दलहनी फसलों में स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करना सर्वोत्तम है। संसाधन संरक्षण में धान मसूर फसल प्रणाली में इनके फसल अवशेष के समावेश से उत्पादकता में वृद्धि होती है। धान कटने के बाद नो टिल सीड ड्रिल की सहायता से चना की बुआई करने और धान की पुआल की पलवार खेत में छोड़ने पर मृदा में नमी का पर्याप्त संरक्षण होता है और चना की उपज में वृद्धि होती है।
1: जी।
0: यदि मक्का और चना फसल प्रणाली अपनाई गई है तो मक्का में 30 केजी फास्फोरस प्लस 5 टन गोबर की खाद तथा चना में 40 केजी फास्फोरस और PSP के प्रयोग से फास्फोरस की उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है।
1: तो डॉक्टर साहब, अभी एक और जो दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वो है उन्नत कृषि यंत्र और फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी, तो इसका महत्व तो क्या है इसमें?
0: देखिए, उन्नत कृषि यंत्रों को अपनाकर आप अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। इसमें उन्नत कृषि यंत्रों में जैसे मानव संचालित नो टिल सीड ड्रिल आता है। ये छोटे किसानों के लिए बहुत ही कम खर्च वाला तथा धान से खाली हुए खेतों में संचित नमी में लाइन से बुआई के लिए उपयुक्त होता है।
1: ये उन्नत कृषि यंत्र महंगे होते हैं या फिर मतलब नहीं, हमारे छोटे किसान भाई
0: कम खर्च वाले हैं और छोटे किसानों के लिए बहुत उपयोगी हैं।
1: अच्छा।
0: और इसकी बुआई क्षमता केवल 2 व्यक्तियों की सहायता से 0.05 हेक्टेयर प्रति घंटा की जा सकती है। इसके बाद बात आती है वर्टिकल थ्रेसर की। न्यूनतम समायोजन के साथ विभिन्न दलहनी फसलों के लिए उपयोगी है वर्टिकल थ्रेसर। और चना के लिए इसकी क्षमता जो है 300 केजी प्रति घंटा है।
1: अच्छा।
0: इसके बाद बिनुअर आता है, सक्शन बिनुअर। इसकी ओसाई क्षमता, ये ओसाई के लिए प्रमुख रूप से उपयोग की जाती है। इसकी ओसाई क्षमता जो है 150 केजी प्रति घंटा है। इसके द्वारा धूल मिट्टी और हल्के अपमिश्रण चूषण विधि द्वारा परिचालक की विपरीत दिशा में उड़ा दिए जाते हैं।
1: अच्छा।
0: जहाँ तक फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी की बात करें, क्योंकि दलहनी फसलों में जैविक और अजैविक दोनों तरह के कारक होते हैं जिसकी वजह से फसल को नुकसान होता है, तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसलों का जैविक तथा अजैविक कारकों से बचाव अत्यंत आवश्यक है। समेकित रोग एवं कीट प्रबंधन, जिसमें रोगरोधी प्रजातियों के स्वस्थ बीजों का प्रयोग, कृषण क्रियाओं में बदलाव, कवकनाशी तथा जीवनाशी तत्वों का प्रयोग सम्मिलित है, उत्पादकता को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चने की बात करें तो बुआई से पहले क्या करें, बुआई के समय क्या करें और खड़ी फसल में क्या करें, इसके बारे में आपको बताते हैं। बुआई के पूर्व रोगरोधी प्रजातियों का चयन करें। सूत्रकृमि, जिसे हम निमेटोड्स बोलते हैं, ग्रसित खेतों में गर्मी में गहरी जुताई तथा निबोली के चूर्ण का 50 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। बुआई के समय उचित समय से बुआई करना अत्यंत आवश्यक है। कार्बेंडाजिम प्लस थीरम, 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस 2 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम सीड अथवा ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम और 1 ग्राम कार्बोक्सिन प्रति किलोग्राम सीड से बीज उपचार करें। निमेटोड से ग्रसित मृदा में कार्बोसल्फान 1% से बीजों का उपचार करें। खड़ी फसल में फली भेदक चना में बहुत लगते हैं, तो फली भेदक कीट से होने वाली क्षति को कम करने के लिए पहली बात की 4 से 5 यौन आकर्षण जाल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। नंबर 2, चिड़ियों को बैठने के लिए टी आकार के अड्डों का प्रावधान करें। इसमें 35 से 40 टी आकार के अड्डे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं। यदि फली भेदक का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से

0: प्राय यह है कि 1 से 2 लार्वा प्रति मीटर पंक्ति में पहुंच जाए तो कीटनाशी का छिड़काव करें। इसमें सबसे पहले निबोली के 5% शत का प्रथम छिड़काव करें। द्वितीय छिड़काव NPB न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु का 250 लार्वा समतुल्य प्रति हेक्टेयर की दर से करें और अंत में आवश्यकता होने पर इंडेक्सोकार्ब 1 ml प्रति लीटर पानी का तृतीय छिड़काव करें। मसूर में बुआई के पूर्व क्या करें, बुआई के समय क्या करें और खड़ी फसल में क्या करें, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। बुआई से पूर्व मृदा जनित रोगों तथा सूत्रकृमि से होने वाली क्षति से बचाव के लिए गर्मी में गहरी जुताई करें। बुआई के समय सामयिक बुआई से फसल को उकठा रोग से होने वाली हानि से बचाया जा सकता है। मृदा जनित रोगों पर नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम प्लस थीरम अथवा ट्राइकोडर्मा प्लस कार्बोक्सिन से बीजोपचार करें। अलसी के साथ अंतःशस्य क्रियाएं एवं मिश्रित खेती से उकठा रोग का प्रकोप कम किया जा सकता है। खड़ी फसल में माहू का प्रकोप होने पर डाइमेथोएट 0.03% का छिड़काव करें। रतुआ रोग के नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक 0.2 से 0.3% अथवा मैंकोजेप 0.02% का छिड़काव करें। रोगग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। आदि इन सभी उन्नत तकनीकियों को अपनाकर किसान भाई अपनी आय को दुगना कर सकते हैं तथा फसल की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने विस्तार में जाना कि कैसे आप अपने आय को दुगना कर सकते हैं रवी दलहन फसलों की खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन अगले विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 FM ग्रीन पर। तो सुनते रहे उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करे। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दे कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करे जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दे, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर।

0: www.gov.in.
1: हर घर सूर्य घर
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी साथी RJ उमा। दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही एक चिंता हर घर में बढ़ जाती है, मच्छर, बुखार, कमजोरी और सबसे बड़ा डर मलेरिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बीमारी जो सालों से हमारे आसपास है, क्या इसे खत्म किया जा सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारी श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं हमारे अपने गांव-गांव में स्वास्थ्य की अलख जगाने वाले सेहतिया सिंह।
1: धन्यवाद RJ बाबू और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का भी दिल से धन्यवाद।
0: दोस्तों, आज की शुरुआत मैं एक सच्ची कहानी के साथ करना चाहती हूँ। ये कहानी है भागलपुर के एक छोटे से गांव की, जहाँ रहने वाला 8 साल का बच्चा सोनू।
1: हाँ RJ बाबू, मैं भी उस बच्चे को जानता था।
0: गर्मी का मौसम था और गांव में पानी जमा था, मच्छर बहुत हो गए थे, पानी जमा था, इसलिए सोनू को हल्का बुखार आया। परिवार ने सोचा साधारण बुखार है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा।
1: लेकिन वो कोई साधारण बुखार नहीं था, वो मलेरिया था।
0: 3 दिन बीते, बुखार बढ़ता गया और शरीर कमजोर होता गया। जब अस्पताल ले गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
1: अगर समय पर जांच हो जाती, अगर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाता तो आज सोनू हमारे बीच होता।
0: दोस्तों, मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये लापरवाही और जानकारी की कमी की कीमत है। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे मलेरिया के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं और हम मलेरिया दिवस भी मनाते हैं, विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं हर साल 25 अप्रैल को।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।

0: विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, जब 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा में इसे तय किया गया। इस दिन का मकसद सिर्फ एक है, पूरी दुनिया को एक साथ लाकर मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी को खत्म करना। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक चुनौती है जिसे हमें मिलकर हराना है।
1: तो भैया, जो हम मलेरिया दिवस मनाते हैं, इसके पीछे क्या सिर्फ जागरूकता ही एक वजह है या फिर इसके पीछे और भी कोई उद्देश्य है?
0: नहीं, ये सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं है। ये दिन सरकारों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को एक मंच पर लाता है, ताकि हम सब मिलकर मलेरिया को रोकने, उसका इलाज करने और अंत में उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए काम कर सकें। इस दिन दुनिया भर में कई गतिविधियां होती हैं, जैसे लोगों को जानकारी देना, नई रिसर्च साझा करना, स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाना और सरकारों से ये मांग करना कि वे इस बीमारी के खिलाफ लगातार निवेश और प्रयास करें।
1: और भैया, इस साल की थीम क्या है और उसका मतलब क्या है, ये भी आप हमें समझा दीजिए।
0: इस साल की थीम है ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। इसका मतलब है कि अब हमारे पास वो ज्ञान, वो तकनीक और वो संसाधन हैं, जिनसे हम मलेरिया को खत्म कर सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि हम कब करेंगे, और जवाब है अभी।
1: सिहतिया भैया, अगर आसान भाषा में बताएं तो मलेरिया आखिर क्या होता है?
0: देखिए, मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से होती है। ये परजीवी हमारे शरीर में तब आता है जब एक संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर हमें काटती है। जब ये मच्छर काटता है तो ये परजीवी हमारे खून में चला जाता है और फिर सीधे हमारे लीवर और खून की कोशिकाओं पर हमला करता है।
1: मतलब ये शरीर के अंदर फैलता रहता है।
0: हाँ, और यही वजह है कि इसके लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे तेज बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, उल्टी और अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये दिमाग तक भी पहुंच सकता है, जिसे सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं, जो जानलेवा हो सकता है।
1: भैया, आपने कहा कि अब हमारे पास तकनीक है, तो क्या सच में मलेरिया खत्म किया जा सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। अब मलेरिया के लिए वैक्सीन भी आ चुकी है, जो 25 देशों में दी जा रही है और हर साल लगभग 1 करोड़ बच्चों को सुरक्षा दे रही है। इसके अलावा नई दवाइयां आई हैं, लंबे समय तक असर करने वाले इंजेक्शन आए हैं और यहां तक कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं। अब जो मच्छरदानी इस्तेमाल हो रही हैं उनमें नई तकनीक है और 2024 में जो नई मच्छरदानियां बांटी गईं उनमें से 84% अगली पीढ़ी की थीं, जो ज्यादा असरदार हैं।
1: तो इसका मतलब दुनिया में मलेरिया कम हुआ होगा?
0: हाँ, पिछले 20 सालों में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। 2000 के बाद से अब तक 2.3 अरब मलेरिया के मामले और 1.4 करोड़ मौतें रोकी जा चुकी हैं। 47 देश ऐसे हो चुके हैं जहां मलेरिया पूरी तरह खत्म हो चुका है। कई देशों में मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है और कुछ क्षेत्रों में तो 90% तक कमी आई है।
1: कम हुआ है, लेकिन फिर भी मलेरिया अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ है?
0: यही सबसे बड़ी चिंता है। 2024 में अभी भी 28.2 करोड़ मलेरिया के मामले सामने आए और 6.1 लाख लोगों की मौत हुई। इसका मतलब है कि हमने प्रगति तो की है, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है।
1: और इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
0: चुनौतियां कई हैं। पहली चुनौती है दवाइयों के प्रति प्रतिरोध। कुछ जगहों पर मलेरिया की दवाइयां पहले जितनी असरदार नहीं रही हैं। दूसरी चुनौती है मच्छरों का कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध। तीसरी समस्या है जांच में दिक्कत। कुछ मामलों में टेस्ट सही परिणाम नहीं दे पाते। और एक नई समस्या है नए तरह के मच्छर, जो शहरों में भी फैल रहे हैं।
1: अच्छा, एक और सवाल जो मेरे मन में है कि क्या मलेरिया सभी जगह समान रूप से होता है?
0: नहीं, ये ज्यादातर गरीब और पिछड़े इलाकों में ज्यादा होता है। जहां साफ पानी की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं, वहां यह बीमारी ज्यादा फैलती है। इसीलिए इसे खत्म करना सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि समानता का भी सवाल है।
1: और क्या सिर्फ वैज्ञानिक समस्याएं हैं या और भी कोई दिक्कतें हैं?
0: नहीं, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। 2024 में मलेरिया के लिए लगभग

0: 3.9 अरब डॉलर का फंड मिला, जबकि जरूरत 9.3 अरब डॉलर की थी, मतलब आधे से भी कम पैसा मिल रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर युद्ध, बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी मलेरिया को बढ़ा रही हैं।
1: भैया, आपने पहले फंड की कमी की बात की थी, तो आप इसे आसान भाषा में समझाइए कि फंड की कमी कैसे आ रही है।
0: देखिए, मलेरिया से लड़ने के लिए दवाइयां चाहिए, मच्छरदानियां चाहिए, जांच मशीनें चाहिए, स्वास्थ्य कर्मचारी चाहिए, इन सबके लिए पैसे चाहिए। लेकिन अभी जितना पैसा मिल रहा है वह जरूरत से आधा भी नहीं है। इसका मतलब है कि कई जगहों पर जरूरी सुविधाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं।
1: भैया, आपने एक और बात कही थी जलवायु परिवर्तन की, तो जलवायु परिवर्तन का मलेरिया से क्या संबंध है?
0: बहुत गहरा संबंध है। आजकल मौसम तेजी से बदल रहा है, बारिश का समय बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इन सब कारणों से मच्छरों के पनपने की जगह और समय दोनों बढ़ गए हैं। पहले जो इलाके सुरक्षित माने जाते थे वहां भी अब मलेरिया के केस आने लगे हैं। मतलब ये सिर्फ एक बीमारी नहीं रही, ये पर्यावरण से जुड़ी समस्या भी बन चुकी है।
1: अब अगर हम अपने देश की बात करें भैया, तो हमारा भारत कहाँ खड़ा है इस सूची में?
0: भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और मौतों में 80% की कमी आई है। 2024 में भारत में लगभग 2.5 लाख मामले और 86 मौतें दर्ज की गईं। लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं, खासकर दूर दराज इलाकों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में और जहां स्वास्थ्य सेवाएं कम पहुंचती हैं।
1: जैसे कि आपने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं कुछ जगहों पर कम पहुंचती है, और इसके अलावा भारत में सबसे बड़ी समस्या कहाँ है?
0: सबसे ज्यादा चुनौती दूर दराज इलाकों में है, जैसे जंगल वाले क्षेत्र, पहाड़ी इलाके, वहां पहुंच पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
1: तो इतनी समस्याएं हैं, ऐसे में भारत का लक्ष्य क्या है मलेरिया को लेकर?
0: भारत का लक्ष्य है कि 2027 तक देश में एक भी स्थानीय मलेरिया का मामला न हो और 2030 तक इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।
1: और सरकार इस पर काम कैसे कर रही है?
0: सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। गांवों में आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। पीएचसी और सब सेंटर में मुफ्त जांच और दवाइयां उपलब्ध हैं। इसके अलावा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT की मदद से तुरंत पता लगाया जा सकता है कि मलेरिया है या नहीं, और जो दवाइयां दी जाती हैं उन्हें ACT यानी आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी कहते हैं, जो बहुत प्रभावी है।
1: सिहतिया भैया, आपने बताया कि भारत मलेरिया को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन जरा विस्तार से बताइए कि देश में इसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
0: बहुत अच्छा सवाल है आरजे, क्योंकि सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि मजबूत व्यवस्था और लगातार प्रयास से ही मलेरिया जैसी बीमारी को हराया जा सकता है। भारत में मलेरिया नियंत्रण के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलता है, जिसे पहले राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहा जाता था, और अब इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के तहत और मजबूत किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मलेरिया के मामलों को कम करना, समय पर पहचान करना और सही इलाज देना।
1: तो क्या इसके लिए कोई खास योजना भी बनाई गई है, इसके बारे में भी बताइए।
0: हाँ बिल्कुल, भारत ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन तैयार की है, जिसमें साफ तौर पर लक्ष्य तय किए गए हैं। पहले मलेरिया के मामलों को तेजी से कम करना, फिर स्थानीय स्तर पर संक्रमण रोकना और अंत में पूरे देश से मलेरिया को खत्म करना। इसी के तहत भारत ने राष्ट्रीय रणनीतिक योजना नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन भी बनाई है, जिसमें हर जिले को उसकी स्थिति के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां मलेरिया ज्यादा है, वहां ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्यादा संसाधन भेजे जाते हैं, और जहां कम है वहां निगरानी मजबूत की जाती है ताकि बीमारी दोबारा ना फैले।
1: ये तो बात हो गई योजना की, लेकिन आप ये बताइए भैया कि जमीन पर क्या होता है और क्या हो रहा है?
0: जमीन पर बहुत काम होता है, बस हमें उसका एहसास नहीं होता। गांवों में नियमित

से इंडोर रेसिडुअल स्प्रे IRS किया जाता है, यानी घरों की दीवारों पर दवा का छिड़काव, जिससे मच्छर मर जाते हैं। लोगों को लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट LLIN यानी मच्छरदानी दी जाती है, जो कई सालों तक मच्छरों से बचाव करती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बुखार वाले मरीजों की पहचान करते हैं और तुरंत जांच करवाते हैं।

0: स्वास्थ्य टीम वहां जाकर आसपास के लोगों की भी जांच करती है ताकि बीमारी फैलने से पहले ही रोकी जा सके।
1: लेकिन भैया, क्या सिर्फ सरकार से ये संभव है?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार जितना भी प्रयास कर ले, अगर समुदाय साथ नहीं देगा तो मलेरिया खत्म नहीं हो सकता। अगर लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर पानी जमा होने देंगे, अगर बुखार होने पर जांच नहीं कराएंगे तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।
1: तो इसमें आम लोगों की भी भूमिका होगी?
2: सबसे बड़ी भूमिका आम लोगों की ही है। अगर हम अपने घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे, मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे, समय पर जांच कराएंगे और पूरा इलाज करेंगे तो मलेरिया को रोका जा सकता है।
1: भैया, गांव में ना कई तरह की बातें फैलती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मलेरिया सिर्फ गंदे पानी से होता है और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि मलेरिया खुद ही ठीक हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: यही सबसे खतरनाक बात है। मलेरिया सिर्फ गंदगी से नहीं बल्कि संक्रमित मच्छर के काटने से होता है और अगर इसका इलाज समय पर न हो तो यह जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए बुखार को हल्के में न लें।
1: लेकिन एक और बात है कि लोग अक्सर मलेरिया का इलाज या कोई किसी भी तरीके का इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं और खास तौर से मलेरिया का इलाज भी।
2: यही सबसे बड़ी गलती है। जब दवा पूरी नहीं ली जाती तो बीमारी अंदर ही अंदर बनी रहती है और फिर दोबारा उभरती है और यही कारण है कि दवाओं के प्रति प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसलिए अगर डॉक्टर ने 3 दिन या 7 दिन की दवा दी है तो उसे पूरा करना बहुत जरूरी है।
1: तो आखिर इसका समाधान क्या है?
2: समाधान बहुत स्पष्ट है। समय पर जांच, सही इलाज, मच्छरों से बचाव और सही जानकारी और सबसे जरूरी मिलकर काम करना।
1: तो भैया, ऐसे में सबसे बड़ा बदलाव कहाँ चाहिए?
2: सबसे बड़ा बदलाव सोच में चाहिए। हमें ये समझना होगा कि बुखार छोटा नहीं होता और इलाज अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जब ये सोच हर घर तक पहुंच जाएगी तब मलेरिया अपने आप खत्म होने लगेगा।
1: सेहतिया भैया, क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जहां सही समय पर इलाज से किसी की जान बची हो?
2: हाँ, और यही उम्मीद है। बिहार के एक गांव में एक महिला थी, सरिता। उसे तेज बुखार हुआ लेकिन इस बार उसने इंतजार नहीं किया, वह तुरंत आशा दीदी के पास गई। जांच हुई, मलेरिया निकला। उसे समय पर दवा मिली, उसने पूरा कोर्स किया और आज वह पूरी तरह स्वस्थ है और खुद गांव में लोगों को जागरूक करती है।
1: मतलब फर्क सिर्फ एक फैसले का है।
2: हाँ, एक फैसला, समय पर जांच कराने का और पूरा इलाज करने का।
1: भैया, क्या आपको लगता है कि भारत मलेरिया को खत्म कर पाएगा?
2: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास योजना भी है, संसाधन भी है और अनुभव भी है। बस जरूरत है लगातार प्रयास, सही दिशा और लोगों की भागीदारी की। अगर सरकार, स्वास्थ्य कर्मी और आम जनता तीनों साथ आ जाएं, तो 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत का सपना जरूर पूरा होगा।
1: सेहतिया भैया, आज आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। दोस्तों, याद रखिए, मलेरिया कोई छोटी बीमारी नहीं है लेकिन इसे हराया जा सकता है।
2: आज समय आ गया है कि हम सब मिलकर कहें, अब हम कर सकते हैं और अब हमें करना ही होगा।
1: दोस्तों, अब हमारे पास ज्ञान है, दवा है, साधन है, अब बहाना नहीं चलेगा।
2: अब हम कर सकते हैं और अब हमें करना ही होगा। मलेरिया खत्म होगा जब हम सब साथ होंगे।
1: तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम मिलकर लेंगे सेहत की शपथ।
3: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर। नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
9: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
10: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
9: और लाइट बिल के,
10: अब 0 रुपए कैसे दूं?
9: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
10: पक्का।
11: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
12: उन्नत कृषि।
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं नैनो कीटनाशी के बारे में, यानी कि नैनो पेस्टिसाइड के बारे में। ये क्या है और आजकल क्यों कृषि विशेषज्ञ विशेष सलाह दे रहे हैं कि नैनो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत लंबे समय से किसान भाई बहन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें कहा जाता है कि नैनो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। तो आखिर अंतर क्या है नैनो पेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड में, और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
13: जी थैंक यू मैम।
8: सर आपसे सबसे पहला सवाल, जो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, कि नैनो पेस्टिसाइड यानी कि नैनो कीटनाशी क्या है?
13: नैनो पेस्टिसाइड, जिसको कि नैनो कीटनाशी भी बोलते हैं, यह उन्नत इंजीनियरिंग कृत फार्मुलेशन है जो नैनो तकनीकी का प्रयोग करके किया जाता है। और इसमें जो कीटनाशक तत्वों का आकार जो होता है वह 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में समाहित रहता है, या डायरेक्ट इसमें या प्रत्यक्ष

0: रूप से नैनोकन को यूज करते हैं, और साथ ही साथ यह जो है ना कुशल एवं लक्षित होता है उसे नैनो कीटनाशी कहा जाता है। जैसे नैनो सिल्वर, नैनो कॉपर, नैनो जिंक ऑक्साइड इत्यादि इनके उदाहरण माने जाते हैं।
1: ये इतना ज़रूरी क्यों है?
0: ज़रूरी अभी के परिप्रेक्ष्य में जो किसान भाई जैसे पहले परंपरागत जो कीटनाशी होते थे उसमें कुछ बहुत सारे महत्व बिंदु है जिसको कि इसमें नहीं समाहित किया गया है, जैसे कि उपयोग करने का तरीका, उसका मात्रा, यह सब इसमें कम हो गया है। तो जैसे मुख्य सब इनकी विशेषताएं हैं या महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह लक्षित वितरण प्रणाली पे काम करता है, यह जहाँ पे चाहिए जितना उतना ही यह काम करता है, यह इसका बड़ा मुख्य पहलू है कि नैनो कीटनाशी का। साथ ही साथ यह अत्यधिक कुशल होते हैं, जिसको कि कह सकते हैं कि यह अधिक प्रभावशाली होते हैं, कि जो परंपरागत जो हम कीटनाशी यूज करते थे उसके तुलना में यह अधिक प्रभावशाली होते हैं। और इसका जो और भी महत्वपूर्ण बात है कि जो अनावश्यक उपयोग जो आने वाले कीटनाशक रसायनों की मात्रा जो होती थी इसमें कम हो गया है, परंपरागत में ज़्यादा होती थी, और अगर मात्रा कम होगा तो यह पर्यावरण पर भी इसका जो है न प्रभाव जो है न पॉजिटिव होगा या निगेटिव कम होगा, और खेतों में नैनो कीटनाशी का अवशेष की मात्रा भी कम हो जाती है क्योंकि प्रारंभ में ही इसकी मात्रा कम होती है, और जब ये नियंत्रित जो करते हैं वह पूरा लक्ष्य बेस्ड काम करते हैं, और उपयोग में जो मात्रा होती है बहुत कम, लगभग जो है ना जो परंपरागत कीटनाशी था उसका लगभग 10% अप्रॉक्स हम इसमें यूज करते हैं, और जो है यह धीरे धीरे काम करता है जिससे कि इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है और इसमें अवशिष्ट बचने का चांस कम हो जाते हैं। और निश्चित तौर पे है कि जब हम चीज़ को कम उपयोग करेंगे, कम खर्च होगा, तो इससे जो है ना किसान भाई का जो जो खर्च आता था कम हो जाते हैं, और जो है ना जो प्रतिरोधकता जो था कि बहुत सारे कीट जो है ना जो कीटनाशी थे उससे प्रतिरोधी हो गए थे, तो इसमें जो है ना प्रतिरोधकता जो है यह भी कम है नैनो कीटनाशी में, और इससे कृषि उपज को बढ़ाने में ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है क्योंकि हम इसका उपयोग टारगेट वेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ यह हम स्थिति परिस्थिति और बुद्धिमता से नैनो कीटनाशी का उपयोग करते हैं।
1: जैसे कि सर आपने बताया कि ये बिल्कुल टारगेटेड काम करता है और बहुत कम मात्रा में बेहतर काम करता है, तो सर आप ये बताइए कि काम कैसे करता है नैनो पेस्टिसाइड?
0: जो कीटनाशी होता है यह सर्वप्रथम जब हम उस पर जहाँ चाहिए जब कीट को मारने के लिए उपयोग करते हैं, तो यह सर्वप्रथम होता है कि कीट के जो शरीर का हिस्सा है, जो बॉडी का पार्ट है, उससे जो है ना चिपकता है, और धीरे धीरे उनके बॉडी पे जो क्यूटिकल्स वगैरह पाए जाते हैं इन कीड़ों पे उसको जो है ना उससे इंट्रैक्ट करता है, और धीरे धीरे कीटों के शरीर के अंदर जाता है, और जो कि जो शरीर जो कीट के शरीर में जो पानी रहता है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगता है, और अंतोगत्वा शरीर में डिहाइड्रेशन इतना हो जाता है कि वह जो है ना कीट मरने लगता है, क्योंकि जो हम कीटनाशी का जो प्रयोग करते हैं ना इसका साइज बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, जो हम अपने सूक्ष्म आँखों से देख नहीं पाते हैं, तो और उसका सतह क्षेत्रफल जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका कार्य क्षमता सतह क्षेत्रफल का ज़्यादा होना इसका मतलब है कि उसका कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, और इसीलिए जो है ना इसका यह जो है ना कि वह टारगेटेड होते हुए काम करते हैं। तो ओवर ऑल अगर आप हम देखें तो यह क्या करता है कि जब हम डालते हैं तो लक्ष्य पे काम करता है, या पत्तियों के सतह पे जो कि चिपक जाते हैं तो वहाँ भी इंसेक्ट जब बैठ जाते हैं तो उससे उसका जो है ना इंट्रैक्शन बढ़ जाता है, और धीरे धीरे धीरे धीरे जो है ना सक्रिय तत्व इंसेक्ट के शरीर में जाते हैं, और उसका शारीरिक क्रियाएं बाधित होती है, और अंतोगत्वा उनका मृत्यु होने लगता है।
1: जी सर, आपने ये तो बताया कि नैनो पेस्टिसाइड काम कैसे करता है, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नैनो

0: पेस्टिसाइड बनाया कैसे जाता है?
1: नैनो जो पेस्टिसाइड है या कीटनाशी है, यह मुख्यतः दो तरीके से बनाया जाता है, जिसमें कि हम प्रत्यक्ष नैनोकण का उपयोग करते हैं। जैसे कुछ धातुएं जैसे जिंक ऑक्साइड है, तो आप जिंक ऑक्साइड को हम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट ही लेके उसको जो है ना छिड़काव करते हैं, जिससे कि जो है ना कीट जो होते हैं मरने लगते हैं। तो यह प्रत्यक्ष नैनोकणों का उपयोग है। और दूसरा क्या करते हैं कि जो है ना नैनो इनकेप्सुलेशन करते हैं, नैनो का कण लेते हैं, उसके अंदर जो कीटनाशी होता है, परंपरागत कीटनाशी होता है, उसको उसके अंदर में कैप्सूल की तरह रखते हैं। तो इसका क्या होता है कि कैप्सूल में बंद हो जाता है, तो इससे कीटनाशक जो है ना जो निकलता है कैप्सूल से धीरे धीरे निकलता है और इसका प्रभाव बढ़ जाता है। और कभी कभी जो है ना हम लोग कीटनाशक को नैनो इमल्सन के भी रूप में यूज करते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक चीज़ हुआ जैसे तेल वगैरह में नैनो के रूप में यूज करते हैं, जो सक्रिय मुख्य सूक्ष्म तत्व होते हैं, जिससे कि जो है ना मिल के मुख्य सक्रिय तत्व और जो नैनो कण होते हैं या कीटनाशक को के तरह काम करते हैं, और जिससे कि अंतोगत्वा कीट का मृत्यु हो जाता है।
0: सर अब आप ये बताइए कि नैनो पेस्टिसाइड कितने प्रकार के होते हैं?
1: मुख्यतः जो है कीट नैनो कीटनाशी दो प्रकार के होते हैं, जिसको कि कार्बनिक एवं अकार्बनिक कहते हैं। तो कार्बनिक रूप में मुख्यतः क्या होता है कि इसमें हम कार्बनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि विभिन्न तरह के तेल होते हैं और वह उसके लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है, तो उसको लेके हम यूज करते हैं। दूसरा है कि अकार्बनिक के रूप में, जैसे कि मतलब अकार्बनिक धातु के जो है ना जो होते हैं उसको डायरेक्ट हम जो है ना नैनोकण बनाते हैं। नैनोकण बनाने का मतलब हुआ कि उसका साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के रेंज में लाते हैं, फिर उसको डायरेक्ट हम यूज करते हैं और वह जो है ना धातु के रूप में होता है, जैसे जिंक ऑक्साइड वगैरह हुआ, जैसे नैनो सिल्वर हुआ, तो यह जो है ना उसमें बहुलता से कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से काम करता है और वह प्रत्यक्ष रूप से लक्षित होता है जहाँ पे उसको मारना चाहिए।
0: जी सर, तो अभी आपने बताया कि ये कितने प्रकार के होते हैं, और जब नैनो पेस्टिसाइड की बात करते हैं तो ऐसे भी हम जब आम कीटनाशकों की भी बात करते हैं तो कुछ सुझाव दिए जाते हैं, तो नैनो पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के वक्त भी हमें कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए?
1: जी, यहाँ मुख्य बात यह है कि यह जो हम पहले परंपरागत कीटनाशी यूज करते थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करते थे, तो मात्रा पे जरूर ध्यान रखेंगे। जो ऐसा माना जाता है कि जनरली जो परंपरागत है उसका दसवां हिस्सा ही इसमें हो जाता है, तो दसवां हिस्सा से मतलब जितना जरूरी हो उतना ही जो है ना इसका जो है ना उपयोग करें। दूसरी बात है कि जो हवा का जो वेग है, डायरेक्शन है, जो उसका बहने का जो रुख है, उसको देखते हुए जो है ना किसान भाई को इसका उपयोग करना चाहिए। और तीसरी बात है कि जो है ना जब आप नैनो कीटनाशी यूज करते हैं तो मास्क का जरूर यूज करें, क्योंकि वह इतने सूक्ष्म होते हैं कि इवन सूक्ष्म होता है और खुली आंखें के द्वारा दिख नहीं पाता और पता नहीं चलता है कि वह कहाँ चला गया, तो इससे हार्म होने का भी जो है ना विपरीत हेल्थ जो अपना स्वास्थ्य है उस पर जो है ना विपरीत प्रभाव पड़ने का डर रहता है, तो इसलिए जो है ना मास्क का भी जरूर यूज करना चाहिए और जितना ज़रूरत हो उतना ही इसका उपयोग करें। और मुख्यतः जो इसका उपयोग जैसे हम पत्ते पे स्प्रे करके करना अच्छा माना जाता है, या दूसरा जहाँ पे देखें कि जो उसका व्यवहार जो होता है कीटों का, जो उसका एक्टिव फेज होता है जहाँ व्यवहार होता है लार्वा वगैरह जो है ना, वहाँ अगर कीट नैनो कीटनाशक का उपयोग करें तो इस तरह जो है ना बहुत कारगर माना जाता है, क्योंकि जहाँ ज़रूरत है वहीं पे हम उसका उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से जो है ना कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका कि ध्यान रख के ही किसान भाइयों का नैनो कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए, नैनो हर्बिसाइड का उपयोग करना चाहिए।
0: यानी कि हवा का रुख आप विशेष रूप से ध्यान रखें और जी, जो अनुशंसित मात्रा है
1: जी जी जी जी,
0: और मास्क का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर अगर वो प्रवेश कर गया तो परेशानी हो सकती है
1: जी।
0: तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें, और उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए बहुत

0: उपयोगी साबित होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और नैनो पेस्टिसाइड के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें बताई,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी मिट्टी का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
7: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
8: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
9: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
8: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
10: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खरीफ में मूंगफली की।

0: खेती के बारे में। और इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिव्या महतो। मैम, आप हैं पौधा प्रजनन विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू उमा।
0: मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि बहुत बेसिक सा सवाल कि खरीफ मौसम में मूंगफली की खेती कब करें?
1: जी उमा, मूंगफली देखिए बहुत एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है जिसे विशेष रूप से कम लागत और अधिक लाभ के लिए जाना जाता है। यह फसल प्रमुख रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाई जाती है और पारंपरिक फसलों में जैसे गेहूं, धान या मक्का की तुलना में मूंगफली की खेती में सिंचाई, खाद और कीटनाशकों की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है जिससे किसानों की उत्पादन लागत घटती है। और इसके अतिरिक्त मूंगफली एक ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण खुद से करता है जिससे कि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में सहायक होता है। और खरीफ में इसकी खेती का सबसे उपयुक्त जो समय है वो जून के मध्य से जुलाई के पहले सप्ताह तक होता है।
0: तो मैम, मूंगफली का पौधा किस प्रकार का होता है?
1: जी, मूंगफली का जो पौधा होता है प्रमुख तौर से दो प्रकार के होते हैं, या इसे हम कह सकते हैं दो प्रकार के किस्म भी होते हैं, जिसमें पहला होता है फैलने वाली, यानी फैलने वाली मूंगफली। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो पौधा होता है वो ज़मीन पर फैलता है। ये अधिक शाखाओं वाली मूंगफली होती हैं और इसमें फल और फूल ज़्यादा आते हैं और इसमें पकने की जो अवधि होती है वो 110 से 130 दिन की होती है। और दूसरा जो होता है प्रकार या किस्म कह सकते हैं वो होता है गुच्छेदार या खड़ी रहने वाली मूंगफली। इसे गुच्छेदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पौधा खड़ा रहता है और गुच्छों में बढ़ता है और इसके जो पकने की अवधि है वो लगभग 90 से 100 दिन की होती है।
0: तो मैम, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि मूंगफली की खेती कैसे करनी चाहिए?
1: जी, मूंगफली की खेती खरीफ में इसके लिए सबसे ज़रूरी जो फॉरमोस्ट बात यह है कि तापमान इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और इसकी बुआई का जो तापमान होना चाहिए वो होना चाहिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और साथ ही इसकी बुआई हल्की दोमट या बलुई मिट्टी में करें या काली मिट्टी में करें। और इसकी बुआई बहुत चरणों में होती, कई चरणों में होती है जिसमें कि पहला जो चरण होता है वो है खेत की तैयारी और इसके लिए 2 से 3 बार जुताई करें और पाटा चला दें और खेत को समतल कर दें। फिर आती है उचित प्रभेदों का चुनाव और उसमें जैसे आप प्रभेद जैसे कि DH86 जिसका जो उपज क्षमता होती है वो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, VRI 10 जिसकी उपज क्षमता है 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और एक आता है K1812 जिसकी उपज क्षमता है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास होती है। और ये सभी जो किस्में मैंने बताई हैं ये हैं कम फैलने वाली गुच्छेदार प्रभेद। अब जैसे कि बात करें कि गुच्छेदार प्रभेद के बारे में, तो इसमें एक और प्रभेद आता है वो है AK2224 और इसकी जो बुआई का समय होता है वो होता है 15 जून से 10 जुलाई तक और इसकी जो पकने की अवधि होती है वो लमसम होती है 100 से 105 दिन तक और इसकी जो औसत उपज है वो है 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और इसमें तेल की मात्रा लगभग की हमें 49% मिल जाती है। और इसी क्रम में गुच्छेदार प्रभेदों के क्रम में एक प्रभेद और आता है कुबेर नाम से जिसकी बुआई का समय भी वही होता है 15 जून से 10 जुलाई तक और इसकी पकने की अवधि भी लमसम 100 से 105 दिन की होती है और इसका जो औसत उपज है वो होता है 15 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और तेल की जो मात्रा होती है वो होती है 48% तक इसकी जो है तेल की मात्रा होती है। और फिर आता है गुच्छेदार प्रभेदों में एक और प्रभेद वो है JL24 जिसका जो है बुआई का समय भी वही सेम 15 जून से 10 जुलाई तक होता है और पकने की जो अवधि होती है वो है होती है लगा।

0: लगभग 90 से 100 दिन के बीच में होती है, और औसत जो इसमें उपज होती है वो होती है 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और तेल की जो मात्रा होती है वो 46% होती है। अब एक जो उन्नत प्रभेद जो फैलने वाली जो किस्में होती हैं उसमें जो है एक उन्नत जो प्रभेद हम कह सकते हैं उसमें एक आता है M13 के नाम से, जिसका बुआई का समय भी वैसे ही होता है जैसे गुच्छेदार का होता है, मतलब कि 15 जून से 10 जुलाई तक इसकी बुआई कर सकते हैं, और इसकी जो पकने की अवधि होती है वो होती है 130 से 135 दिन तक, और जो है इसका जो औसत जो उपज है वो 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और लगभग जो तेल की मात्रा इसमें आती है वो होता है 49% इसमें तेल की मात्रा मिलती है।
1: मैम, बीज उपचार बहुत ज़रूरी होता है, तो मूंगफली की खेती में बीज उपचार कैसे करें?
0: जी, बुआई से पहले बीज उपचार बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए बीज को ट्राइकोडर्मा या थीरम या कार्बेंडाजिम से उपचारित कर सकते हैं।
1: और मैम, मूंगफली की खेती में जैसे कि आपने बताया कि गुच्छेदार होते हैं और फैलने वाले प्रभेद भी होते हैं, तो इनकी बुआई में बीज दर, गहराई और दूरी कितनी रखनी चाहिए?
0: जी, इसमें जैसे कि अगर गुच्छेदार किस्म है तो उसके लिए जो बीज दर है वो 80 से 90 केजी प्रति हेक्टेयर है, और अगर फैलने वाली प्रभेद हैं तो उसके लिए जो बीज दर होना चाहिए वो 70 से 75 केजी प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। और बुआई की बात करें तो 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई की बुआई करनी उचित होती है ताकि बीज को उचित नमी मिल सके। इसके साथ साथ बुआई के समय फैलने वाले जो प्रभेद हैं उसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर गुच्छेदार वाले प्रभेद है तो उसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर तक रखें।
1: खाद और उर्वरक का प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी होता है, तो मूंगफली की खेती में खाद और उर्वरक का प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: जी, इसके लिए जैविक खाद के रूप में हम 8 से 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, और रासायनिक खाद की बात करें तो नाइट्रोजन 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और फॉस्फोरस 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और पोटाश हम दे सकते हैं 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसके अलावा यदि सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे की कमी है तो जिंक, बोरॉन, कैल्शियम, सल्फर भी उपयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, और बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई अवश्य करें। इससे मिट्टी हल्की तथा ढीली हो जाती है तथा खोट यानी पेग जिसमें दाने बनते हैं उमा वो आसानी से ज़मीन में प्रवेश कर जाते हैं और फलियों का विकास बहुत अच्छा होता है।
1: और मैम, खरपतवार भी बहुत बड़ी समस्या होती है, तो मूंगफली की खेती में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, सिंचाई कैसे करें, और कीट रोगों की भी परेशानी होती है, तो कीट रोगों से कैसे बचें?
0: जी, खेत को खरपतवार से मुक्त रखना उपज के लिए अत्यधिक लाभकारी है। इसके लिए जैसे प्री इमर्जेंस खरपतवार नाशी ज़रूर इस्तेमाल करें जैसे कि पेंडीमेथिलीन। जहाँ तक सिंचाई का सवाल है तो इसमें ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि खरीफ में आमतौर पर वर्षा होती ही है। बस इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जल की निकासी सही हो, और यदि सूखा पड़ता है तो 2 से 3 सिंचाई विशेष कर फूल और फली बनने के समय तो ज़रूर करें। कीट रोग की बात करें तो आमतौर पे इसमें लगने वाले जो रोग और कीट हैं जैसे कि टिक्का, रतुआ, जड़ सड़न, मक्खी, माहू, थ्रिप्स, इन सभी का नियंत्रण उचित कीटनाशक या फफूंदी नाशक का छिड़काव करके कर सकते हैं, और जैसे कि मैंकोजेब या डाइमेथोएट का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं।
1: और मैम, हमने बहुत सारी बातें की लेकिन मूँगफली की कटाई और भंडारण इसका उचित समय क्या होता है?
0: इसका उचित समय तब है जब पत्ते पीले पड़ जाते हैं और ज़मीन में बिछ जाते हैं, और 70 से 80% जो फलियां हैं वो परिपक्व हो जाती हैं, तभी हमें कटाई करनी चाहिए। और

0: कटाई के बाद फली को धूप में अच्छी तरह सुखाएं और फलियों को साफ बोरे में भरकर लकड़ी की जो तख्तियां होती है उसके ऊपर रखें, और यदि देखभाल अच्छी हो तो उमा खरीफ में मूंगफली की औसत जो उपज लगभग आती है वो है 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।
1: तो मैम आपने इतनी सारी बातें बताई, लेकिन अंत में अगर आप किसान भाई बहनों को कोई और सलाह देना चाहे तो।
0: जी, अंत में मैं किसान भाइयों और बहनों से यही कहना चाहूँगी, यदि वे समय पे बुवाई, उचित प्रभेदों का चुनाव एवं वैज्ञानिक तरीके से मूंगफली की खेती करें तो उन्हें निश्चित ही लाभ प्राप्त होना तय है।
1: मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि मूंगफली की खेती से लाभ होता है, साथ ही आपने शुरुआत में बताया कि इससे मिट्टी को भी काफ़ी लाभ होता है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
0: जी, जैसे कि हम लोग दलहन जो फसल होती है उसमें हम जानते हैं कि उनमें भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है जिससे कि मृदा की उर्वरता बढ़ती है, तो उसी तरीके से मूंगफली की भी जो फसल है उमा, उसमें भी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं और वो इस तरह वो मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा सहायक है।
1: जी मैम, तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें बताई मूंगफली की खेती के बारे में। आपने जो बातें बताई, उम्मीद है कि उससे हमारे किसान भाई बहनों को बहुत फायदा होगा और उनकी मिट्टी को भी बहुत फायदा होगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू उमा, थैंक यू सो मच उमा।
1: दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप अपना और अपने फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
6: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
5: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
9: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
8: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में

से 90% और दोपहर में 70-80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25-30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दें कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है।

है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। खुद का कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो

0: पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं, और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है तो खरीफ मक्का की बात होगी। किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करे ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद उमा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है। आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है, उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है, और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं, और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है, और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।
5: जी सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
6: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है, 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल, और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
5: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
6: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है, और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है, लेकिन अब हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोंस्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से ये कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज

0: मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है, तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है। इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज़्यादा पानी क्या मात्रा बारिश हो जाती है, तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं, वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
1: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के
0: लिए? सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं, तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो। बरसात के मौसम में जो खेत होता है, वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है, उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहाँ जहाँ पानी जब नहीं, किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए। और बुआई के जो विधियाँ हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहां जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
1: जी सर। सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया, तो बुआई का उचित समय क्या है?
0: बुआई का तो उचित समय, जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नबी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है, 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें दो तीन तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है, बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है। आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में, बुआई के 55 दिन के आसपास होता है और उसके 25 से 28 दिन बाद, 30 दिन बाद, यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। तो बेबी कॉर्न जो है ना, बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास वो तुड़ाई हो जाता है, 2 से 3 उसमें बेबी कॉर्न आता है, तो 2 से 3 तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद उस फसल को, जो पौधे बचे हैं, उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भूटे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं, एक भूटा 10 रुपए से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहे तो 10 से 12 रुपए में अपने खेत से एक भूटा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर खाएं, उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
1: जी सर। सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
0: बीज दर, जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 kg प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी 2.5 एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
1: और बुआई की विधि क्या?
0: बुआई की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है, तो हमारा और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना ले।

0: देना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है, और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरा पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पश्चिया, तो हवा बीच से दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
1: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में
0: हाँ,
1: वो
0: देखिए जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार, राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हरेक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है। इसमें उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पर डाला जाता है। उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप च्वाइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वैरायटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, बायो 9544 है, SKM1 है, DHM 121 है, DHM 117, राजेंद्र मक्का 4 है, राजेंद्र मक्का 3 है। ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
1: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीन चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि DAP दे रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका DAP से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन उसको दें। तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या DAP से दें या NPK से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप DAP से दें या जो भी सोर्स है उससे दें और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को, जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा, खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले। और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं, 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
1: सर बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
0: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है, वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। तो इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है, फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पे अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे। तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है और जो आपके जो फॉल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं, कॉब बोरर आता है बाद में भुट्टे में आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं उससे भी बच जाता है। तो दो छिड़काव जरूर आप करें। इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।

0: सर, खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
1: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं बारिश होती है तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि समय समय पर बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है, एक हल्की सिंचाई करें। चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन का होते हैं, उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो पौध निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिस पे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है। उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है। तो उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी कर दें। उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से फिर 25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है, ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है। दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा। और चूंकि नाली पे किए हैं, मेड़ पे किए हैं, तो पानी निकल ही जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है। नहीं सिंचाई की जरूरत है, खेत में पर्याप्त नमी है, तो देने की जरूरत नहीं है।
0: जी सर। सर, जैसे कि अभी आपने बताया, अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
1: हाँ, विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए। फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया, उसको दे दीजिए। और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी, जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है। जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया, मच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है। उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट बोलते हैं। वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है। और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए, लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है। उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है, और इस एरिया में देखा जा रहा है जहाँ पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है। तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में, वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें। इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वेराइटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदें, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदें, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदें, खुला हुआ बीज नहीं खरीदें। बीज पैकेट खरीदें, उसका रैपर देखें, और उस बीज के थैले को, बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है। अब बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है विष से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके।

0: दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं, वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है। तो ये चीज आपको समझदारी बरतनी है, और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान से लेना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसको सरकार ऑथराइज किया हो, उसी से खरीदिए।
1: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
0: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप समय पे बुआई करें, मेढ़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें। यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं, पौधा घना करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना निश्चित है। इसलिए जो भी वैज्ञानिक सुझाव है, 60 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन रखें, 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखें। समय पे बुआई तो करना जरूरी है, प्रभेद का सही चुनाव करें और जल जमाव से खेत को बचाएं। जब भी मक्का की बात आप करते हैं, सबसे पहले आपके ये दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही। और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया, यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए, और जो फसल है जिस पे भुट्टा है, पौधा है, उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है। इससे बचने के लिए जो हमने दो दवा बताया, सिर्फ दो ही दवा दीजिए, विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवा का उपचार कीजिए, और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें। कारण कि बरसात में जब आप भुट्टा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को, आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं। 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें, और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
1: जी सर। तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि,
2: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी

0: करें।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करे। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दे कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1, आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करे जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दे, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर

नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचे पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम
1: स्वभाव और व्यवस्था। अनीता स्वभाव से ही बड़ी साफ सुथरी लड़की थी। अपनी आदतों में, अपने पहनावे में हमेशा से वो व्यवस्थित थी। उसके बाल सदा अच्छी तरह दो चोटियों में संवरे होते, जिन पर उसकी पोशाक से मेल खाते रिबन होते, जो दोनों चोटियों में सुंदर रूप से बंधे होते। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, जो कि धुले हुए तथा इस्त्री किए हुए होते। वो जो भी जूते या चप्पल पहनती, वे सफेद अथवा भूरे रंग की पॉलिश किए हुए होते। वो केवल 12 साल की थी और देखने वाले हैरान रहते थे कि इस छोटी सी अवस्था में वो किस तरह इतनी सुव्यवस्थित है। जो बस्ता वो स्कूल लेकर जाती वो भी देखने लायक होता। उसकी किताबें बहुत साफ ढंग से जमी रहती, उसकी कॉपियां भी एक के ऊपर एक रखी रहती, उसकी लिखाई भी बहुत सुंदर थी और वो हमेशा

हमेशा हाशिया खींचने का ध्यान रखती। बाएं हाथ के ऊपर के कोने में वो हमेशा दिनांक लिखती और हर अभ्यास के बाद एक रेखा अवश्य खींचती, क्योंकि उसकी शिक्षिका ने उसे उसकी आवश्यकता समझाई थी। अनीता घर में चीजों को सहेज कर रखने में अपनी माँ की मदद करती, इसलिए उसकी माँ को उस पर बहुत गर्व था। अनीता अपने सहपाठी विजय से बहुत प्रभावित थी, क्योंकि विजय बहुत बुद्धिमान था। वे दोनों एक दूसरे को कहानियों, कविताओं की किताबें देते और विभिन्न घटनाओं के विषय में बातें करते। परंतु विजय अलग स्वभाव का था। उसका अव्यवस्थित ढंग और लापरवाह स्वभाव अनीता के लिए प्रायः चिंता का कारण होता था। विजय अपने कपड़ों की जरा भी परवाह नहीं करता था। उसकी कमीज के बटन अक्सर गायब रहते, पैंट पर कभी इस्त्री ना होती और उसके जूते भी बहुत साफ नहीं होते थे। उसके बाल बिखर कर सदा माथे पर लटकते रहते थे। वो साफ सुथरा रह सकता था और चीजों को संभाल कर व्यवस्थित रूप से रखना भी वो जानता था। ये बात बिल्कुल सच्ची थी, क्योंकि जब भी अध्यापक उसके साथ सख्ती का व्यवहार करते तो उसकी आदतों में थोड़ा सुधार आ जाता, लेकिन जल्दी ही वो पुरानी आदतों का शिकार हो जाता और फिर से लापरवाह हो जाता। अनीता विजय से हमेशा कहती थी कि जब हमारे चारों ओर एक व्यवस्था होती है तब हमें अपूर्व संतोष मिलता है। अध्यापिका ने विजय को व्यवस्था की आवश्यकता को समझाने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने उसे कक्षा की व्यवस्था का भार सौंप दिया। उसने आपत्ति की कि वो इस तरह के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु अध्यापिका ने जोर दिया और अनीता के आग्रह पर वो मान गया। इसका अर्थ था कि उसे कक्षा की हर वस्तु के प्रति सचेत होना था। अब उसे 10 मिनट पहले आना पड़ता और देखना पड़ता कि टेबल कुर्सियां ठीक से रखी हैं कि नहीं। यदि नहीं तो उन्हें ठीक करना पड़ता। उसे ये भी देखना होता कि खिड़कियों में चिटकनियां लगी हैं और वे गंदी तथा अधखुली तो नहीं हैं। उसे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता कि कक्षा का टाइम टेबल तथा अन्य चित्र दीवारों पर सीधे लगे हैं। क्या तुमने ध्यान दिया कि कई स्कूलों में दीवारों पर चित्र लगे होते हैं, परंतु उनमें से कुछ साधारणतया 45 डिग्री पर झुके होते हैं। सब लोग उन्हें देखते हुए निकल जाते हैं और कोई भी उन चित्रों के भाग्य पर दया नहीं दिखाता। विजय को अपने सहपाठियों की पोशाकों और जूतों का भी निरीक्षण करना होता जब वे कक्षा में आते। वो अपने से कमजोर लड़कों पर तो रौब जमाता, परंतु कक्षा के बड़े लड़के उसे दूर रखते। वे उसे चिढ़ाते, परंतु वे सब उसके साथ सहयोग भी करते। सारी कक्षा अब साफ सुथरी दिखने लगी। अधिक महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि उसे ही सारी कक्षा के सामने सफाई का उदाहरण पेश करना था और ये देखने की आवश्यकता थी कि उसके अपने जूतों के फीते ठीक ढंग से बंधे हैं और उसके बालों में ठीक ढंग से कंघी हुई है। अनीता को विजय का ये बदला रूप बहुत अच्छा लगता और वो मन ही मन हर्षित होती। क्या तुमने ध्यान दिया है कि जब तुम अपने ऊपर कोई उत्तरदायित्व लेते हो तब

0: तुम अधिक जागरूक रहते हो। इस कारण विचारों में और स्पष्टता आ जाती है और तुम्हारी उलझनें दूर हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि तुम्हारा मस्तिष्क व्यवस्थित है और इस कारण वो बाहर की सब वस्तुओं को भी व्यवस्थित रखता है। आंतरिक व्यवस्था ही बाहरी व्यवस्था को जन्म देती है। अंदर की ये व्यवस्था स्वभाव की वस्तु नहीं, ये अवलोकन और सतर्कता से आती है और हम सब यदि चाहें तो व्यवस्थित हो सकते हैं। आदतें एक यांत्रिक वस्तु हैं, जो प्रशिक्षण का परिणाम है, परंतु व्यवस्थित रहने की लालसा बहुत सुंदर वस्तु है जो व्यक्ति के अंतर्मन से आती है। तुम्हारा स्वभाव कैसा है? क्या तुम साफ सुथरे कपड़े पहनते हो? अपनी किताबों और कॉपियों को सावधानी से रखते हो? अथवा तुम इस प्रकार के व्यक्ति हो जिसे बार बार याद दिलाने की आवश्यकता है? क्या तुमने ध्यान दिया है कि अपनी रोजाना की जिंदगी में तुम कितने व्यवस्थित हो? क्या तुम कुछ बातों को आजमाना चाहोगे, जैसे साफ सुथरे कपड़े पहनना, अपने बालों में कंघी करना और साफ रहना, जूतों के फीते बांधना, जूतों और चप्पलों पर नियमित रूप से पॉलिश करना, हर सुबह अपना बिस्तर ठीक करना, खाने के पहले हाथ साफ करना, हमेशा समय का पाबंद रहना, कागज आदि फेंकने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना, सड़क उसी समय पार करना जब सिग्नल अनुमति दे, किसी पिकनिक या अन्य पार्टी के बाद जगह को साफ करना, आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को धन्यवाद देना, किसी टेबल अथवा कुर्सी पर धूल दिखने पर उसे साफ करना, सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग करते समय सावधानी बरतना, नौकरों से मृदु व्यवहार करना आदि। या फिर कुछ इन बातों की तरफ भी तुम ध्यान दे सकते हो। क्या तुम्हें जल्दी जल्दी खाने की आदत है? क्या तुम साधारणतया जोर से बोलते हो? दूसरे जब बोल रहे हो तब क्या तुम उनके बीच में बोलते हो? जब तुम्हें जल्दी होती है तो क्या तुम कतार तोड़ते हो? रास्ते चलते क्या तुम पौधों की पत्तियां तोड़ते हो? इस तरह की अन्य कई बातें हैं। तुम इस प्रकार की अपनी अन्य कुछ आदतों की सूची बना सकते हो और अपने दैनिक जीवन में उन पर ध्यान दे सकते हो।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वनिंकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके

0: नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी

0: भविष्य।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तो आज जो उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम जानेंगे अरहर दाल के बारे में, इसके प्रभेदों का चयन हम कैसे करें, कौन सा प्रभेद हम लें, सारी जानकारी आज हमारे विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रफत सुल्ताना, वो बताएंगे आपको। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: थैंक यू सो मच।
5: मैं बता दूं सारे हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को, कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले तो दलहनी फसलों की हम बात कर रहे हैं, तो अरहर की खेती का क्या महत्व है?
6: थैंक यू अनु सो मच। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि दलहनी फसलें ना सिर्फ इंसान और पशुओं के पोषण के लिए बेहद ज़रूरी है, बल्कि जिस ज़मीन पर इन्हें उगाया जाता है उसे भी ये आगामी फसलों के लिए उपजाऊ बना देती है। दलहन की खेती से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले लाभदायक बैक्टीरिया जो कि राइजोबियम है, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच कर न सिर्फ अपना पोषण करता है, जिस मिट्टी में ये दलहनी फसलों को लगाया जाता है उसमें भी ये नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है
5: जी।
6: इसलिए दलहन की खेती का को हम सहजीवी विधि से मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाना भी कहा जाता है।
5: अच्छा,
6: अब हम सभी जानते हैं कि दलहन फसलें जिस मिट्टी में लगाई जाती है उसके लिए तो काफ़ी उपयोगी है ही, बट हमारे शरीर के लिए भी आपको पता है कि प्रोटीन बहुत ही लाभदायक होता है। यदि मानव शरीर को उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन न मिले तो हमारे शरीर की मानसिक एवं शारीरिक विकास रुक जाता है। अरहर के दाल को प्रोटीन का स्रोत माना जाता है, इसलिए अरहर बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी थाली में
5: जी।
6: अरहर की दाल में लगभग 21-22% तक प्रोटीन पाया जाता है। अरहर की बाजारी भाव भी काफ़ी अच्छी होती है, जिससे किसान लोग काफ़ी अच्छी कमाई भी कर लेते हैं। पर चिंताजनक बात यह है कि बिहार में दलहनी फसलों का जो क्षेत्रफल है वो लगातार कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है
5: जी।
6: जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है।
5: बिल्कुल,
6: आज लगभग सिर्फ 6 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती बिहार में होती है। इसमें अगर आप अरहर की बात करें तो ये मात्र 27,000 हेक्टेयर में इसे लगाया जाता है।
5: अच्छा,
6: अगर हमारे देश में दलहनी फसलों और दूसरे दलहनी फसलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में लगाया जाता है वो मूंग है, वो 1,71,000 हेक्टेयर में लगाया जाता है। उसके बाद मसूर आता है जो लगभग 1,45,000 हेक्टेयर में लगाया जाता है। फिर जाकर के आपका चना आता है जो लगभग 67,000 हेक्टेयर में लगाया जाता है, पर अरहर सिर्फ 27,000 हेक्टेयर में लगाया जाता है, जो कि अगर रकबा के हिसाब से सोचा जाए तो ये चौथे नंबर पे आता है
5: जी
6: बिहार में। और अगर आप ये जान करके बहुत आपको आश्चर्य होगा कि अगर हम इसकी उत्पादकता की बात करें अरहर की, तो पूरे देश में इतनी उत्पादकता नहीं जितने कि हमारे बिहार राज्य की है। बिहार राज्य की जो उत्पादकता है अरहर की वो 1,639 केजी प्रति हेक्टेयर है
5: जी,
6: जब के जो हमारे जो नेशनल एवरेज है उसकी जो प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता जो है वो लगभग 776 केजी प्रति हेक्टेयर है। इसके बावजूद भी हम बहुत ही कम एरिया में ही लगा पाते हैं,
5: बहुत ही कम क्षेत्रफल में जी।
6: तो जैसे कि हम जानते हैं

0: कि ये ज़मीन को जो अरहर होता है ज़मीन को से पोषण लेकर उसे वापस लौटाने के लिहाज से काफ़ी इसका कोई जवाब नहीं है। ये इसलिए है कि जो अरहर का जो पौधा होता है वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करता है वो लगभग 40 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से करता है। एक अगर एक सीज़न में आप अरहर लगाते हैं एक हेक्टेयर में लगाते हैं तो वो 40 केजी नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है जीवाणुओं को द्वारा, क्योंकि इसकी जो जड़ जो होती है ना वो मूसलाधार जड़ कहलाता है। ये बहुत लंबी होती है, टैप रूट इंग्लिश में इसे कहते हैं। अच्छा। जिससे जिस मिट्टी पे भी इसे लगाया जाता है उसमें नाइट्रोजन की अच्छी स्थिरीकरण हो जाता है, फिक्सेशन होता है और वो बहुत लाभदायक होता है।
1: तो यहाँ पर अरहर की खेती के महत्व के बारे में आपने जाना कि कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए अरहर और हमारे थाली में इसकी क्या महत्ता है, सारी चीज़ें मैम ने आपको बताई हैं। अब खेती की ओर बढ़ते हैं तो मैम भूमि का चयन कैसा होने चाहिए और खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए किसान भाइयों को?
0: देखिए, जैसे हम सभी जानते हैं कि दलहनी फसलें जो होती है वो जो है उसमें अरहर एक खरीफ में लगाया जाता है। खरीफ का मतलब है कि ये जब बारिश के मौसम में इसको लगाया जाता है
1: जी।
0: इसलिए इसका जो है ना आप जब आप इसकी बुआई करते हैं तो आपको भूमि का चयन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है
1: जी।
0: ये थोड़ी सी भी अधिक मात्रा में अगर मिट्टी में जल भराव रहेगा तो अरहर की खेती अच्छे से अरहर की खेती बर्बाद ही हो जाएगी। अच्छे से क्या बर्बाद हो जाएगी, इसलिए बहुत इसकी भूमि के चयन कैसे करें उसकी जानकारी मैं थोड़ा बहुत दे सकती हूँ अभी यहाँ पे। तो अरहर की खेती हर तरह की मिट्टी में वैसे की जा सकती है, लेकिन लवणीय या क्षारीय मिट्टी में इसकी खेती संभव नहीं है। अलबत्ता अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी, अगर आप मीडियम ड्यूरेशन और अल्प अवधि वाली अरहर लगाते हैं तो उसके लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आपकी जो बिहार में ज़्यादातर लगती है वो होती है दीर्घ अवधि वाली, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी लगाई जाती है यहाँ पे। अच्छा। तो उसके लिए जो है आपको अगर काली मिट्टी जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, अच्छा, अगर वो वैसे खेत हो तो उसका चयन करें
1: काली मिट्टी वाली।
0: अरहर की खेती में पानी का ठहराव हरगिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी मिलने की वजह से अरहर के पौधों में अनावश्यक वृद्धि भी हो जाएगी तथा उपजाव कम होने की आशंका रहती है। साथ ही फसल पर कई बीमारियां और कीटों का हमला बढ़ने का जोखिम होता है। जल भराव में वाटर लॉगिंग कंडीशन एक कहते हैं, उसमें एक जो है फंगस जो होता है वो है फाइटोफथोरा, उसका इन्फेस्टेशन मतलब उसकी जो वो बीमारी लग जाती है। जल भराव भी है और फाइटोफथोरा है तो आपका जो पौधा है वो 80 से 100% तक वो आपकी क्षति होगी। अरहर के खेत में मई आप तैयारी के लिए अरहर के खेत में मई जून की गर्मियों में 2 से 3 बार देसी हल या कल्टीवेटर से गहरी जुताई करके पाटा लगाना चाहिए। बुआई हल्के पीछे कुंड लगाकर करनी चाहिए। सख्त मिट्टी और ज़्यादा बारिश वाले इलाके में अरहर की के पौधे का तना फाइटोफथोरा बीमारी के चपेट में आकर गलने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि अभी हमने आपको बताया। इससे स्वास्थ्य पौधे का घनत्व बहुत कम हो जाता है और पैदावार काफ़ी घट जाता है
1: जी। और जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए
0: इसके लिए, जैसे अगर जहाँ पर भी जल भराव का समस्या है तो वहाँ जल भराव वाले इलाके में अरहर की बुआई के वक्त इसके कतारों के बीच में 1.5 से 2 फीट की दूरी पर मेड़ बनाकर उसे अरहर की बुआई करना चाहिए।
1: अच्छा।
0: उससे पैदावार ज़्यादा मिलती है। मेड़ों पे अरहर की बुआई करने से सिंचाई में 25 से 30% पानी भी बचता है, क्योंकि आपने यहाँ बिहार में अब देखे होंगे कि जो धान के किसान हैं वो मेड़ों पर अरहर की खेती करते हैं, उससे जो पानी जो धान में रहता है वो आपको साथ साथ अरहर में मिल जाता है और बाकी जो न्यूट्रिएंट भी होते हैं वो भी अरहर को मजबूत बनाते हैं और अरहर की काफ़ी अच्छी खेती यहाँ पे मेड़ों पे होती है। अरहर की खेती के 3 तरीके बहुत ही प्रचलित हैं और हर एक के लिए पौधे और कतारों के बीच फासला रखने के लिए अलग अलग दूरियाँ अपनाने की सलाह दी जाती है।
1: तो मैम ये 3 तरीके

0: कौन कौन से हैं ये जानना चाहेंगे हम।
1: देखिए, देश में अरहर की खेती जैसे तीन तरीके से प्रचलित हैं, उसमें से कुछ अगेती अरहर होती हैं, कुछ मध्य अवधि वाली अरहर की प्रजाति होती है, कुछ दीर्घकालिक अरहर की प्रजाति होती है। तो तीनों के लिए अलग अलग है। जैसे अगेती अगर अरहर लगाते हैं, जो जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन जिसको कहते हैं, वो अगर लगाते हैं तो इसकी जो ये जो प्रजाति है ये मध्य और दक्षिण भारत में भी बहुत ज़्यादा है, इसका चलन है। यहाँ पर तो बिहार में बहुत ही कम है अल्प अवधि वाली। तो इसमें क्या है कि आप इसको आप 15 जून तक बुआई कर दीजिए
0: जी।
1: इसकी बुआई जो है आप 15 जून तक कर दीजिए, और जबकि मध्य और दीर्घकालिक जो है उसकी बुआई जो है आप 1 से लेकर 31 जुलाई के बाद कीजिए। तो एक तो इसमें बुआई का टाइम हो गया। इसमें ये भी है कि अगर आपने जैसे आपका जो अल्प अवधि वाली जो है उसकी जो पंक्ति से पंक्ति जो दूरी होती है उसको भी कम रखने की ज़रूरत है, वो लगभग आप 60 सेंटीमीटर रखिए। और जबकि जो जो दीर्घकालिक अवधि वाली प्रजातियां हैं उसके लिए आप 70 से 75 सेंटीमीटर की दूरी रखिए, तो आपका आपकी फसल अच्छी होगी। और ये आप 31 जुलाई तक आप आराम से लगा सकते हैं।
0: और बात करते हैं अपने बिहार राज्य की, तो अरहर की कौन कौन सी प्रजातियां हमारे राज्य यानी बिहार के लिए सही है और उनमें सबसे अच्छा कौन सा है?
1: देखिए, जैसे बिहार में खरीफ में लगाया जाता है अरहर, और मगर लेकिन उसकी जो टाइमिंग होती है वो अलग अलग है
0: जी।
1: जो 1 से 31 जुलाई के बीच में लगाने वाली अरहर है जो अच्छी किस्म है वो है बहार, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1 और मारवीय अरहर 13
0: जी।
1: जो बहार जो है वो भागलपुर के लिए उपयुक्त है, भागलपुर क्षेत्र में आप लगा सकते हैं। इसकी उपज जो होती है 25 से 23 केजी प्रति हेक्टेयर है। इसकी जो पकने की अवधि है वो 265 से 275 है केजी, 275 दिन है। पूसा 9 जो है वो आपका 250 से 260 दिनों की फसल है जी। और ये 20 से 25 हेक्टेयर उपज देती है, और ये भी भागलपुर और उत्तरी बिहार के लिए उपयुक्त है। एक है नरेंद्र अरहर 1 जो कि 260 से 270 दिनों में यानी कि 9 महीने में पक्के तैयार हो जाती है, आप 31 जुलाई तक लगाइए। और 20 से 25 इसमें भी केजी क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है
0: जी।
1: इसमें रोग रोधी क्षमता भी है, मिश्रित खेती हेतु उत्तरी बिहार के लिए ये काफ़ी उपयुक्त है। मालवीय अरहर 13 आपने देखा होगा कि मुंगेर क्षेत्र में लगाया जाता है, और ये जो है थोड़ी इससे कम है, 8 महीने की फसल है। और इसको भी आप 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक लगाएंगे, आपको लाभ होगा। जैसे ही बारिश आती है, जैसे ही मानसून शुरू होता है, आप पर्याप्त मॉइस्चर हो जाए खेत में, आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ये मुंगेर एवं भागलपुर दोनों ज़िलों के लिए उपयुक्त है। फिर आपका आता है दो जो हमने कहा है कि अल्प अवधि की, वो उसको 1 जून से लेकर 15 जून तक लगाइए। अगर ये ऐसे किसान लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बारिश उस वक्त तक नहीं आती है, तो जिनके पास सिंचाई हो और जिनकी भूमि ऊंची हो, जहाँ पे जल निकास की पूरी तरह जल निकासी का पूरा
0: व्यवस्था
1: हो, आप वहाँ पर लगाइए। और उसमें से एक PA 291 है, ये पंतनगर की वैरायटी है
0: अच्छा।
1: जो कि हमारे बिहार में बहुत ही अच्छा कर रही है। और ये जो है अभी नई है, क्योंकि अभी जो भी भारत सरकार का रिकमेंडेशन है कि आप 10 साल से कम अवधि वाले ही वैरायटी को का चयन करें तो ये उसके अंतर्गत आता है। तो ये PA 291 ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, मतलब अल्प अवधि की है, और ये उकठा रोग जो होता है विल्ट, वो उकठा रोग से प्रतिरोधी है
0: अच्छा।
1: और एक और जो है, जो अभी हम लोगों का जो एक सीड हब का प्रोग्राम चल रहा है, सीड हब का प्रोग्राम चल रहा है, और उसमें हम लोग भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं
0: जी।
1: उसमें IPA 203

0: ये IIPR कानपुर की वैरायटी है, जो कि हमारे ये नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन के लिए रिकमेंडेड है, इसमें बिहार भी आता है। तो ये जो है 280 दिनों का ये है, आप अप्रैल में इसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, इसकी मतलब कटाई कर सकते हैं। और इस वैरायटी के जो हम एक खूबी बताएंगे वो ये है कि ये जो IPA 203 है, आपने सुना होगा कि यहाँ पर अरहर की जो सबसे से समस्या जो आती है लंबी अवधि वाली में, कि इसमें फूल झड़ने की समस्या दिसंबर में हो जाती है, जब भी टेम्परेचर लो होता है तो फूल झड़ जाते हैं, इससे किसान बहुत परेशान हो जाता है और कई किसान तो छोड़ भी देते हैं कि भाई अब इसके बाद फली आएगी कि नहीं आएगी, अब किसान बहुत परेशान रहते हैं। तो उसके लिए ये जो किसान ऐसा सोचते हैं उसके लिए ये काफ़ी अच्छी प्रजाति है, क्योंकि इसमें जो पहली बार जो फूल आती है ना वही आती है आपका जनवरी में।
1: अच्छा,
0: तो जो जो जो पहले जो एक बार फूल झड़ने के बाद दोबारा फूल से जो भी होता है उससे तो लॉस तो होता ही है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो लॉस होता है, तो वो लॉस जो है
1: यहाँ
0: वो
1: पे
0: बहुत ही कम होता
1: है,
0: कम होता है, और इसकी जो उपज क्षमता भी है काफ़ी अच्छी है। और PA 291 की जो बात कर रहे थे वो अल्प अवधि की है, 150 से 161 दिनों की प्रजाति है
1: जी।
0: एक और है जो कि हम लोग सितंबर अरहर के बोलते हैं, उसमें आप पूसा 9 को लगा सकते हैं, शरद भी है पर शरद की आपको बीज मिलेगी नहीं, बिहार के लिए रिकमेंडेड है पर वो बीज उसकी अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। पर हाँ, पूसा 9 जो है, पूसा 9 को आप सितंबर में लगा करके भी आप कम से कम 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप उत्पादकता
1: प्राप्त
0: कर सकते हैं। ये आकस्मिक फसल के रूप में तथा दियारा क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयुक्त है।
1: तो श्रोताओं, आज यहाँ पर पूरी जानकारी मिली है आपको डॉक्टर रफत सुल्ताना मैम से, अरहर में प्रभेदों का चयन आपको कौन कौन सा करना चाहिए। खास तौर पर मैम ने बिहार राज्य के बारे में बताया और अपने शहर भागलपुर और भी आसपास के क्षेत्रों के बारे में बताया कि आप वहाँ पर कौन से प्रभेद को लगा सकते हैं, कौन सा प्रभेद आपके लिए उपयुक्त होगा। तो आशा करते हैं कि आज का ये वार्ता आपके लिए ज़रूर कारगर साबित होगा, आप कुछ जानने को मिला होगा आपको और कुछ समझने को ज़रूर मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात, बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था, कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: इन हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं खरीफ तिल के बारे में, किस प्रकार से इसकी खेती करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू चंद्रा। मैम आप हैं अनुवांशिकी पौधा प्रजनन विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार।
0: तो मैम सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि खरीफ में तिल की खेती क्यों करनी चाहिए।
1: जैसे आप जानते हो कि खरीफ एक ऐसा सीजन है जहाँ पे आप सबके दिमाग में खरीफ सुनने के बाद सबसे पहले आता है कि हम राइस की खेती, पैडी की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ वैसे किसान भाई जिनके पास राइस लगाने के बाद, पैडी लगाने के बाद कुछ ज़मीनें बच जाती हैं, या कुछ वैसे इलाके बिहार के जो पूरी खरीफ में लगातार वर्षा नहीं हो पा रही है, मतलब आप कह लो वहाँ पे रेनफेड कंडीशन है, उनको इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो वैसे जगह के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप तिल को भी एक ऑप्शन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तिल बेसिकली आप देखोगे कि ये कम पानी में बहुत अच्छा पैदावार देती है। आप इसमें देखोगे तो तेल की मात्रा 45-50% होती है। और जहाँ तक कि हम बात करते हैं तिल की, काले और सफ़ेद तिल, सफ़ेद तिल में जैसे आप देखोगे कि उसकी हम बहुत प्रकार से मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे तिलकुट बना सकते हैं, तिल पट्टी बना सकते हैं, चिक्की बना सकते हैं। तो इन्हीं विषयों की वजह से आप देखोगे कि जो तिल है हमारा वो खरीफ सीजन में एक प्रमुख तिलहनी क्रॉप के रूप में इसको हम ले सकते हैं।
0: तो मैम तिल की खेती के लिए कौन सी जलवायु और मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है?
1: बिल्कुल, जैसे आप देखोगे तिल बेसिकली गर्मा तिल भी लगाते हैं, खरीफ में भी लगाते हैं। खरीफ में भी आप देखोगे कि नॉर्मली खरीफ में बिल्कुल टेम्परेचर 25 डिग्री से नीचे नहीं जाता है। आप देखोगे 25-30 डिग्री का टेम्परेचर बना रहता है पूरे खरीफ सीजन में, तो ये एक उपयुक्त तापमान है। उसके बाद आप देखोगे कि जब हम मिट्टी की बात करेंगे तो हमें इसमें एक आप कह लोगे कि एक तरह की बलवाई दोमट मिट्टी चाहिए जिसमें कि पानी का रुकाव ज्यादा ना हो सके, तो इस प्रकार की मिट्टी है। और जहां पे आप देख लोगे सिंचाई की प्रबंधन, सिंचाई करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है, आप सिर्फ बारिश के पानी पे भी आधारित हो, और वैसे कुछ इलाके जहां पे कम बारिश हो रही है वहां पे इस फसल को आप ऑप्शन के रूप में ले सकते हो।
0: और खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए?
1: हाँ, खेत की तैयारी की बात जैसे आप करें तो देखो आप बीज इसकी बहुत छोटी होती है, बिल्कुल, तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि ऐसे छोटे बीज किस्म वाले फसलों के लिए जो आपकी मिट्टी होनी चाहिए, हाथ में जैसे आप उठा के देखोगे ना तो बिल्कुल एकदम रेतीला भुरभुरा होना चाहिए। तो इस तरीके से सबसे पहले एक बार आप मिट्टी को कल्टीवेटर जो आता है, जिसको आप हल या कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर दें पहले एक बार, उसके बाद लगातार से 2-3 बार आप हैरो या कल्टीवेटर लगा करके बिल्कुल से कर दे। एक बार पहली गहरी जुताई हो गई, फिर 2-3 बार हमने कल्टीवेटर चला दिया, उसके बाद अंतिम जुताई जब हम पाटा लगा करके उसको प्लेन समतल करते हैं, उसके बाद आप हाथ में मिट्टी उठा के देखोगे जब भुरभुरा हो गया है तो अब आपका खेत तैयार हो गया है तिल के लिए।
0: मैम जब हम खरीफ तिल की बात करते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी किस्में उपयुक्त रहती है?
1: बिल्कुल, जहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ माँ कि जब हम लोगों ने खरीफ और समर में जब हमने सर्वे किया तो जो जो आपका किसान है उनके लिए सबसे पॉपुलर वैरायटी जो हमने उनके खेत में जाकर के देखा वो हमारी GT5 थी, GT6 है जो हमारी सफ़ेद तिल है, GT10 है और कृष्णा ये हमारी काली तिल की वैरायटी है। उसके अलावा हमारा जो प्रगति, जो किसान MTU 75 के नाम से मार्केट में खरीद के लाते हैं, ये भी सफ़ेद तिल की वैरायटी है। शेखर हमारी सफ़ेद तिल की वैरायटी है। फिर TKG 22 ये भी हमारी सफ़ेद तिल की वैरायटी है। और RT 351 ये भी हमारी सफ़ेद तिल की वैरायटी है। तो मतलब आप देखोगे अमूमन यहाँ जो हमारा बिहार का इलाका है, मार्केटिंग पर्पस के हिसाब से किसान का जो रुझान रहता है वो आपका सफ़ेद तिल की तरफ ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत काले तिल के।
0: तो मैम अब बात करते हैं बुआई की, बुआई कब करनी चाहिए और बीज की दर क्या होनी चाहिए?
1: बिल्कुल, जब हम बुआई की बात करें तो जैसे हमारा

0: आपका जून शुरुआत हो गया, तो जून के 15 दिन आप अपने खेत की तैयारी में लगा दो। उसके बाद 15 जून से 15 जुलाई का जो महीना होता है, जो आप बोलते हो कि सही समय पे बुआई, ठीक है, ये बिल्कुल सही समय है तिल की बुआई करने का। किसी वजह से अगर सपोज आपका जून से जुलाई के बीच में, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में अगर बारिश बार बार आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, 10-15 दिन पीछे भी जा सकते हो। 15 जुलाई से आप कह लो 16 जुलाई से 20 जुलाई, 25 जुलाई तक भी आप अपनी फसल को ले जा सकते हो। और जहां तक बीज की दर की बात हुई, तो हम 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर बीज का उपयोग करते हैं, लेकिन हाँ, इसमें कतार से कतार की दूरी हम 30 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। और गहरा, एक तो छोटा छोटा बीज होता है, तो बिल्कुल आप इसको ऐसे ऊपर सतह पे छोड़ नहीं सकते हो, कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर उंगली से देख लोगे, उसके नीचे जाकर के फिर मिट्टी से ढकोगे। और सबसे बड़ी बात है, जब भी आप बुआई करें ना, तो हमेशा कतार में करें, बिल्कुल ऐसे छीट देने से, ब्रॉडकास्टिंग करने से ना वो उपज नहीं मिलती है आपको। बाद में कुछ एक्टिविटीज करने में, जैसे आपको वीडिंग करना है, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हो गए, कुछ भी करने में बड़ी दिक्कत आ सकती है।
1: और मैम, कई बार हमें लगता है कि बीजोपचार नहीं भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्या बीजोपचार करना जरूरी होता है?
0: बिल्कुल, बीज उपचार करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि देखो, आपको मैं बता दूं, गर्मी में ना कि हमारे पर्यावरण का, जबकि मिट्टी का भी तापमान कुछ बढ़ा हुआ होता है, तो उस तरह की जो मिट्टी के तापमान होती है, तो उस केस में हमारे जो कीट हैं, मकोड़े हैं, जो हमारे डिजीज है उत्पन्न करने वाले कुछ मक्खियां हैं, तो वो उस समय इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकती हैं। लेकिन जब हम खरीफ की बात करें, तो बिल्कुल ये एकदम, एक हमारा डिजीज ट्रायंगल आपने सुना होगा, होस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंट, ये तीनों बिल्कुल फेवरेबल होता है। हमारा होस्ट हो गया आपका जो ये क्रॉप हो गया, और पैथोजन तो बीमारी के बारे में आप जान ही रहे हो, इन्वायरमेंट हमारा टेम्परेचर भी है आपका 25 से 30 डिग्री, 35-32 डिग्री के आसपास, और ह्यूमिडिटी तो ज्यादा होती ही है, ठीक है। तो इस केस में आपको बीज उपचार करके अगर लगाएंगे, जैसे थिरम और कार्बन डजीम 2:1, 2 रेशियो आप लेंगे थिरम का, 1 कार्बन डजीम का, और 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का मिला करके, और आप ये रासायनिक उपचार करके अपने खेतों में बीज को लगा सकते हैं।
1: मैम, अब बात करते हैं खाद और उर्वरक के बारे में, तो इसका प्रबंधन कैसे करें?
0: बिल्कुल, अब जैसे हम लोग तभी तक एक्टिव हो सकते हैं जब हम भोजन ले, तो वैसे ही खाद की बात जब हम करेंगे, तो पौधों के लिए ये एक भोजन है। चलो, मिट्टी में जितना हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम है, वो तो रूट से पौधों में जा रहा है, लेकिन हमें बाहरी जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर होता है, वो भी देना आवश्यक होता है। तो अगर हम देखा जाए, तो जैसे हमने शुरू में जब हम खेत की तैयारी करते हैं, तो कुछ लोग उसी में गोबर या FYM लगा करके ही जुताई पाटा लगवा देते हैं। उसके बाद जब हम उर्वरक की बात करते हैं, तो आप कह लो कि नाइट्रोजन 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर, फास्फोरस आपका 2 से 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर आप डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे, तो जो हमारा यहाँ पे 40 केजी जो हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं, उसको हम एक बार तो शुरुआत में डालें, और एक बार जब पौधा हमारा कुछ 1 महीने का करीब हो जाए, 1 से 1.5 महीने का, तब हम दूसरी बार भी टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा तिलहनी फसल है, ऑयल सीड, इसके लिए सल्फर का कंटेंट ज्यादा होगा, तो ऑयल का यील्ड, ऑयल का कंटेंट ज्यादा होगा, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जिप्सम जो है 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप इसका यूज कर सकते हैं, ताकि क्रॉप में जो उच्च तेल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बराबर बरकरार रहे।
1: मैम, खरपतवार कैसे नियंत्रित करना चाहिए?
0: बिल्कुल, इसमें जैसे आपको मैंने बताया, जैसे आपने बुआई करी, 7 से 8 दिन के बाद आपका जर्मिनेशन हो जाता है, और बिल्कुल आपके सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है, उतने जैसा छोटा छोटा पौधा होता है। इस समय तो आप खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते हो, तो आपको ठीक जब से आपने बुआई की है, ठीक उसके 20-25 दिन के बाद आप शुरुआत कर सकते हैं सबसे पहली निराई और गुड़ाई का, ठीक है, 15 से 20 दिन में सबसे पहली। उसके बाद है कि जब पौधा कुछ थोड़ी दिन और हो जाए, मतलब पहली निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 25 दिन के बाद, फिर से आप 30 से 35 दिन के बाद आप दोबारा से आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इससे यह हुआ कि

0: आपस में जो पौधे हैं, जैसे आपने अगर एक लाइन में कतार की जो बुआई मैंने बोला जिससे किसानों को बहुत फायदा हो सकता है, तो एक ही पौधे आसपास में तीन चार पौधे हैं, तो आप जो एक्स्ट्रा पौधे हैं उनको आप हटाओगे और उसके बाद जो आप जितने भी खरपतवार हैं उनको हटाओगे, तो सरफेस पे पूरा अच्छे तरीके से पौधे तक धूप जाएगी, उसके बाद उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है वो अच्छे से अब्सॉर्ब होगा और आपका जो पौधा है वो बहुत हेल्दी होगा।
1: मैम, खरीफ तिल के प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं और
0: बिल्कुल
1: जी मैम, और इनसे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? हाँ,
0: जैसे आपको मैं बताऊं कि खरीफ में जैसे एक तो आप सबसे बड़ी देख लो, खरीफ तिल के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी आता है कि किसान भाई ये ध्यान देंगे कि जो हमारा तिल है ये एक ऐसा तिलहनी फसल है कि जहां पानी जमा हो गया आपके खेतों में तो बिल्कुल आप देखोगे कि पौधा जो है बिल्कुल झुक जाएगा और एकदम ऐसे अधमरा सा झुलसा हुआ हो जाएगा। बिल्कुल आप जैसे देखोगे जैसे इसमें झुलसा रोग लगती हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं, तो आप एक बार पहले देखोगे, कोई भी दवाई डालने से पहले देखोगे कि या तो बारिश की वजह से खेत में जल जमाव तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से पौधा जो है हमारा वो पीला पड़ गया है, उसमें झुलसा रोग की तरह कुछ निशानियां दिख रही हैं, तो ये कंफर्म करने के बाद ही आप जो भी प्रमुख दवाई है वो डालोगे। उसके बाद जैसे मैं आपको बताऊं फाइलोडी डिजीज, तो फाइलोडी जो गुम्मा बीमारी है वो आपका हमारा गर्मा में और खरीफ में दोनों में होता है। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि खरीफ में नहीं होता, गर्मा में अपेक्षाकृत गर्मा में ज्यादा होता है, बट खरीफ के मौसम में वैसे इलाके जहां पे आपको लगातार दो तीन दिन बारिश हुई उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है 25 से 30 डिग्री, और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर आप देखोगे कि 8-10-15 दिन के बाद फिर बारिश हो जाती है। तो ये जो जिस तरीके का जो से भी डिस्ट्रिक्ट में बिहार के इस तरीके का टेम्परेचर और क्लाइमेट का सिनेरियो बनता है वहां पे आपको गुम्मा बीमारी देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ आप देखोगे कि जब पौधा हमारा बन गया उसमें फलियां बनने लगी तो कुछ ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं वेबर की तरह होते हैं जो पत्तियों में छेद कर देते हैं, कभी कभी कैप्सूल बनने के बाद कैप्सूल में भी छेद कर देते हैं। तो ये कुछ प्रमुख रोग और कीट हैं जो आप खरीफ तिल में आपको देखने को मिलेंगे।
1: मैम, अब बात करते हैं कटाई और भंडारण की, भंडारण का और कटाई का सही तरीका क्या है?
0: बिल्कुल, जैसे आप किसी भी फसल को आप देखो तो आप जाते हो जब देखते हो कि पौधा हरे से थोड़ा पीला पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो जैसे आप खेत में पहुंचो और देखो तिल के पौधे जो हैं आपके पीले पड़ गए हैं और पत्ते झड़ने लगे हैं, और देखोगे इसमें जो फूल बनती है ना वो एक बार में पहले नीचे बनती है, नीचे से होते होते ऊपर की तरफ जाती है, तो नीचे की जो फूल हमारे पहले बन जाती है उनमें हमारा जो कैप्सूल होता है वो पहले बन जाता है, तो वो ज्यादा सूख जाता है, झड़ जाता है। तो अगर अभी तक इसमें कोई मशीनी कटाई का कोई इस तरीके का हमारे पास कोई प्रयोग अभी नहीं हुआ है और कोई उस तरीके की हमारे पास कोई मशीन भी नहीं है कि हम मशीन से एक ही बार में कटाई कर ले, क्योंकि इसमें जो पौधे में फलियां हैं वो नीचे में पहले पक के तैयार हो जाती हैं, ऊपर लेट से तैयार होती हैं, तो या तो आप देख लो या तो आप मैनुअली उसको जो पक के तैयार हो गई हो उनको एक एक करके आप निकाल लो, और नहीं तो अगर उस तरीके से देखो आप कि अगर मध्य जो पौधे का मध्य भाग है और निचला भाग है वो पूरी तरीके से पत्तियां सूख गई हैं, पीला पड़ गया है, तो आप उनको काट सकते हो। काटने के बाद आप छोटे छोटे बंडलों से रस्सियों से बांध करके छोटा छोटा बंडल बना ले, बंडल बनाने के बाद उसको कहीं ऐसे जमीन पे ऐसे नहीं डाल देंगे, क्योंकि देखो आप जान रहे हो कि खरीफ का सीजन है, कि अगर आपने जून जुलाई में बुआई कर ली है तो कम से कम आप सितंबर लास्ट में अक्टूबर फर्स्ट वीक में काटोगे, और बारिश उस समय भी होती है, तो जमीन पे आप जब डाल दोगे तो आप देखोगे कि कभी कभी अगर बारिश आ गया तो आपके कैप्सूल्स में और पौधों में एक तरीके का सफेद रंग का फफूंद लग जाता है, तो हमें वो नहीं करना, हमें कटाई करने के बाद पौधे को रस्सी से बांध करके खड़ा करके हमें जो भी हमारा थ्रेशिंग फ्लोर है उस पे रखना है ताकि ऊपर से उस पे धूप चारों बगल से पड़ते रह जाए, ठीक है। उसके बाद फलियां जैसे आप देखोगे कि जो बाकी बची हुई फलियां थी वो भी धूप से सूख गई हैं, अब खुलने लगी हैं, तो आप उसको तिरपाल के ऊपर डाल करके पौधे को झाड़ोगे तो सारी जो आपकी बीज हैं तिल के वो बाहर आ जाएंगे। और एक बात और बताना चाहूंगी उमा, कि जब भी गर्मी में आप देखोगे कि तापमान वैसे ही बहुत ज्यादा होता है तो जो हमारे बीज होती है ना उसको मॉइस्चर उसमें कम ही होता है, लेकिन जब हम खरीफ की बात करेंगे ना तो मॉइस्चर उसमें बहुत ज्यादा है, तो आप देखोगे कि कटाई करने के बाद बीज जो आप रखो तो बिल्कुल कहीं बांध के किसी पोटली या बोरे में ना रख दो, उसको ध्यान दोगे कि बारिश के बीच में भी अगर कुछ कुछ ऐसा है कि अगर 10 दिन 15

0: दिन के बाद अगर तेज धूप आ रही है तो आप अपना जिस भी बोरे में आपने उसको रखा है उसको बाहर निकाल करके धूप में फैलाए बीच बीच में, ये बहुत जरूरी है ताकि आपके कटे हुए जमा किए हुए बीज के अंदर फफूंद ना लगे।
1: तो मैम अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, मैं किसान भाई बहनों को यही कहूंगी कि सबसे पहले तो आप जो किस्में चुनते हैं उसको ध्यान से चुने, कौन सा गर्मा तिल का है वैरायटी, कौन सा आपका जो खरीफ तिल का वैरायटी है, उसके बाद समय पे बुआई करें। किसी वजह से अगर बुआई लेट हो जाती है तो 15 जुलाई के बाद आप एक दो हफ्ता ले लें, उससे ज़्यादा पीछे ना जाए, क्योंकि आप देखोगे कि टेम्परेचर के हिसाब से भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन और कैप्सूल जो उसमें जो फलियां बनती हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जितना आपको है खाद डालने का उतना ही डालें। कभी कभी क्या करते हैं किसान भाई, बहुत ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं, बोलते हैं कि, तो उस केस में क्या हो जाता है, तिल के पौधे पूरे झुलस के सूख जाते हैं, ठीक है, फिर उनको लगता है कि हो सकता है झुलसा बीमारी लग गई है। नहीं, और खरीफ के समय में एक बात ज़रूर बोलूँगी कि खेत में जल जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां जब भी आप लगाएं, या तो आप बंड ये बना करके लगाएं, बेड बना के रेस्ड बेड पे लगाएं, ठीक है, या रेस्ड बंड बना करके लगाएं, जैसे आप गन्ना आलू ये सब लगाते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि आपके खेत में पानी नहीं जमेगा और आपकी तिल की जो खेती होगी वो बहुत बढ़िया होगी।
1: तो किसान भाई बहनों, जिस तरीके से मैम ने बताया उन तरीके का इस्तेमाल करके आप तिल की खेती कर सकते हैं, और कुछ बातों का ध्यान जो मैम ने कहा उन बातों का ध्यान रखिए, आपको खरीफ तिल की अच्छी फसल मिलेगी, आपका मुनाफा अच्छा होगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके, थैंक यू उमा, नमस्कार।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
7: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दे कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दे, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है, और इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस के चौधरी सर. सर आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से, सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद मैडम.
0: सर सबसे पहला प्रश्न यही है कि धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है?
1: धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है, ये बहुत ही गंभीर सवाल है. और इस सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले तो मैं इसकी भूमिका के बारे में बताना चाहूँगा. जो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाद्यान्नों की मांग को पूरा करना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है. धान हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसल है और इसकी खेती विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में लगभग 4,22,00,000 हेक्टेयर में की जाती है. आजकल धान का उत्पादन लगभग 9,00,000 टन तक पहुंच गया है. राष्ट्रीय स्तर पर धान की औसत उपज 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा बिहार राज्य में इसकी खेती लगभग 31,00,000 हेक्टेयर में की जाती है तथा इसकी उपज 70,00,000 टन तक तथा उत्पादकता 22.45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो कि इसकी क्षमता से काफी कम है. इसके कारण कई कारण प्रमुख हैं, जैसे कि कीट एवं व्याधियों का प्रबंधन, बीज की गुणवत्ता में कमी, और भी इसके अलावा जो खरपतवार का प्रबंधन की समस्या और गलत शस्य क्रियाएं, इस सब कारणों से जो औसत उपज है वो बिहार राज्य में कम है. धान की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक विधि से धान की खेती को अपनाना होगा. हमारे देश तथा बिहार राज्य में मुख्यतः दो परिस्थितियों में धान की खेती की जाती है, पहला वर्षा आधारित और दूसरा संचित अवस्था में.
0: जी सर, अगर अब हम बात करें कि धान में अगर खर पतवार का प्रबंधन ना करें तो खर पतवार से किस प्रकार से हानि पहुंचता है हमारे धान के फसल को?
1: सबसे पहले तो खर पतवार प्रायः फसल से नमी, पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश तथा स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मुख्य फसल में उत्पादन में कमी आ जाती है. धान की फसलों में खर पतवार से लगभग 15 से 85% तक का नुकसान होता है. कभी कभी यह

0: नुकसान 100% तक पहुंच जाता है। सीधे बोए गए धान में खरपतवार से नुकसान रोपाई किए गए धान की तुलना में अधिक होता है। पैदावार में कमी के साथ साथ खरपतवार धान में लगने वाले रोगों के जीवाणु एवं कीट व्याधियों का भी आश्रय देता है। कुछ खरपतवार के बीज धान के बीज के साथ मिलकर उसकी गुणवत्ता को खराब कर देता है। इसके अतिरिक्त खरपतवार सीधे बोए गए धान में 20 से 40 किलोग्राम नत्रजन, 5 से 15 किलोग्राम स्फुर और 15 से 50 किलोग्राम पोटास तथा रोपाई वाले धान में 4 से 12 किलोग्राम नत्रजन, 1 किलोग्राम स्फुर और 7 से 14 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से शोषित कर लेता है तथा धान की फसल में पोषक तत्व से वंचित कर देता है और यह डायरेक्टली जो उपज है उसको कम कर देता है।
1: तो धान के फसलों में कौन कौन से प्रमुख खरपतवार हैं जो उगाते हैं?
0: मुख्यतः धान में या कोई भी फसल में तीन तरह के खरपतवार पाए जाते हैं। पहला एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, दूसरा है सकरी पत्ती वाले खरपतवार और एक होता है मोथा कुल के खरपतवार। उसमें से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है जिसमें नाम है जो इक्लिप्टा अलवा जिसको कहते हैं, कैना भी नाम से जानते हैं, सिजुलिया एक्जेलरिस है, कोमेलिना बेंगेलसिस है, एजीटीटम कोनोजॉइट्स जो उस फैमिली का प्रजाति का जो घास है वो निकल आते हैं और उस तरह से लाल साग को भी देखा गया है जो कभी कभी निकल आते हैं खरीफ मौसम धान के फसल में। इसके अलावा जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार है जिसको खास घास कुल के खरपतवार है, उसमें जो है छोटा सावक जिसको हम लोग इकाइनोकुलोना कुलोनम भी कहते हैं, उसके बाद एक सावक होता है जो इकाइनोकुलोना क्रुसिगेली होता है, इसके अलावा जो है मरुआ जिसको एलोसिन इंडिका, इसके अलावा एरगोटिस जेपोनिका जो मुड़मुड़ नाम से जो खरपतवार है वो प्रायः सकरी पत्ती वाले खरपतवार है। इसके अलावा जो मोथा कुल के खरपतवार आते हैं उसमें से जो साइप्रस इरिया है, साइप्रस फैमिली के मुख्य खरपतवार आते हैं जिसमें साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस डिफॉर्मिस जो कि स्केपरस मेरिसिमस इत्यादि, ये जो जो खरपतवार है वो मोथा कुल के खरपतवार होते हैं।
1: तो सर कौन से स्टेज पे किसान भाई बहन धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन करना शुरू कर देते हैं?
0: धान की फसल में खरपतवार से होने वाले नुकसान, खरपतवारों की संख्या, धान की किस्म एवं फसल से प्रतिस्पर्धा के समय पर निर्भर करता है। घास के कुल के खरपतवार जैसे सावा, कोदो, फसल के प्रारंभिक एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे कि सिजुलिया जिसको थुकचट्टा भी कहते हैं, इसके अलावा जो वन साग के जो एमरेंथस होता है वो सब जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार है वो फसल के लेट मतलब कि देरी से निकलते हैं। इसके अलावा जो है धान में बुआई के लगभग 15 से 45 दिन तथा रोपाई वाले धान में रोपाई के 35 से 45 दिन के धान में बाद समय में खरपतवार प्रतिस्पर्धा के दृष्टि से क्रांतिक या नाजुक दिन के बाद का समय खरपतवार प्रतिस्पर्धा के लिए आते हैं। इस दिनों में खरपतवार से मुक्त रखना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है तथा फसल के उत्पादन में भी अधिक प्रभावित नहीं करता है।
1: तो अब बात करते हैं कि खरपतवार का प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
0: खरपतवार का प्रबंधन बहुत तरह से करते हैं जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि खरपतवार को सही समय पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, चाहे तरीका कोई भी हो। धान की फसल में खरपतवार की रोकथाम निम्न तरीके से की जा सकती है। पहला है निवारक विधि। इस विधि में वो शस्य क्रियाएं हैं जिनके द्वारा धान की खेती में खरपतवार के प्रवेश को रोका जा सकता है, जैसे कि प्रमाणिक बीजों का प्रयोग करके अच्छी सरी गोबर की खाद जो हम खेत को तैयारी करते समय देते हैं उसको अपना करके, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करके, सिंचाइयों की नाली साफ सफाई करके, खेत की तैयारी एवं बुआई में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र की बुआई से पूर्व साफ सफाई करके। इसके अलावा जो है यांत्रिक विधि है जो कि खरपतवार को पर काबू पाने के लिए एक सरल एवं प्रभावी विधि है। इस विधि में किसान अपने हाथ या खुरपी की सहायता से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। खेतों में हो चलाकर या पेडीवीडर चलाकर खरपतवार का रोकथाम करते हैं। समानतः धान की खेती की फसल में दो निराई गुड़ाई, पहली बुआई रोपाई के 20 से 25 दिन बाद एवं दूसरी 40 से 45 दिन

बात करने से खरपतवारों को प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है तथा फसलों की पैदावार में काफी वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा जो शस्य क्रिया विधि है उसमें भी परिवर्तन करके खरपतवार को आप अच्छी तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा है बुआई से पूर्व खरपतवार को नष्ट करके, इसको स्टेल सीड बेड टेक्निक भी कहते हैं। इसमें कहते हैं खरीफ की पहली बारिश के बाद जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती के हो जाए तो इसको शाकनाशी जैसे ग्लाइफोसेट पाराक्वाइट जो केमिकल जो शाकनाशी है उसके द्वारा स्प्रे करके उसका एप्लीकेशन करके आप यांत्रिक विधि जोताई करके नष्ट कर सकते हैं, जिससे मुख्य फसल में खरपतवार के प्रकोप में काफ़ी कमी आती है। इसके अलावा जो है गहरी जुताई करके भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद गर्मी के मौसम में एक बार गहरी जुताई कर देने से खरपतवार के बीज एवं उसके कंद ऊपर आ जाते हैं तथा तेज धूप में जलकर ऊपरी अंकुरण क्षमता खो देते हैं। इस विधि से कीट एवं बीमारियों का भी प्रकोप कम हो जाता है। रोपाई वाले खेत में पडलिंग करके खरपतवार की समस्या को कम किया जा सकता है। पडलिंग एवं हैरो करने के बाद खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल करके खेत में पानी भरकर लंबे समय तक खरपतवार को रोकथाम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है किस्मों को चयन जो सही चयन करके आप उसका भी खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें क्या है जहां पर खरपतवार के रोकथाम के साधनों की उपलब्धता में कमी हो वहां पर ऐसी धान की किस्म का चुनाव करना चाहिए जिनकी प्रारंभिक बढ़ावार खरपतवारों की तुलना में अधिक हो ताकि ऐसी प्रजातियां खरपतवारों को आसानी से प्रतिस्पर्धा करके उन्हें नीचे दबा सकें। प्रायः यह देखा गया है कि किसान भाई असिंचित उपजाऊ भूमि में धान का छिटकाव विधि से बोते हैं। छिटकाव विधि से कतारों में बोई गई धान की तुलना में अधिक खरपतवार उगते हैं तथा उनके नियंत्रण में भी कठिनाई आती है। अतः धान को हम कतार में ही बोना लाभदायक होता है और उसमें खरपतवार की जो समस्या है वो छिटकाव विधि से कम होता है। इसके अलावा जो कतार की जो बीच की दूरी है उसको आप मेंटेन करके भी खरपतवार को अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें करते हैं धान की कतारों के बीच की दूरी कम रखते हैं, खरपतवार उगने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है। इसी तरह बीज की मात्रा में वृद्धि करने से भी खरपतवार की संख्या एवं वृद्धि में कमी की जा सकती है। धान की कतारों को संकरा करने से लगभग 15 सेंटीमीटर एवं अधिक बीज की मात्रा देने से प्रयोग करने से खरपतवार को वृद्धि की दबाया जा सकता है। उचित फसल चक्र अपनाकर भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। एक ही फसल को बार बार एक खेत में उगाने से भी खरपतवार की समस्या और भी जटिल हो जाती है तथा उसका जो रख रखाव है जो एक ही इकोलॉजी का जो खरपतवार है वो ज्यादा उगते हैं। अतः आवश्यक है कि पूरे वर्ष एक ही खेत में एक ही फसल लेने की बजाय फसल के बाद उसमें दूसरी फसल जो पल्सेज है ऑयल सीड है अगर दूसरी कोई भी परिवार का फसल है उसको लेने से खरपतवार को कम किया जा सकता है। सिंचाई एवं जल का प्रबंधन करके भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। रोपाई किए गए धान में पानी की उचित प्रबंधन करके खरपतवार को रोकथाम की जा सकती है। अनुसंधान के परिणामों में यह पाया गया है कि धान की रोपाई के 2-3 दिन बाद से 1 सप्ताह तक पानी 1 से 2 सेंटीमीटर खेत में समान रूप से रहना चाहिए। उसके बाद पानी का स्तर को 5 से 10 सेंटीमीटर तक समान रूप से रखने से खरपतवार की वृद्धि को आसानी से रोका जा सकता है। पडलिंग किए गए धान सीधे बोए धान की खेत में जब फसल 30 से 40 दिन का हो जाए तो उसमें पानी भरकर खेत की विपरीत दिशा में जुताई क्रॉस जुताई करके पाटा लगा देने से भी खरपतवार की रोकथाम की जा सकती है। उर्वरक का प्रयोग करके भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। भूमि में पोषक तत्व की मात्रा उर्वरक देने की विधि एवं समय के फसल एवं खरपतवार की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। फसल एवं खरपतवार दोनों ही भूमि में निहित पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार नियंत्रण करने से पोषक तत्व की उपलब्धता फसल को ही मिले सुनिश्चित की जा सकती है। पोषक तत्व की अनुमोदित मात्रा को ठीक समय एवं उचित तरीके से देने पर धान की फसल इनका समुचित उपयोग कर पाता है। असिंचित उपजाऊ भूमि जहां खरपतवार समस्या अधिक होती है वहां नाइट्रोजन की आरंभिक मात्रा में बुआई समय न देकर पहली निराई गुड़ाई के बाद देना लाभदायक रहता है।
तथा नाइट्रोजन को धान में की लाइनों के पास

काफी प्रभावी पाई गई है, लेकिन विभिन्न कारणों से इसका व्यापक प्रचलन नहीं हो पाया है। इनमें से मुख्य कारण यह है कि धान के पौधे एवं समय स्वसमय खरपतवार जैसे जंगली धान एवं सावा के पौधे में पुष्प अवस्था के पहले काफी समानता पाई जाती है, इसलिए पहले साधारण किसान निराई गुड़ाई के समय आसानी से उनका इनको पहचान नहीं पाते हैं। बढ़ती हुई मजदूरी के कारण भी में विधियां आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा के क्रांतिक समय में मजदूरों की उपलब्धता में कमी, खरीफ मौसम का असामान्य मौसम जिसके कारण कभी कभी खेत में अधिक नमी के कारण यांत्रिक विधि से निराई गुड़ाई संभव नहीं हो पाता है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में खरपतवार का शाकनाशियों द्वारा नियंत्रण करने से प्रति हेक्टेयर लागत मूल्य में कमी आती है तथा समय की भारी बचत होती है। लेकिन शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करने के समय उचित मात्रा, उचित ढंग तथा उपयुक्त समय पर प्रयोग का सदैव ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि की संभावना भी बनी रहती है। धान की फसल के प्रयोग की जाने वाली प्रमुख रासायनिक बहुत से हैं, जिसमें कि जो हम शुरू के ही समय बताए थे, जो धान में मुक्त तीन तरह के खरपतवार पाए जाती है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार और साथ ही साथ मोथा कुल के खरपतवार। उसको मारने के लिए चाहे उसका प्रबंधन करने के लिए निम्न रसायन का प्रयोग करना किसान के भाइयों के द्वारा उचित होता है, जिसमें से सबसे पहला है ब्यूटाक्लोर, जो कि बहुत अच्छी दवाई है, जिसको मिचेट नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग बुआई एवं रोपाई के 3 से 4 दिन के बाद करना अति आवश्यक है। ये लगभग में इसका जो मात्रा है वो कम से कम 1.5 से 2 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए, जो कि सिर्फ घास कुल के खरपतवार को ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो है एलिलोफॉस एलिलोगार्ड, जिसका मात्रा जो है 400 से 500 सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है, ये भी प्री इमर्जेंस जो है उसके लिए उपयोग करते हैं, वो भी बुआई के 2-3 से 4 दिन के बाद ही उसको देना लाभदायक है। ये भी घास एवं मोथा कुल के खरपतवार के लिए कारगर है। इसके अलावा जो है बिस्पेरीबैग सोडियम नाम का एक दवा है, जो कि इसका जो 10% इसी की मात्रा पाया जाता है, जो कि लगभग में 250 ml प्रति हेक्टेयर के दर से इसका दर होता है और ये 25 से 30 दिन के बाद देना उपयुक्त होता है। ये चौड़ी पत्ती एवं घास कुल के खरपतवार के लिए कारगर होता है। इसके अलावा जो है एक ऑक्सीडाइजोन जो है कम से कम 750 से 1500 ग्राम ए प्रति हेक्टेयर की दर से है, जो कि घास और मोथा और चौड़ी पत्ती तीनों के लिए ये बहुत ही कारगर दवा है। इसके अलावा किसान भाइयों जो नर्सरी लगाते हैं उसमें भी बहुत से खरपतवार का प्रकोप रहता है, उसमें भी ये दवा जो है वो कारगर है, जैसे कि पेट्राक्लोर, जो कि 50% इसी का मात्रा पाया जाता है, जिसका डोज है 750 ml से 1000 ml AI प्रति हेक्टेयर। यह घास मोथा चौड़ी पत्ती कुल के खरपतवार के लिए बहुत ही कारगर है, जो कि आप इसको धान के नर्सरी में भी और जब रोपा करते हैं उस समय भी देना बहुत ही लाभदायक। जो कि एक और भी दवा है जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि 2,4-D नाम का एक दवा है, जिसका जो डोज है 0.5 लीटर से 1 लीटर ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से है, रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद देना कारगर पाया गया है और ये सिर्फ चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा जो है बहुत से दवा है, जैसे ऑल मिक्स जो दो हर्बिसाइड दो शाकनाशियों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें क्लोरोमिरोन और मेटसल्फिरोन है, ऑल मिक्स करके आता है, वो 4 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से पाया जाता है, जिसमें कि चौड़ी पत्ती मोथा कुल के खरपतवार के कारगर है। जिन किसान भाइयों को चौड़ी पत्ती और मोथा कुल के खरपतवार को मारना है, उसमें इथॉक्सी सल्फिरोन सनराइज के नाम से है, जो कि 100 ml प्रति AI प्रति हेक्टेयर के दर से है, जिसमें चौड़ी पत्ती और मोथा कुल के खरपतवार को खत्म करते हैं। इसके अलावा जो किसान भाइयों सिर्फ मोथा को ही मारना है, उसमें है एजीम सल्फिरोन नाम का एक है, जिसमें 50 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से देते हैं, जो कि सिर्फ मोथा के ही घास जो कुल है उसको ये कारगर होता है। इसके अलावा जो भी और भी जो खरपतवार है, इतना अगर कोई भी अगर शाकनाशी अवेलेबल है उपलब्ध है, उसमें कोई भी खरपतवार नाशी अगर आप प्रयोग करते हैं, तो निश्चित ही आपको जो रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन में

0: सहायता मिल सकता है।
1: जी सर। सर आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
2: संदेश यही है, जो अगर आपके खेत में खरपतवार से संबंधित कोई भी समस्या है तो सबसे पहले तो उसका पहचान करना बहुत जरूरी है, उसके उपरांत ही आप कोई भी जो उसका उपाय है उसका आप उपयोग करें, नहीं तो लाभ के बदला हानि का हानि ही हो सकता है। और साथ साथ पहले आप उसकी पहचान करें, उसके बाद ही उस शाकनाशियों को उसके जो अगेंस्ट जो उसका में काम करे उसका प्रयोग करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे किसान भाई बहनों, जिस तरीके से सर ने बताया उन तरीकों को अपनाकर आप धान की फसलों में खरपतवार का प्रतिबंधन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि
4: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
4: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है कर...

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में, और लेडीज फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहां वो काम करने जाती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है, या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है, शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहाँ पर उन्हें असहज महसूस होता है, क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है, या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और

आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का कामकाजी महिलाओं का साथी या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है सबसे जरूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप अपनी आवाज उठाएं और आप इससे संबंधित विभाग तक पहुंचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे और सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए और आप आवाज़ उठाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका डर ख़त्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर ज़रूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी हो। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए और इसके साथ ही ये भी जरूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं, यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले तो जो भी वहाँ पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो पर लिखिए ज़रूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुँची है। दोस्तों आखिर शी बॉक्स ज़रूरी क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगी, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है, कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों, लेकिन

विद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

विद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, अभी मौसम चल रहा है जब हमारे किसान भाई बहन धान की खेती करने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें वो कर चुके हैं, लेकिन कई सारे किसान भाई बहन इस बात से परेशान रहते हैं कि पानी की समस्या है, बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे में हमारे वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि हमें सीधी बुआई करनी चाहिए। सीधी बुआई क्या है, किन बातों का इस दौरान हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर SS आचार्य सर, हैं सस्य विज्ञान विभाग से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: थैंक यू
6: सर। सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि सीधी बुआई, जिसे कि DSR भी कहते हैं, वो क्या है।
7: अगर सीधी बुआई के बारे में हम लोग देखेंगे कि अभी तक हम लोग जो धान लगाते थे, जो धान की खेती करते थे, उसमें हम लोग क्या करते थे, पहले नर्सरी तैयार करते थे, फिर पौधे की रोपाई करते थे और खेत को कीचड़ युक्त करके उसके बाद रोपाई करते थे। इसमें क्या होता था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि धान की रोपाई, ठीक। और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, आज आप लोग देख रहे हैं कि बारिश नहीं है, बारिश की बहुत कमी है। अगर देखा जाएगा बिहार में 40-50% अभी तक बारिश हुई है, तो इसीलिए कम पानी अगर है तो आप फील्ड को कीचड़ कैसे कीजिएगा। तो कीचड़ करने के लिए तो आपको तो पानी चाहिए, आइदर आपके पास सिंचाई का साधन हो नहीं तो बारिश हो। तो ये दोनों जब नहीं है तो आप फील्ड में अगर धान लगाना चाहते हैं तो आपका एक नया टेक्नोलॉजी जो हुआ कि सीधी बुआई, उसको आप लोग कर सकते हैं। इसको अगर देखा जाएगा तो ये क्या है, ये है पानी को बचाएगा, मजदूरी की जो लागत है उसको घटाएगा और फिर अच्छा उपज देने के लिए भी मदद कर सकता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सीधी बुआई, कि मतलब बिना जो कि फील्ड प्रिपरेशन, जैसे कि कीचड़ युक्त तो नहीं करके, अगर डायरेक्टली हम ट्रैक्टर चला के, जब मानसून आने से पहले हम फील्ड में ट्रैक्टर चलाएंगे, जैसे गेहूं की बुआई जैसे करते हैं, सेम स्टाइल में हम लोग धान का बुआई करेंगे। और उसमें क्या करेंगे कि मानसून आने से पहले, जब अभी तक भी मानसून ठीक से आया नहीं अभी तक, तो जब फील्ड में हल्का सा नमी हो या नमी भी ना हो, इसी समय में हम लोग फील्ड में जुताई करेंगे, 2-3 बार जुताई करेंगे। ऐसे जुताई करेंगे कि 2-3 बार के बाद, जैसे कि अगर जब हम धान का सीड वहां पर बुआई कर रहे हैं, तो सीड और जो मिट्टी, उसके साथ मिट्टी के साथ सीड पूरा एकदम मिल जाए, पूरा कॉन्टैक्ट में आ जाए, और जिसके बाद जब बारिश होगा तब क्या होगा, उसमें से अंकुरण निकलेगा और उसमें से जो धान का पौधा निकलेगा उसको हम बोलेंगे सीधी बुआई।
6: तो सीधी बुआई के और क्या क्या फायदे होते हैं,
7: पहले हम लोग अगर देखेंगे सीधी बुआई, पहले मैं अभी बोल चुका हूं कि खेत को पहले ठीक से तैयार करना है। जब तैयार करना है उसमें पहला जो फायदा है कि पानी कम लगेगा, कम पानी मतलब अगर आप देखिएगा कि एक फील्ड को पडलिंग या जो कीचड़ युक्त करने के लिए 200 से 250 मिलीमीटर का जो पानी है उतना चाहिए, 25 सेंटीमीटर का पानी चाहिए। वो पानी अगर 2-3 दिन में बारिश होगा, जोर से ढेर से बारिश होगा, तब जाके हो सकता है, नहीं तो आपको उतना पानी देना पड़ेगा।

0: जाके आप फील्ड को ट्रैक्टर रोटावेटर पानी भर के उसके बाद ट्रैक्टर रोटावेटर चला के फील्ड को कीचड़ युक्त करेंगे, उसके बाद जाके रोपाई कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा ना, आपको कुछ भी पानी का जरूरत ही नहीं है। सूखा में आप धान का बुआई कीजिएगा और वहां पर क्या होगा ना, आप जब सूखा में बुआई कर रहे हैं तो आप जब बारिश होगा, बारिश होने के बाद आपका धान का जो अंकुरण हो जाएगा, जिसके कारण आप बहुत पानी को बचा लिए। और एक चीज हुआ, और एक फायदा हुआ, जो कि धान में धान का रोपाई के लिए बहुत सारे लेबर लगते हैं। अगर देखा जाएगा एक एकड़ में 15 से 20 तो लेबर आपको लगाना पड़ेगा धान का रोपाई के लिए, प्लस 250 मिलीमीटर रेनफॉल का या इरिगेशन चाहिए। तो ये दोनों से बच जाएगा अगर आप सीधी बुआई किए तो।
1: तो सर सीधी बुआई कब करनी चाहिए किसान भाई बहन?
0: अगर सीधी बुआई का सही समय देखें तो मानसून आने का 7 से 10 दिन पहले। क्यों? क्योंकि अगर मानसून एक बार फुल फेज में आ गया, पानी भर जाएगा फील्ड में और सीधी बुआई नहीं हो पाएगा। इसलिए जब फील्ड सूखा है या फील्ड में आप जानते हैं कि 7 दिन के बाद मेरा बारिश होने वाला है, बारिश का तो फोरकास्टिंग हो जाता है, उसी समय आप फील्ड को तैयार करके बुआई कर दीजिए। अगर 2 दिन 3 दिन ऐसे फील्ड में सूखा रहा नो प्रॉब्लम, उसमें जब बारिश होगा उसके बाद वहाँ से वो जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होके पौधा बड़ा होगा और वहाँ पर इसीलिए सबसे बोला जाता है कि सबसे बेस्ट टाइम है 7 से 10 दिन पहले। तो जैसे कि बारिश होने के समय उसका जड़ मजबूत हो जाना चाहिए मिट्टी में, तब दैट इज द राइट टाइम।
1: जी सर। सर आप एक बार हमें विस्तार से बता दीजिए कि किस प्रकार से कैसे सीधी बुआई करनी चाहिए।
0: पहला है कि सीधी बुआई अगर देखेंगे, मैं जुताई के बारे में बोलूंगा। जुताई दो टाइप का है, एक है कन्वेंशनल जुताई, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि परंपरागत जुताई, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे कि फील्ड को गेहूं के टाइम में जैसे हम लोग खेत को तैयार करते हैं उसी तरफ हम लोग धान का खेत को भी तैयार करेंगे। करने के बाद हम लोग इसको बढ़िया करके रोटावेटर चला के इसको उसके बाद यहाँ पर हम लोग धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। और एक हुआ, अगर ये एक न्यू टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ, जो कि शून्य जुताई या जीरो टिलेज। आपको पहले आपका फील्ड में तो घास या खरपतवार तो होगा ही, तो 10 से 15 दिन पहले आपको जो ग्लाइफोसेट है और पैराक्वाट है, ग्लाइफोसेट हो सकता है नहीं तो पैराक्वाट है, वहाँ पर अप्लाई कर देना है, वहाँ पर स्प्रे कर देना है। 15-20 दिन पहले अगर आप इसको स्प्रे कर दीजिएगा तो आप पूरा फील्ड घास मुक्त हो जाएगा। तो उसके बाद आप थोड़ा सा बारिश या थोड़ा सा जब बारिश होगा या बारिश नहीं भी होगा तो उसी समय आप डायरेक्टली हम लोगों का जो सीड ड्रिल हम लोग बोलते हैं उसी में आप डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जुताई का। इसके बाद अगर देखेंगे कि बिजाई का समय हम बोल दिए हैं 7 से 10 दिन पहले। इसके बाद हो गया कि अगर हम लोग देखेंगे कि कैसे बुआई करें, तो हम लोगों का जो सीड है या बीज है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर नीचे गहराई में रहना चाहिए और उसके ऊपर एक मिट्टी थोड़ा अगर हम लोग दे देंगे तो वहाँ पर क्या होगा ना, वो जो जड़ है, जड़ अंदर में मजबूत रहेगा, चिड़िया भी खाएगा नहीं और आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा। दूसरा चीज हुआ कि हम लोग अगर देखेंगे, हम लोग बोलते हैं पंक्ति में शक्ति, मतलब कि अगर हम लोग लाइन सोइंग करेंगे तो लाइन में बुआई करेंगे तो वो और अच्छा होगा। तो इसीलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि 20 सेंटीमीटर जो लाइन से लाइन या जो पंक्ति से पंक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी में हम लोग अगर बुआई करेंगे, और जो अगर पौधा से पौधा देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर, हम लोग ऐसे रोपाई के टाइम में हम लोग 15 सेंटीमीटर का जो स्पेसिंग लेते हैं, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्पेसिंग अगर लेंगे तो वही हमारा सही रहेगा। इसके बाद देखेंगे कि बीज, किसी भी बीज हो, बीज को हम लोग उपचार कर लेना चाहिए। बीज को हम लोग बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट, बीज को शोधन कर लेना चाहिए, उपचार कर लेना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कार्बेंडाजिम हो या थीराम हो, कैप्टन हो, इसको 2 से 2.5 ग्राम प्रति एकड़ प्रति किलोग्राम बीज के साथ मिला के उसके बाद अगर बुआई करेंगे तो वहाँ पर रोग आने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि धान में बहुत तरह का रोग आते हैं। तो उसको अगर हम लोग

0: बीज को शोधन करेंगे या बीज को उपचार करेंगे तो हमारा वहां पर रोग आने का चांसेस कम रहेगा।
1: सर, पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हमारे किसान भाई बहनों को क्या उपाय करने चाहिए?
0: जो हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व, मतलब कि हम लोगों का खाद, सीधी भाषा में बोलेंगे तो हम लोगों का खाद, खाद कब देना है, कितना देना है, उसके बारे में बोलेंगे तो शुरू में धान का जब बुआई करेंगे उसी समय हम लोग खाद देंगे नहीं, उसका 10 दिन या 10 से 15 दिन के बाद हम लोग खाद देंगे। तब क्या करेंगे कि हम लोगों का अगर देखा जाएगा तो एक हेक्टर के लिए बोल रहा हूँ, एक हेक्टर के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास, ठीक, 120 किलो नाइट्रोजन एक हेक्टर के लिए बोल रहा हूँ,

0: उसका सबसे संग मैंने पोषक तत्व के लिए संकट समय है, उसी समय अगर हम उसको आप देंगे खाद को छिड़काव करेंगे तो वह हमारा उपज ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए किसान भाइयों ध्यान रखिएगा कि फॉस्फोरस पोटास को आधार खाद और 50% नाइट्रोजन मतलब कि 60 केजी नाइट्रोजन आपका आधार खाद और जो बाकी 50% या 60 किलो बचा उसको दो भाग में भाग करके आधा देंगे कल्ले निकलने के समय और आधा देंगे बाली निकलने के समय, ऐसे अगर देंगे तो हमारा अच्छा उपज हो सकता है।
1: और अगर खरपतवार नियंत्रित करने की बात करें तो वो किस प्रकार कर सकते हैं?
0: ये एक फसल है इसमें खरपतवार इतना होगा, बहुत सारे खरपतवार होंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग सीधी बुआई किए हैं, तो जैसे कि धान को मौका मिला उसको जर्मिनेशन के लिए, खरपतवार को भी मौका मिला उसको जर्मिनेशन के लिए। रोपाई का एक प्लस पॉइंट है कि रोपाई के समय जब हम कीचड़ कर देते हैं पूरा फील्ड को, तब क्या होता है खरपतवार ऐसे ही नियंत्रण हो जाता है, लेकिन यहाँ पर खरपतवार नियंत्रण इसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोगों को एक से दो बार हाथ से निकाल देना है, लेबर लगा के निकाल देना है, नहीं तो मैं कुछ दवाई का बोल रहा हूँ उसको अगर आप लोग दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वो जो दवाई है बिस्पेरीबैक सोडियम, याद रखिएगा बिस्पेरीबैक सोडियम, जो कि बाजार में बहुत सारे नाम में आता है, एक नाम है नोमिनी गोल्ड। सो बिस्पेरीबैक सोडियम को अगर देखा जाएगा तो एक हेक्टर के लिए बोल रहा हूँ 250 ml, एक हेक्टर के लिए 250 ml, और याद रखिएगा 500 लीटर पानी चाहिए, एक हेक्टर के लिए 500 से 600 लीटर तक पानी चाहिए। उसमें अगर 250 ml अगर हम देंगे तो छिड़काव करेंगे, कब छिड़काव करेंगे 20 से 25 दिन समय, जिस समय जो खरपतवार है उसका 2 से 3 लीफ स्टेज है, जो पत्ता निकला है, उसी समय हम अगर अप्लाई करेंगे तो खरपतवार नियंत्रण होगा। और कुछ दवाई बोल रहा हूँ, एक हुआ साइहलोफॉप ब्यूटाइल प्लस पेनेक्सुलाम, इसको 1000 ml अगर एक एकड़ के लिए 1000 ml और एक हेक्टर के लिए देखिएगा तो 2.5 liter अगर हम अप्लाई करेंगे वही 20 से 25 दिन में तो हमारा खरपतवार भी नियंत्रण हो सकता है। और है अगर चौड़े पत्ती वाले ज़्यादा खरपतवार है तो 2,4-D 1 liter पानी में 3 ml करके अगर हम स्प्रे करेंगे तो पूरा चौड़े पत्ती वाले को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक भी सकरे पत्ती वाले मरेंगे नहीं, इसीलिए जहां पर चौड़े पत्ती वाले ज्यादा हैं वहां पर 2,4-D आप जो कि सबसे लो कॉस्ट हर्बिसाइड है उसको दे सकते हैं। और कुछ दवाई बोल रहा हूँ जैसे कि फेनोक्साप्रॉप प्लस इथॉक्सीसल्फुरन, मेटसल्फुरन मिथाइल प्लस क्लोरीमुरन इथाइल, ये सब दवाई भी दिया जा सकता है, छिड़काव किया जा सकता है।
1: जी सर, और जल प्रबंधन की बात करें तो वो कैसे किया जा सकता
0: है? जल प्रबंधन देखिए ये है धान की सीधी बुआई अगर देखेंगे शुरू में तो पानी बारिश का पानी में ही जब हम बुआई कर दिए, बुआई के बाद 7-8 दिन के बाद जब बारिश होगा उसी पानी में हमारा काम चलेगा, लेकिन अगर बारिश नहीं हुआ तो आपको ये जो कल्ले निकलने के समय जिस समय बोला कि फर्टिलाइजर देने का जो खाद देने का समय था वही समय एक है, और उसके बाद हर 7-8 दिन अंतर अंतर में पानी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा धूप ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा मैंने बारिश नहीं हुआ तब मतलब कि आपको पानी का थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इसमें ज़्यादा हम लोग पानी को ऐसे ही करेंगे कि 4 से 5 cm का पानी हर टाइम जैसे फील्ड में बने रहे, तब क्या होगा आपका घास कम निकलेगा, इसीलिए उसको ध्यान में रख के अगर हम लोग सिंचाई करेंगे तो हमारा अच्छा उपज होगा। और एक चीज़ बोल रहा हूँ कि रोपाई में जो 250 ml हम बोले थे कि 250 ml पानी लगता है कि कीचड़ करने के लिए वो हर, लेकिन यहाँ पर पूरा बच गया, इसीलिए यहाँ पर रोपाई के बाद जो कि ट्रांसप्लांटेड राइस में रोपाई के बाद जितना पानी लगेगा यहाँ पर भी उतना पानी लगेगा, लेकिन रोपाई और रोपाई से पहले जो पानी वह यहाँ पर बच जाएगा।
1: और अगर हम DSR तकनीक में कुछ नवीनतम तकनीकों के बारे में बात करें तो किन तकनीकों का इस्तेमाल हमारे किसान भाई बहन को करना चाहिए?
0: हाँ, देखा जाएगा कि कुछ कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम तो कुछ टेक्नोलॉजी

0: जैसे बोले कि ये सीधी बुआई एक ही न्यू टेक्नोलॉजी है,
1: और एक है सीधी बुआई के साथ हम लोग अगर फील्ड में अगर खेत को हम लोग थोड़ा ज़्यादा उर्वर करना चाहते हैं तो, और जहाँ की नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, उसको अगर कम करना चाहते हैं, एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं हरी खाद या भूरी खाद। जैसे कि हरी खाद मतलब ग्रीन मैन्योरिंग, धैंचा एक का धैंचा को अगर हम धान लगाने से पहले धैंचा को दो टाइप का किया जा सकता है। एक हुआ 45 दिन पहले हम धैंचा को फील्ड में छिड़काव कर देंगे, उसके बाद क्या हुआ कभी कभी कभी थोड़ा पानी मानसून पानी ये वो करके वहाँ पर वो अच्छा सा उसका उसके लिए भी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, और वो क्या होगा जब 45 दिन का हो जाएगा उसी समय हम उसी फील्ड में उसी धैंचा को इनकॉर्पोरेट कर देंगे, मतलब कि जुताई कर देंगे, और उसमें से हमको एक अच्छा खासा नाइट्रोजन मिल सकता है। नाइट्रोजन जो कि धान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको अगर हम हरी खाद के हिसाब में हम हरी खाद धैंचा को का हरी खाद वहाँ पर उगाएंगे तो वहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन को भी बचा सकते हैं। और एक हुआ भूरी खाद जिसको बोलते हैं ब्राउन मैन्योरिंग। वह क्या हुआ कि धान जब हम लोग बुआई कर रहे हैं उसी समय धान के साथ भी और एक जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग धैंचा को ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे, मतलब धान का बुआई भी हुआ धैंचा का ब्रॉडकास्टिंग भी हुआ। उसके बाद क्या होगा तो धान वहां पर निकला और धैंचा भी निकला, तो 25 दिन के बाद, याद रखिएगा 25 दिन से ज्यादा नहीं रखिएगा, यहां पर 25 दिन के बाद हम लोग वहां पर 2,4-D स्प्रे कर देंगे। 2,4-D जो खरपतवार नाशी है उसको अगर स्प्रे करेंगे तो वहां पर क्या होगा पूरा जमीन से का जो धैंचा है वो धैंचा सब मर जाएगा। मर जाएगा मतलब उसका जड़ में जो नाइट्रोजन है वो फील्ड में, उसी फील्ड में वो नाइट्रोजन आपको मिल गया। इसलिए वहां पर भी हम लोग 20 से 25 किलो नाइट्रोजन भी एक्स्ट्रा हम लोगों को हरी खाद या भूरी खाद के हिसाब में हम लोगों को मिल जाएगा। यही एक टेक्नोलॉजी है। और एक है कि अगर पोषक तत्व में जब हम बोले थे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, उसके साथ और एक पोषक तत्व जो कि हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक तत्व, वो है जो जिंक। जिंक मतलब कि जस्ता जो बोलते हैं, उसको अगर हम 20 से 25 किलो पर हेक्टर में अगर हम देंगे तो धान के लिए वो बहुत जरूरी है, और धान का प्रोडक्शन बढ़ेगा अगर हम जिंक अप्लाई करेंगे तो, क्योंकि जिंक अगर नहीं रहेगा फील्ड में तो जिंक के लिए कुछ एक रोग होता है जिसको हम लोग खैरा रोग बोलते हैं, तो वह अब क्या करता है पौधा को कमजोर कर देता है, पौधा बढ़ नहीं पाता है और उपज घट जाता है।
2: जी सर, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को अगर कुछ बातें कहना चाहें तो क्या कहेंगे?
0: किसान भाइयों, अभी अगर देखेंगे बारिश जैसे कम हुआ है तो इसी समय आप लोग अगर धान का बुआई चाहते हैं तो आप सीधी बुआई कीजिए। तो कैसे, जैसे कि गेहूं को जैसे बुआई करने के लिए जैसे ही फील्ड को प्रिपेयर कर रहे थे उसी टाइप का आपको खेत को बनाना है। उसके बाद लाइन स्विंग करके 20 सेंटीमीटर में लाइन स्विंग करके अगर आप धान का बुआई कीजिएगा तो भी आपका किया जा सकता है।
2: जी सर, तो किसान भाई बहनों, जिस प्रकार से सर ने बताया कि आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं और जिन तकनीकों के इस्तेमाल के बारे में सर ने बताया, उन सारी बातों का आप ध्यान रखें और धान की सीधी बुआई करके भी आप अच्छी फसल उगा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके, थैंक यू।
2: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का खूब ख्याल रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।
3: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो।
4: खांसी खो खो खांसी।
3: टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे। रोग

0: बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो, टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: रहो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दे कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1, आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दे, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10 गुना 10 मीटर

और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें, इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना न भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि।
6: किसान भाइयों को आरजी अनु का प्यार भरा नमस्कार। आइए आज मैं लेकर चलती हूँ आपको धान में शीथ ब्लाइट के प्रबंधन की ओर, और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर एपी भगत, प्राध्यापक पौधा रोग विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और डॉक्टर साहब, जब बात आती है रोगों की, और वो भी धान में, तो ये जो शीथ ब्लाइट रोग है वो हमारे धान की फसलों के लिए एक प्रमुख रोग बनकर रह गया है, और ऐसे में हम सभी देख रहे हैं कि पहले के चार पाँच साल से धान की फसल में 60% तक गिरावट आई है, और ऐसे में किसान भाइयों के लिए शीथ ब्लाइट का प्रबंधन करना एक चुनौती बन गया है। तो सबसे पहले सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शीथ ब्लाइट नाम क्यों पड़ा इस रोग का?
7: आप किसान भाई जानते होंगे कि आप जब धान लगाते हैं अपने उत्पादन के लिए अपने, तो क्या होता है कि आप जब फसल हमारा 30 से 40 दिन का हो जाता है रोपने से, जिसमें हम लोग घास उसमें खेत से निकालने के लिए तैयार होते हैं, उस समय देखते हैं कि बहुत हमारा खेत स्वस्थ होता है, और उस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं कि घास निकालने के बाद जब खेत में घूमने जाते हैं कुछ दिन के बाद, देखते हैं कभी कभी कि हमारे खेत में धब्बा लग जाता है। यह जो धब्बा है शीथ ब्लाइट कहलाता है, जो आप लोकल भाषा में जो हमारा क्षेत्र यह है इसमें हम लोग गलसा गलसा कहते हैं। यह गलसा क्यों होता है? गलसा जैसे है शीथ बाला ब्लाइट, उसको हम लोग आवरण झुलसा भी कहते हैं। आवरण झुलसा मतलब हुआ कवर, जैसे आपके धान के पत्ती को खींचते हैं तो एक कवर होता है नीचे में, पत्ती के नीचे, उसी आवरण पर यह लक्षण सबसे पहले दिखाई पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसको शीथ ब्लाइट बोलते हैं, और उसका हिंदी में आवरण झुलसा बोलते हैं।
6: अच्छा, आवरण झुलसा।
7: जी हाँ।
6: और इसके बाद सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शीथ ब्लाइट वैसे तो रोग हानि ही पहुंचाता है, चाहे वो मनुष्य हो या धान हो या फसल हो, जो भी हो। तो रोग की बात कर लेते हैं, शीथ ब्लाइट रोग की, तो ये धान की फसलों को कहाँ तक हानि पहुंचाता है?
7: आप किसान भाई जानते होंगे यह शीथ ब्लाइट जो हमारा है, यह जो गलसा रोग है, आपको अगर शुरू अवस्था में लगा तो देखेंगे कि उग्रता के हिसाब से, उग्र जब रोग होता है पूरे बाली तक आ जाता है, झुलसा ये हमारा पूरे बाली तक आ जाएगा, तो हमारा जो भोजन बनाने की क्रिया है पत्ती द्वारा वह समाप्त हो जाता है। लगभग हमें यह 50% तक हानि हो जाता है, आधा जो फसल हमें 10 क्विंटल होना चाहिए उसके से हमको 5 क्विंटल होगा, मतलब 50% तक का हानि को देखा गया है इसमें।
6: यानी कि 50% तक की गिरावट हो सकती है फसलों में, धान की फसलों में, या फिर यूँ कहेंगे कि धान की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद सबसे ज़रूरी होता है कि हम जाने कि हमारे इस धान की फसल को शीथ ब्लाइट रोग लग चुका है, और इसके लिए ज़रूरी है पहचान। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस रोग का पहचान कैसे किया जाए?
7: आप किसान भाई देखेंगे कि जब आपका पौधा 50 से 60 दिन हो जाएगा तो आपके जो आवरण है, जो जहाँ पर पानी की सतह है, पानी की सतह से 1-2 इंच ऊपर देखेंगे आवरण पर या शीथ पर भूरा रंग का धब्बा बनता है। यह भूरा रंग का धब्बा जब बढ़ता है तो यह पत्ती की ओर चला आता है, जब पत्ती पर आता है तो हम पत्ती पर देखते हैं भूरा से चिकता नेमा सांप का जो इस धब्बा होता सांप के ऊपर, भरकदार चमकदार उस तरह के पत्ती पर

0: और नियमित आकार का, कोई निश्चित नहीं है कि गोल होगा, वो अनियमित आकार का धब्बा दिखाई पड़ता है, बहुत चमकीला होता है, और उसके बाद यह धब्बा जो है आपके पूरे पत्ती को झुलसा देता है और धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर बढ़ जाता है। इसका पहचान यही है, जिसको आप लोग बाद में क्या कहते हैं कि झुलस गया, गलस गया, आप लोग बहुत देर से देखते हैं। अगर शुरू अवस्था में देखेंगे तो आवरण पर भूरा रंग का धब्बा बनेगा, जहां पानी से एक दो इंच ऊपर जो हमारा धान का पौधा है, जो पत्ती के नीचे जो कवर किया हुआ है डंठल, वो आवरण जो है, वह शीत जो है, उसको उस पर धब्बा दिखाई पड़ता है। बाद में यह क्या होता है कि पूरे पत्ती पर झुलस जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब ने बताया किसान भाइयों की आवरण पर भूरे रंग का धब्बा अगर आपको दिखाई दिया जाए तो आप समझ लें कि वो प्रारंभिक अवस्था है शीत ब्लाइट रोग का, और अगर आप उसका उपचार करते हैं उसी समय तो आप इससे बच पाएंगे, इस रोग से अपने धान के फसलों को बचा पाएंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो शीत ब्लाइट रोग है ये हमारे धान की फसलों में फैलता कैसे है?
0: किसान भाई आप जानते होंगे कि आप जब भी खेती बाड़ी करते हैं तो हम स्वस्थ बीज का उपयोग करते हैं। जब स्वस्थ बीज का उपयोग किए, बिचरा लगाए, तो क्या करता है कादो करने के समय जो शीत ब्लाइट का जो बीज है, इस रोग, यह रोग जो है फफूंद के कारण होता है। इस फफूंद का नाम है राजेक्टोनिया सोलना है। यह फफूंद जब अपनी पूर्ण अवस्था करके फिर यह जो बीज को छोड़ देता है, उसका गोल गोल बीज होता है, जो सरसों का दाना आप जानते हैं जो बहुत छोटा होता है, उस तरह का बीज इसका होता है जो जमीन में पड़ा हुआ मिलता है। जब आप कादो करते हैं तो यह बीज तैर करके ऊपर आ जाता है, सो ऊपरी सतह पर। जब आप कादुआ करते हैं उसके बाद हम वह बीज दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसका भी रंग भूरा होता है, मिट्टी में गंदा पानी होता, नहीं दिखाई पड़ता है। बाद में आप देखेंगे कि जब यह दाना, यह जो जो आपका फफूंद रोग कारक जो है, इसका जो बीज है वह पौधे से चिपक जाता है, जैसे सट जाता है तो वह अपना आपस में वह अंकुरण हो जाता है, क्यों उससे कुछ संबंध है कि उसके साथ जैसे चिपकेगा वह अपना बीज जो है अंकुरण अंकुरित करके पौधे में प्रवेश कर जाता है, पौधे की पत्ती में। जब प्रवेश करता है तो वह अंदर में पौधों के आवरण में, जहाँ से पानी की सतह से चिपक गया हमारे आवरण पर, शीत पर, उसके बाद वह मल्टीप्लाई करता है, अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है, उसके बाद वो धब्बा का रूप में हमको उभर कर आता है। तो यह जो बीज है किसी एक पौधे में लगेगा, किसी एक धान के पौधे में, फिर दूसरे पौधे में कैसे कंटामिनेट होगा, कैसे, तो एक पत्ती के द्वारा जब वृद्धि हो गया, पत्ती में जब यह लक्षण आता है, दूसरे हमारे पौधे में जो पत्ती है उससे चिपका हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है, आपस में मिला हुआ रहता है, तो उस पत्ती में चला जाता है, उस पत्ती से उस पौधे में चला जाता है, फिर यह इसका वृद्धि जो होता है उसी पौधे से, आक्रांत पौधे जहाँ पर हम लगाए हैं, आक्रांत पौधे से अगल बगल फैलेगा। यह हवा द्वारा नहीं फैलता है, यह कंटेक्ट से फैलता, आपस में संपर्क से फैलता है। एक एक लक्षण यह है फैलने का, यह पूरे खेत में नहीं फैलेगा, जहाँ लगा है, जहाँ यह लक्षण दिखाई पड़ा उसी के आसपास यह दिखाई पड़ेगा। दूसरा बात क्या होता है कि हमारे किनारे जो घास है, हमारे आर जो बंद है, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, उस पर घास बहुत होते हैं, उस घास में भी ये पलते हैं, और वह घास आक्रांत होता है। घास हमारा जो है पौधे से सटा हुआ रहेगा तो वहाँ जल्दी जल्दी फैला जाता है, जिसको आर के किनारे फैलता है। उसमें भी एक देखते हैं, आर का जो पूर्वी आर है वहाँ पर कम दिखाई पड़ता है, जो पश्चिमी आर है उसके तरफ जो पौधे हैं उस पर ज़्यादा होता दिखाई पड़ता है यह रोग। क्यों ऐसा होता है कि 9 से 10 बजे तक पश्चिमी किनारे में हमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलता है, और पूर्वी किनारा जो होता है हमारे प्लॉट का, वहाँ धूप जल्दी उग जाता है, मॉइस्चर कम देर रहता है, इसलिए वहाँ कम दिखाई पड़ता है। जबकि हमारा पश्चिमी किनारा जो होता है, कोई भी बंड के किनारे जो पौधे हैं वहाँ पर यह रोग ज़्यादा दिखाई पड़ता है। यह रोग जो किनारे में दिखाई पड़ता है ड्यू टू घास, जैसे घास का अगर हम सफाई सुथरा करते रहें तो हमें यह रोग पश्चिमी किनारे की ओर नहीं बढ़ता है। और यह खेत के अगर 10, यह हमारा एक बीघा खेत है या 10 कट्ठा खेत है या 5 कट्ठा, जो भी हमारा खेत का क्षेत्र है, वहाँ यूनिफॉर्मली सब जगह नहीं दिखाई पड़ेगा, जहाँ तहाँ आपका पौधे से संसर्ग में जहाँ बीज लग गया इसका

0: आपके फफूंद का, वहीं पर यह रोग फैलता है। यह किसान भाई इस लक्षण यही है। अगर यह जब आप पहचानेंगे तो एक डंटल तोड़ लें बीच बीच से और उसके डंटल को आवरण पर देखें भूरा रंग का है कि नहीं।
1: अच्छा, तो ये बातें हो गई है कि यहाँ पर ये कैसे फैलता है ये रोग, और इसके बाद डॉक्टर साहब जब रोग फैल जाता है तो ज़रूरी होता है उसका उपचार करना, और कहीं ना कहीं ये देखा भी जा रहा है कि हमारे किसान भाइयों के लिए शीत ब्लाइट का उपचार करना या फिर इसे स्थायी रूप से इसे बंद करना या फिर इसे छुटकारा पाना एक चुनौती भरी जो समस्या है वो उभर कर आ चुकी है। तो इसलिए डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई इससे कैसे बचे और इस रोग का उपचार कैसे किया जाए।
0: किसान भाई, आप जानते हैं कि जब भी रोग लगता है तो हमें उपचार करना चाहिए या हमें उससे छुटकारा पाना चाहिए, तभी तो हम उत्पादन पूरा पूरा ले सकते हैं। तो होता क्या है कि हमारे किसान भाई उसको पहले तो अपने जब वह खाद बीज घास निकालने के बाद, जैसे 30 से 35 दिन में घास निकालते हैं हम लोग रोपाई के बाद, उसके बाद हमें 15 से 20 रोज जो है में खेत घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे डंटल पर जो आवरण जमीन जो पानी की सतह से जो हमारा डंटल है वहाँ उसको निचोड़ करके तोड़ करके देखिए कि उस पर धब्बा हुआ तो नहीं पड़ा है। अगर भूरे रंग का धब्बा आप देखते हैं और अधिक संख्या में देखते हैं तब खेत में हमें दवा छिड़कने की ज़रूरत है। अगर भूरा धब्बा नहीं तो हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि वह आप खेत जो है रोपनी से 60 दिन के बाद जाते हैं देखने के लिए, जब वह आक्रांत थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो जब किसान भाई यह बात देखते हैं पत्ती पर तो क्या कहते हैं कि हमें खेत में रोग लग गया, लगता है वही गलसा है। सही, गलसा तो है, अगर हम जैसे पत्ती पर जो लक्षण बताए भूरा रंग का चमकीला भड़कदार धब्बा दिखाई पत्ता पत्ती पर तो नीचे की ओर से होता है ना कि ऊपर की ओर से होता है। तो आपको झुक कर देखना पड़ेगा हमारे पत्ती में क्या क्या लक्षण आया है कि नहीं आया। तो उस अवस्था में अगर धब्बा हमें दिखाई पड़े तो किसान भाई दवाई का छिड़काव करेंगे। इसमें हमें दवाई का छिड़काव करने के जिस खेत में बार बार होता है, इसकी हम लोग ये भी कहते हैं जहाँ जिस क्षेत्र में बार बार हो, साल में हमेशा होता हो आता रहे यह रोग, तो आप पौधे की रोपाई जो है थोड़ा सा दूरी बढ़ाकर करें। जितना सघन करेंगे उतना रोग फैलेगा, उतना रोग ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम रोप की बढ़ा देंगे, दूरी बढ़ा देंगे एक पौधा से दूसरे पौधा के बीच में, तो हमें हवादार मिलेगा। जब हवादार मिलेगा तो वहाँ पर मॉइस्चर जो है वातावरण जो ये है वो पानी की मात्रा उस धान के आसपास कम होगा जहाँ पर वो लगा हुआ नीचे जमीन के सतह पर, तो वहाँ ह्यूमिडिटी कम हुआ तो वहाँ रोग नहीं होगा। जहाँ सघन रोपाई किए आपने तो वहाँ ह्यूमिडिटी जो पानी की मात्रा है वहाँ ज़्यादा देर तक टिका रहा तो वहाँ पर रोग फैलने की ज़्यादा संभावना होता है। इसलिए रोपाई उस खेत में थोड़ा दूरी दूरी करें जिससे कि लाइट रोशनी जल्दी जाए, और लाइन स्विंग करना जरूरी है। जैसे आप पूरा पश्चिम लाइन स्विंग किए तो आपको फायदा क्या है, धूप सभी पौधे में बराबर पड़ेगा और वहाँ पानी की मात्रा जल्दी से उड़ जाएगा, उस वजह पानी की मात्रा कम हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा, वाष्प वहाँ पर कम रहेगा तो रोग कम होगा। अगर रोग लग ही जाता है, लग गया है, तब उपचार करने के लिए हम लोगों को वहाँ पर दो दवाई बाजार में हम लोग ज़्यादा, ये दवाई एक है और उस बाज़ार में दो नाम से सीथमार आप लोग सुने होंगे। सीथ मतलब है सीथ ब्लाइट से नाम रख के रखा उन्होंने, सीथ मार बोलते हैं मारने वाला। तो इस सीथ मार जो दवाई है बहुत, यह केमिकल नाम अलग है, वैलिडामाइसिन कहते हैं हम लोग इसको, वैलिडामाइसिन। ये वैलिडामाइसिन जो केमिकल है इस वैलिडामाइसिन का उपयोग करना चाहिए बाजार में भिन्न भिन्न तरह का। पहले तो मैं जानता था दो ही दवाई, राजोसिन नाम करके एक दवाई आता था, इसी का नाम है बाजारू नाम राजोसिन है। तो कहने का मतलब ये तरह का वैलिडामाइसिन का उपयोग करना है। वैलिडामाइसिन का उपयोग करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें 2 ml दवा 1 लीटर में घोल करके उसी जगह छिड़कना है जहां हमें रोग दिखाई पड़ता है, और सभी जगह नहीं। अगर ये हवा वाली रहती, हवा द्वारा फैलता था, हम पूरे बोलते हैं पूरे प्लॉट में छिड़क दीजिए, पूरे खेत में छिड़किए, लेकिन यह छिड़काव इसलिए हम लोकलाइज करते हैं, उसी जगह करते हैं कि जहां उससे बढ़ेगा नहीं
1: जी।
0: हाँ, किसान भाई के साथ कंसेप्ट यह है कि कोई भी दवा को पूरे खेत में छिड़क देते हैं, तो हमको उसी जगह छिड़कना है दवाई, सभी जगह नहीं, जहाँ हो वहाँ छिड़केंगे तो वह बढ़ेगा नहीं।
1: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि जब आप रोपाई करते हैं तो समय समय पर आकर आप देखें कि कहीं धब्बे तो, यानी कि भूरे रंग के धब्बे तो नहीं

करें। इसके अलावा इन्होंने बताया कि आप अगर पौधों की रोपाई करते हैं तो थोड़ी दूरी बनाकर करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि पौधों को रोशनी मिल पाएगी। और इसके बाद डॉक्टर साहब ने शीत मार एक दवा बताई है, वो भी आप बाजार से लेकर जो फसलों है धान की फसलों पर दे सकते हैं। हाँ, वेलिडामाइसिन जिसे कहा भी जाता है, यानी कि शीत मार को वेलिडामाइसिन भी कहा जाता है। तो किसान भाइयों, आप सभी से आशा करते हैं कि आज जो भी सुझाव मिले हैं आपको डॉक्टर एपी भगत जी से, आप उसे अपनाएंगे और उसे अपनाकर अपने धान के फसलों को शीत ब्लाइट से बचा पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर से मुलाकात होगी किसान भाइयों आप सभी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। श्रोताओं, आप सभी को आरजी अनु का प्यार भरा नमस्कार। तो आइए, आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ खास बातें आप सभी के लिए उन्नत कृषि में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमेशा हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे साथ एक एक्सपर्ट, और आज फिर से हमारे एक खास विषय के लिए हमारे पास है एक खास एक्सपर्ट, और उनका नाम है डॉक्टर गिरीश चंद, और ये है एसोसिएट प्रोफेसर पौधा रोग विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद।
6: और जैसा कि हम अपने लिसनर्स को बता दें, हमारे श्रोताओं को बता दें कि आज का हमारा विषय है केला के प्रमुख रोग एवं उपचार। वैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार में केले बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन वहीं मेट्रो सिटीज़ की बात करें, महानगरों की बात करें, आप जाएंगे तब आपको केले का जो महत्व है वो समझ में आएगा कि वहाँ पर केले कितने महंगे मिलते हैं। क्योंकि केला अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फल है। हमारा सौभाग्य है कि हम बिहारी हैं और बिहार में बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी इसके लिए उपयुक्त जलवायु मिलती है और यहाँ उपजता है और हमारे किसान भाई इसे उपजाते हैं हमारे लिए। लेकिन जब हम इसकी खेती करते हैं, जब हम इसे अपने बागानों में लगाते हैं, तब जरूरी

0: होता है कि हम इसका रख रखाव करें, जो कई जो कीट पतंगे होते हैं वो इस पर नज़र टिकाए बैठे रहते हैं, और अगर हम इस समय में इनकी सुरक्षा का खास ख्याल ना रखें तो इन्हें कई रोगों से गुजरना पड़ता है, और इस वजह से हमारे जो केले के जो कई जो गाछ हैं, वृक्ष हैं, वो ख़राब हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को घाटा भी पड़ जाता है। तो आइए, सबसे पहले ज़रूरत होता है कि आप सभी को रोगों का पहचान होना, तो आज डॉक्टर साहब हमारे साथ इसीलिए यहाँ पर हैं, आप सभी को बताएंगे केले के प्रमुख रोगों के बारे में और साथ ही उसके इलाज के बारे में भी जानेंगे हम। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, यहाँ पर बहुत सारे रोग हैं जैसे कि पनामा मिल्ट, सिगाटोका, एंथ्रेक्नोज, बांचीटॉक और भी बहुत सारे जो रोग हैं वो केले के वृक्षों में लगते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर पनामा मिल्ट की बात करें तो ये कैसा रोग है और इसे कैसे उपचार हो सकता है, हमारे किसान भाई कैसे उपचार कर सकते हैं इसका?
1: किसान भाइयों, केला अपने बिहार का एक प्रमुख फल वाला पौधा होता है। इसके उत्पादन में हमारे बिहार का बहुत बड़ा योगदान है, और हमारा जो बिहार का एक तरह से कह सकते हैं कि जो आर्थिक कृषि की आर्थिक स्थिति है इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। और उत्पादन के साथ साथ हमें ये ध्यान देना होगा, जब हम बाग को लगाते हैं, बाग लगाने से या केले के पौधे लगाने से लेकर कटाई तक इसमें बहुत ढेर सारी क्रियाएं होती हैं, और ये लगभग 12 से लेकर 13 महीने तक का इसमें टाइम लग जाता है, तब जाकर इसमें कहीं हम फल को काट पाते हैं। तो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग एक साल पूरा लग जाता है। तो एक साल का ये पौधा होता है, और इसमें अगर समय समय पर हम ध्यान नहीं देते हैं और लगातार एक ही खेत में अगर हम किसी फसल को लेते हैं तो इसमें कई तरह से मिट्टी का, मृदा का क्षरण होता है, ह्रास होता है, और धीरे धीरे इसमें कुछ ऐसे जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं जो नुकसान हमारी फसलों को पहुँचाते हैं। तो इसमें ये पहचान करना बहुत ही आवश्यक होता है कि हमारा जो केला का फसल है इसमें कौन कौन से प्रमुख रोग हैं और इनका क्या पहचान है, इनका क्या लक्षण है और इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं। जब तक हम लक्षण को अच्छी तरह से नहीं पहचान पाएंगे तब तक उसका निदान या सही दवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो केला है, केला में कितने प्रकार के रोग लग जाते हैं। तो प्रमुख रूप से जो इसमें रोग लगता है उसमें उठा रोग लगता है, और उसके बाद दूसरा रोग लगता है वो सिगाटोका रोग लगता है या पत्रलांछन रोग कह सकते हैं। केला का एक तीसरा रोग है, उसे हम कह सकते हैं कि श्याम बर्ण रोग या एंथ्रेक्नोज रोग लग जाता है, और एक चौथा रोग होता है जिसे हम बंचीटाप या पौधा छोटा हो जाता है, ये विषाणुओं द्वारा होता है। तो इस तरह से जो हमने चार प्रमुख रूप के रोग बता रहे हैं इसको जान लेना है। पांचवा एक और रोग लगता है, वो होता है सूत्रकृमि या जड़ ग्रंथि रोग होता है, जो जड़ों में गांठें बन जाती हैं, पौधा खुराक लेना बंद कर देता है या खुराक ले भी लेता है तो जड़ में जो सूत्रकृमि होता है वो उसमें गांठ में जमा करते रहता है और पौधा धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और उत्पादक क्षमता घट जाता है। तो आइए सबसे पहले जो केला में प्रमुख रोग है वो है उकठा रोग, और उकठा रोग का पहचान करना बहुत आवश्यकता है। ऐसे भी आप यदि खेत में देखते हैं, और ये बहुत ही अच्छा समय है ये, जब रोग का लक्षण अपने कह सकते हैं कि एकदम चरम पे होता है, जो हमारा अक्टूबर का महीना होता है वो बहुत ही चरम पे होता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारा फसल ख़त्म हो जाता है और अगला फिर हम फसल लेने की तैयारी करने शुरू कर देते हैं। तो उकठा में दो तरह का उठा होता है, और एक तो होता है पनामा बिल्ट जिसे हम फ्यूजेरियल बिल्ट कहते हैं, ये फफूंद जनित रोग होता है, ये सबसे ज़्यादा आजकल हमारे बिहार में देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा रहा है, लगभग हमारे पूरे उत्पादन का 30 से लेकर 40% तक नुकसान पहुँचा रहा है, और बाकी सब और दूसरे रोग हैं वो भी नुकसान पहुँचाते हैं। दूसरा इसमें जो उकठा का ही रूप होता है वो जीवाणु उकठा होता है या बैक्टीरियल बिल्ट कहते हैं। अब इसमें देखना है कि लक्षण क्या है, यदि फफूंद जनित लक्षण आते हैं तो फफूंदनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे, यदि बैक्टीरिया जनित रोग दिखाई देता है लक्षण तो आप बैक्टीरिया नाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे, तभी केले के जो रोग लगते हैं उससे आप निदान पा सकते हैं। तो फफूंद जनित रोग में जो लक्षण होता है, शुरुआत इसका जब

0: पहला बारिश होता है जून के प्रथम सप्ताह में या जून के मध्य में, उसी समय इसका जो फफूद होता है उसके जो बीजाणु होते हैं, हम एक तरह से कह सकते हैं उसके जो अंडे होते हैं, उसी समय इसका जमाव शुरू हो जाता है। और ये इतना खतरनाक कह सकते हैं रोग होता है, इतना भयंकर रोग होता है कि इसके जो अंडे होते हैं यदि मिट्टी में रहता है तो वो 25 से लेकर 30 साल तक इसके अंडे जीवित रहते हैं। और यदि हम फसल का मतलब लेने के बाद खेती का उत्पादन करना केले का बंद कर देते हैं, दूसरी फसलों को अगर हम समावेश कर लेते हैं, फिर अगर हम 10 साल 20 साल 25 साल बाद भी यदि केले की खेती करेंगे फिर पुनः ही रोग जागृत हो जाता है, उग्र रूप में आ जाता है। तो ये फफूंद जनित रोग का लक्षण कैसा होगा? लक्षण इसका जैसे पहला बारिश होता है फफूंद इसका जागृत हो जाता है, बीजाणु जमने शुरू हो जाते हैं, इसका जो जड़ तंत्र होता है जड़ तंत्र में प्रवेश करता है और जड़ तंत्र प्रवेश करने में उसमें अपना संख्या बढ़ा लेता है और इसमें जो ऊंस बनता है घाव बनाता है और जड़ को खुराक लेने से रोकता है, इसका जो जाइलम होता है वो चोक कर जाता है, यानी जिससे हमारा पौधा खुराक लेता है, पानी लेता है, तत्व लेता है, न्यूट्रिएंट लेता है और पौधे में ले जाता, पत्ती तक पहुंचाता है, फिर फोटोसिंथेसिस करके नीचे तक इस तरह से हमारी जो क्रिया होता है पौधे का वो पूरा ब्लॉक कर देता है, चोक कर देता है। और जैसे ही चोक करता है उसके तुरंत बाद इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, इसमें जो पुरानी पत्तियां होती हैं, ओल्डर लीव्स होते हैं, उस पर पीले पीले कलर के धब्बे दिखाई देते हैं पत्तियों के किनारे से शुरू होते हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा पीला हो जाता है। और जब ये रोग उग्र रूप में आता है तो इसका जो तना होता है, इसके तने तो हम कह सकते हैं कि ये आभासी तना होता है, सीडो स्टेम होता है, और खानी सहित यानी पुष्पावस्था में है तो पुष्पावस्था में, या फल वाले अवस्था में तो फल अवस्था में, या ये नहीं भी हुआ है तब भी ये जैसे ही रोग लक्षण दिखाई देता है तो एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंतर पर ये जाकर गिर जाता है।
1: अच्छा,
0: तो पूरा पूरा हमारा जो उत्पादन होता है कह लीजिए खत्म हो जाता है, जिस पौधे में ये रोग लग गया उसका उत्पादन जीरो शून्य हो जाता है। तो इस तरह से इसका लक्षण होता है। इसका लक्षण पहचान करने के बाद आप कैसे इसका उपचार करेंगे, तो उपचार करने के लिए ये है कि आप इसमें जो फफूंद नाशक दवाएं हैं उसका आप शुरुआती अवस्था में जरूर ध्यान दें। जब इसका गड्ढा बनाते हैं तो गड्ढे में कार्बेंडाजिम या बविस्टीन कम से कम 10 ग्राम पर गड्ढा इस तरह से हम दे देंगे तो इसमें जो दूसरे हानिकारक फफूंद होते हैं खासतौर से फ्यूजेरियम, वो उसका संख्या खत्म हो जाएगा या मर जाएगा, तो इस तरह से पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। यदि किसान भाई ऐसा नहीं कर पाते हैं और शुरुआत में नहीं ध्यान देते हैं तो ये जो सकर्स ले आते हैं, इसका जो बच्चा ले आते हैं केले का, वो ध्यान देंगे कि वो किसी टिशू कल्चर प्रयोगशाला से ले आएं या जो हमारा सर्टिफाइड प्लांटिंग मटेरियल्स होता है, नर्सरी होता है, वहाँ से ले आएं, या दूसरे खेत से या अपने खेत से दूसरा नया इसका सकर्स लगाना चाहते हैं, नए खेत में या बगान नया तैयार करना चाहते हैं तो इसका सकर्स जो होता है उसको उपचार करके लगाएं। उपचार करने के लिए जो मैंने अभी पूर्व में दवा बताया कार्बेंडाजिम या बेविस्टीन, उसे आप 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना लीजिए, या ट्राइकोडर्मा आप ले सकते हैं, बायो एजेंट होता है, जैव जीवनाशी होता है जो फफूंद नाशक के तौर पे काम करता है, दूसरे फफूंद को खा जाता है, खासतौर से फ्यूजेरियम को खूब खाता है। तो इस तरह से हम बायो एजेंट में ट्राइकोडर्मा लेंगे तो ट्राइकोडर्मा का अगर लेते हैं तो 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाएंगे। इस तरह से आप चाहे फफूंद नाशक रसायन का प्रयोग कर रहे हैं कार्बेंडाजिम बविस्टीन का या टाइकोडर्मा का, घोल जब बनाएंगे तो आधे घंटे तक सकर्स को यानी केले के बच्चे को उसमें रखेंगे, फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद छायादार जगह में रखेंगे, घोल में रखकर फिर उसके बाद घोल से निकालेंगे और छायादार जगह में रख देंगे ताकि इसमें जितना मतलब पानी है एक्सेस ज़्यादा वो निथर जाए, निकल जाए, फिर उसके बाद आप देख लीजिए पानी निकल गया है तब जाकर रोपड़ी करने के लिए तैयार रहता है, तो गड्ढे में आप रोपाई करेंगे। तो इस तरह से पूरे जीवन भर ट्राइकोडर्मा इसके साथ रहता है और कभी इस तरह से जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है या जीवाणु होता है या फफूंद होता है या सूत्रकृमि होता है इसको कभी आने नहीं देता है, तो हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। आप अगर ये भी क्रिया नहीं कर पाए हैं और खड़ी फसल में आपको जुलाई में इसका लक्षण पूरा पौधे दिखाई देता है, पौधा पीला पीला हो जाता है, अगस्त में खानी सहित

गिर जाता, सितंबर में और भयंकर रूप हो जाता है, अक्टूबर में जाते जाते पूरा बागान खत्म कर देता है। तो आप शुरुआत में जब बारिश होता है जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के शुरुआत में, तो उसी समय बारिश के ठीक बाद आप एक बार कार्बेंडाजिम या बबिस्टिन का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ क्षेत्र में इसका खूब अच्छी तरह से भिगो दें। और ऐसा अगर नहीं है तो आप टाइकोडर्मा को भी आप ले लीजिए, 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ क्षेत्र में इसको भिगो दें। तो इस तरह से भिगोने की जो प्रक्रिया होता है वो 15 दिन के अंतर पर कम से कम 2 बार करते हैं। तो इस तरह से खड़ी फसल में भी हम जो रोग लग जाता है उसे रोक सकते हैं। और पनामा रोग, या इस तरह से कह सकते हैं कि जो पीलिया रोग है, यहाँ अपने क्षेत्र में जो लोकल क्षेत्र बिहार आजकल बहुत जोरों पे है कि हमारे केला के फसल में पीलिया रोग लग गया है। तो पीलिया रोग हो या अंगूठा रोग हो या पनामा रोग हो, सब एक ही तरह के हैं। तो ये फफूंद जनित रोग है जो फ्यूजियरी मार्क्सिसफोरम फार्मास्पिसिस क्यूबेंस नामक फफूंद से होता है। तो इसके रोकथाम के लिए भी मैंने आपको बताया, वो इस तरह से लक्षण दिखाई देता है तो आप रोकथाम इस तरह से करेंगे। दूसरा एक और इसी तरह का रोग होता है, वो जीवाणु से होता है, उसे हम बैक्टीरियल बिल्ट कहते हैं। तो बैक्टीरियल बिल्ट रोग के रोकथाम के पहले आप ये देख लीजिए कि इसका लक्षण किस तरह का है, बैक्टीरियल की तरह से है या फफूंद की तरह से। तो फफूंद को मैंने बताया, बैक्टीरियल का इसका थोड़ा अंतर है, इसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो किनारे वाला ना सूख कर बीच वाला सूखता है। इसका जो लक्षण, ये भी बारिश होने पर जब ज़्यादा गर्मी होता है और ज़्यादा उमस होता है और ज़्यादा नमी होता है वातावरण में, इस समय ये भी जो जीवाणु होता है वो भी उग्र फार्म में आ जाता है। तो जीवाणु आएगा तो ये भी साथ साथ में लक्षण दिखाई देता है पौधे के ऊपर। तो जैसे बताया आपको इसका लक्षण इस तरह दिखाई देता है, तो आप इसमें पुरानी पत्तियों पर ना ध्यान देकर नई पत्तियां जो आती है उस पर देखिए, सबसे पहले वही पीला होना शुरू हो जाता है। तो इसमें यह ध्यान देना है कि उसमें बहुत पौधे पर अंतर हम नहीं कर पाते हैं, तो उसको जहाँ से पौधा प्रभावित होता है, एक दो पौधे में अगर इस तरह से लक्षण दिखाई देता है तो जहाँ से जड़ और तने का लगाव होता है उसे हम कॉलर रीजन कहते हैं, उसे ले लीजिए और काट दीजिए। काटने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा गोल आकार छल्ला होता है, तो ये जो गोल आकार छल्ला होता है इसमें से बहुत बैक्टीरियल ऊजिंग होता है, जिसे हम कह सकते हैं हल्का पीले रंग का, पहले शुरुआत में तो सफ़ेद सफ़ेद रंग का ये दूध की तरह से पदार्थ लसलसा दिखाई देगा, फिर ये 2-3 घंटे के बाद काटने के बाद ये हल्का पीले पीले रंग में हो जाता है। ये सबसे अच्छा पहचान करने का तरीका है जो बैक्टीरियल विल्ट होता है। अगर ऐसा काट देते हैं, ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता है, यदि उसमें जो जहाँ से काटे हैं बीच वाला पोर्शन में इसलिए लसलसा पदार्थ या दूध की तरह पदार्थ नहीं निकल रहा है और वो सूखा है और इसका जो बीच वाला पोर्शन हल्का भूरे रंग का है, तो ये समझ जाइए कि ये फफूंद वाला रोग है जिसे हम पनामा बिल्ट कह रहे हैं। और यदि इसमें लसलसा पदार्थ निकलता है तो समझ जाइए कि जीवाणु है। और दूसरा एक और लक्षण हम जीवाणु का बता देते हैं कि जब काट देंगे तो वहाँ से बहुत तेज सड़ा हुआ, जिसे मछली होता है या अंडा होता है, इस तरह बदबू तीक्ष्ण गंध आता है, ये बैक्टीरियल बिल्ट जो होता है केला में, ये सबसे बड़ा दूसरा लक्षण होता है। तो इस तरह से लक्षण का अगर पहचान हो जाता है तो आप बैक्टीरियल नाशक दवाओं में आप स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लीजिए, इसके साथ थोड़ा कापर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिए, दोनों को मिक्स करके एक साथ 15 दिन के अंतर में 2 बार प्रयोग करते हैं, तो निश्चित है कि ये जो बैक्टीरियल बिल्ट की समस्या है वो नहीं होगा। एक और आपसे रोग की चर्चा हम करना चाहेंगे, वो है सीगा टोका। सीगा टोका ये किसी भी समय आ सकता है।

0: जनवरी फरवरी में खूब होता है।
1: अच्छा।
0: इस समय भी होता है लेकिन इसका उग्र रूप उसमें ज्यादा दिखाई देता है। तो ये किसी भी अवस्था में और किसी भी समय आ सकता है सीगाटों का। तो इसके जो लक्षण होते हैं पत्तियों के ऊपर गोल गोल आकार के पीले पीले शुरुआत में धब्बे बनते हैं, बाद में भूरे भूरे और काले काले रंग के हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर लक्षण बनते हैं तो पत्तियों के चारों तरफ भूरे भूरे काले काले रंग के धब्बे बनते हैं तो पत्र लांछन केला का रोग होता है जिसे हम सीगाटों का रोग कहते हैं। इसके रोकथाम के लिए डाइथेमम 45 नामक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिन के अंतर पे कम से कम 3 बार छिड़काव करेंगे और छिड़काव करते समय ये ध्यान देंगे कि जो केला का पत्ता होता है वो बहुत चिकना होता है। इसमें हम किसी स्टिकर का या जो डिटर्जेंट्स पाउडर होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो दवाएँ जो हमारी हैं केले के पत्ते के ऊपर चिपकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमको पौधे में जो रोग लगे हुए हैं सीगाटों का उससे बचाएंगे। लक्षण इसका हमने आपको बताया और किसान भाइयों एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि इसके जो पत्ती होता है पत्ती के एकदम किनारे नहीं, किनारे से थोड़ा ऊपर उठ के देखिए तो एकदम एक तार एक लाइन से कभी कभी इधर उधर मतलब छिटफुट इधर उधर आपको पत्तियों के ऊपर धब्बे शुरुआत में पीले रंग के रहेंगे बाद में वो काले भूरे और काले रंग बदल जाते हैं।
1: तो ये लक्षण थे
0: जी, इस तरह से लक्षण होता है।
1: तो ये जो सारे रोग हैं आपने उपचार के बारे में बताया तो सारे रोग जून से लेकर के अक्टूबर माह तक लगते हैं या फिर कोई
0: उकठा रोग है? उकठा रोग से जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है लेकिन ये जो आपको हम अभी बताए हैं ये सीगाटों का ये पौधे के छोटे अवस्था में वो जनवरी फरवरी में भी लग जाएगा और इस समय भी अक्टूबर नवंबर में भी लग जाएगा।
1: तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कार्बेंडाजिम आप अगर गड्ढे खोद कर लगा रहे हैं उसके पौधों को तो पहले कार्बेंडाजिम डाल दें और उसके बाद लगाएं। तो कुछ बातों का आप खास ध्यान रखेंगे तो आप इन अपने केले के वृक्षों को इन रोगों से बचा सकते हैं। तो बस इसका खास ख्याल रखें। वैसे डॉक्टर साहब ने आपको बड़े विस्तार में बताया और उपचार के बारे में भी बताया तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा जो एक वक्ता है वो कह सकता है। और डॉक्टर साहब यहाँ पर कुछ और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: इसमें अभी चर्चा जो इस तरह 2-3 रोग का हो गया, एक और है श्याम बर्ड रोग जो एंथ्रेक्नोज कहते हैं। हाँ। ज्यादातर ये वर्षा ऋतु में आता है, वर्षा ऋतु में जैसे आता है तो इसका जो बीजाणु होता है ज़्यादा फैलने लगता है। तो इसका जो लक्षण होता है पत्तियों के ऊपर, फलों के ऊपर, तने के ऊपर, इस तरह से जो ऊपर भाग होता है ये जो एरियल भाग होता है उसके ऊपर काले काले रंग का धब्बा बनाता है। तो इससे जो हमारा फल का गुणवत्ता खराब होता है, बाजार भाव कम जाता है या खराब कर देता है और धीरे धीरे फल को या तने को सड़ा भी देता है। अच्छा। और पत्तियों के ऊपर इसका जितना काला काला धब्बा हो जाता है क्योंकि खुराक लेना बंद कर देती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है और उत्पादन घट जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए आप कापर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्टीकर मिलाकर इस तरह से 10 से 12 दिन के अंतर पे कम से कम छिड़काव करेंगे तो जो श्याम बर्ड रोग है इससे भी केला के फसल को बचाया जा सकता है।
1: कॉपर ऑक्सीक्लोराइड
0: जी। एक और इसमें रोग लग जाता है वह है बंची टॉप। ये तो पहले बहुत लगता था लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों ने और किसान भाइयों के थोड़ा खेती करने का तरीके में नए तरीके से खेती कर रहे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं फसलों का तो इसमें ये रोग अब आता है लेकिन कम आता है। लेकिन फिर भी अगर ये रोग आ जाता है तो ध्यान देंगे शुरुआती अवस्था में ही इसका लक्षण दिखाई देता है। जैसे पौधा आप ले आए 2 महीने का 3 महीने का बच्चा है लगाते हैं, जब पौधा पकड़ लेता है तो इसका लक्षण शुरुआत में ही 3-4 महीने का सकर्ष होता है उसी के ऊपर ही इसका लक्षण दिखाई देता है। पौधा छोटा रह जाएगा और उसमें जो पत्तियां ढेर सारी निकलेंगी लेकिन छोटी छोटी रहेंगी और पौधे का विकास रुक जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं बंची टॉप रोग है केला का। अच्छा। ये विषाणु वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है और एक पौधे से दूसरे पौधे या एक खेत से दूसरे खेत में जो फैलाने का काम करता है। इसमें कुछ हमारे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होता है, वेक्टर होता है जिससे हम कहते हैं पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा होता है। ये कीड़ा एक खेत से दूसरे खेत या एक पौधे से दूसरे खेत में फैलाने काम करता है। तो यहाँ आवश्यकता है कि विषाणु नाशक दवा की जगह पे आप कीटनाशक दवाओं में इमिडा क्लोरोपीड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इस तरह से एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंतर पर छिड़काव 2 बार कर देंगे तो इस तरह से जो कीड़ा लगता है वो ख़त्म हो जाएगा तो जो वंचित आप रोग है अपने आप ख़त्म हो जाएगा।
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना केले के प्रमुख रोगों के बारे में और उसके उपचार के बारे में।

0: हमारे साथ यहाँ पर हैं डॉक्टर गिरीश चंद जी और इनसे विशेष बातें हो रही थी इस विषय पर और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है डॉक्टर साहब ने और ज़रूरत है कि आप इनकी बातों को समझें, इसे अपनाएं और जो भी अगर रोग हैं उनको पहचान कर उन्हें जो भी कीटनाशक दवा या फिर और भी जो दवाएं डॉक्टर साहब ने आप सभी को यहाँ पर आप सभी के सामने कहा प्रिस्क्राइब किया तो आप उसे लेकर छिड़काव कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आगे आपसे और मुलाकातें होंगी और हमारे किसान भाइयों से भी मेरी मुलाकातें होती रहेंगी उन्नत कृषि में। तो सुनते रहें 90.8 FM ग्रीन हमेशा और सुनते रहें उन्नत कृषि।
1: उन्नत कृषि

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की

योजना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3। और आपको बता दे, कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दे, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें, इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन

का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: ഉന്നത് കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जो सालों भर मिलता है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ज्यादातर लोगों का पसंदीदा भी होता है. शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्हें केला पसंद नहीं है. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं केले की वैज्ञानिक खेती के बारे में. किस प्रकार से केले की वैज्ञानिक खेती की जा सकती है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शशि प्रकाश. मैम, आप हैं फल विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद उमा.
0: तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार में केला की कौन सी प्रमुख किस्में हैं जो लगाई जाती है.
1: बिहार में केले की काफ़ी सारी किस्में लगाई जाती हैं. इसमें से कुछ पारंपरिक किस्में भी हैं और कुछ उन्नत किस्में भी हैं जो लगाई जाती हैं. पारंपरिक किस्मों में चिनिया, मालभोग, अल्पान, कोठिया, ये सारी किस्में हैं. और इसमें से जो चिनिया, मालभोग और अल्पान हैं, ये जनरली हम पकाकर खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और कोठिया और गोरैया, ये जो है कोठिया, मुठिया और गोरैया, ये तीन जो हमारी किस्में हैं, ये सब्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है, कच्चे खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है. इसके अलावा कुछ उन्नत किस्में हैं जो अभी किसान भाइयों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, वो है G9 वैरायटी या फिर ग्रैंड, जिसे ग्रैंड नैने बोलते हैं और G9 के नाम से वो ज़्यादा प्रसिद्ध है. बिहार में खासकर की नौगछिया और भागलपुर से के आसपास के जिलों में ये G9 वैरायटी आजकल किसान ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसका जो उपज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. और इसके अलावा जो लोकल वैरायटीज़ है, हमारी पारंपरिक वैरायटीज़ है, जैसे कि चिनिया, अल्पान और मालभोग, स्वाद की वजह से ये ज़्यादा लोकप्रिय हैं जो हमारी लोकल मार्केट्स हैं उसके लिए. तो किसान भाई अपने दोनों तरह की किस्में लगाते हैं.
0: जी मैम, और अब बात करते हैं भूमि की तैयारी कैसे की जा सकती है और किस प्रकार की मिट्टी उचित होती है केला के फसल के लिए.
1: तो केला जो है वो केला की जो मिट्टी की ज़रूरतें हैं बहुत खास नहीं है केला को, लेकिन एक समतल की मिट्टी चाहिए जो कि दोमट होनी चाहिए और उपजाऊ होनी चाहिए. और इस मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 तक हो तो बहुत अच्छा रहेगा. इसके अलावा बस ध्यान रखने की बात यह है कि जो मिट्टी है उसमें पानी रुके ना, निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और पर्याप्त नमी, लेकिन वो पर्याप्त नमी भी रहे. ऐसा ना हो कि ज़्यादा बलवी मिट्टी है जिसमें नमी ना रहे, या फिर ज़्यादा गीली मिट्टी हो जिसमें अधिक नमी रह जाए. मिट्टी सबसे अच्छी होगी अगर दोमट मिट्टी है और उपजाऊ है, जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो. ऐसी मिट्टी केले की खेती के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है. जब किसान भाई केले के बगान लगाना चाहें तो उसके पहले उसमें अच्छा होगा कि अगर कोई हरी खाद की वाली फसलें

0: जैसी सनई ढेंचा या लोबिया लगाकर उसे मिट्टी में मिला दें, तो इससे मिट्टी की जो मिट्टी की जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है वो अच्छा बढ़ जाएगा, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ जाएंगे। इसके बाद खेत की अच्छी तरह 3-4 बार जुताई कर लें, अप्रैल मई के महीने में उसे खेत को सूरज की धूप लगने दें ताकि जो भी कीटाणु हैं वो मर जाएं और जो मिट्टी है हमारी वो कीटाणु रहित हो जाए। इसके बाद केले के पौधे लगाने के पहले 60x60 सेंटीमीटर के गड्ढे खोद लें, जो कि 60 सेंटीमीटर, कम से कम 60 सेंटीमीटर गहरा हो। इन गड्ढों को खोदकर उसकी मिट्टी बाहर निकाल लें और फिर उसे 15-20 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। उस गड्ढे को खुली धूप में छोड़ने से जो भी अंदर के जो भी कीड़े हैं, मकौड़े हैं या फिर किसी तरह के कीटाणु हैं वो मर जाएंगे। इसके बाद जब केला का पौधा आप लगा रहे हों तो उस मिट्टी में आप 20 किलोग्राम कंपोस्ट, 1 किलोग्राम नीम की खली तथा 100 ग्राम डायमोनियम फॉस्फेट डाल दें। इसके अलावा 20 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाकर उस गड्ढे को आप भर दें और जो सकर्स लगाएं वो गड्ढे के बीचों बीच लगाएं।
1: मैम, अब आप हमें ये बताइए कि पौध प्रवर्धन क्या होता है, साथ ही पौधा लगाने का समय, उचित समय और रोपण की उचित दूरी क्या होनी चाहिए।
0: केले का पौध प्रवर्धन हम मेनली सकर्स के थ्रू करते हैं। सकर्स कहें तो जो आप केले के पौधे लगाते हैं उसके साइड से जो नए पौधे होते हैं उसे ही हम सकर्स कहते हैं। और ये सकर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वाटर सकर्स और दूसरे होते हैं स्वॉर्ड सकर्स। तो जो हमारा केला को हम जब पौध प्रवर्धन की बात करते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर स्वॉर्ड सकर्स या तलवारनुमा सकर्स को इस्तेमाल, जिसे हम तलवारनुमा सकर्स बोलते हैं हिंदी में, उसे हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो ये स्वॉर्ड सकर्स होते हैं ये ज़्यादातर जो मदर प्लांट होती है उसके पास होते हैं, ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं और इसमें जो फल लगते हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और बात अब आती है कि हम कैसे पहचान करेंगे कि वो स्वॉर्ड सकर है या वाटर सकर है। तो आप देखेंगे कि जो केले के साइड से जो सकर्स निकलते हैं उसमें कुछ सकर्स होते हैं जिसकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और कुछ होते हैं जिसकी पत्तियाँ नुकीली होती है, पतली होती है और नुकीली होती है। तो जो नुकीली पत्तियां वाले सकर्स होते हैं हमें वही सकर्स को लेना चाहिए पौध प्रवर्धन के लिए। इसके अलावा जब हमने सकर्स ले लिया है तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम ये सकर्स लाएं तो किसी ऐसे खेत से लाएं जहां पे पहले से कोई किसी तरह की बीमारी ना हो, जिस खेत में साफ सुथरा खेत हो और वहाँ जो केले लगे हुए हैं उसमें किसी भी तरह की बीमारी ना हो। अगर किसी तरह की बीमारी है तो वहाँ उस खेत से नए सकर्स लेने से किसान भाइयों को बचना चाहिए। अब इन सकर्स को लाते वक्त आप ये भी ध्यान रखें कि सकर्स आपके हेल्दी सकर्स हो, ऐसा ना हो कि ज़्यादा छोटे सकर्स आप ले आए, कम से कम वो सकर्स 1.5 से 2 किलो के होने चाहिए। इसके अलावा जब आप सकर्स को आप लगाते हैं तो उसे गड्ढे में बहुत ज़्यादा अंदर भी ना डालें। अभी जब पौध प्रवर्धन की बात करते हैं तो सकर्स के अलावा हम टिश्यू कल्चर के पौधे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बिहार सरकार के द्वारा G9 वैरायटी के जो टिश्यू कल्चर के पौधे हैं वो भी सब्सिडाइज रेट पे किसानों को दिए जाते हैं। तो जो ये टिश्यू कल्चर के पौधे होते हैं वो पौधे अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो कोशिश करें कि टिश्यू कल्चर के पौधों से ही पौध प्रवर्धन करें, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उसमें किसी भी तरह की रोग व्याधि नहीं होती है और वो उसका जो उपज होता है ये देखा गया है कि नॉर्मल जब हम वाटर स्वॉर्ड सकर्स या नॉर्मल खेत के सकर्स से जब हम ग्रो करते हैं और जब हम टिश्यू कल्चर के पौधे से ग्रो करते हैं तो देखा गया है कि जो टिश्यू कल्चर वाले पौधे होते हैं उनका उपज ज़्यादा होता है। तो अगर आपके इलाके में टिश्यू कल्चर वाले पौधे मिल रहे हैं तो कृपया आप उसी को पहले लगाएं। फिर ये जो सकर्स हम लगाते हैं, ये केले को हम सालों भर लगा सकते हैं, लेकिन हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि वो जून जुलाई या अगस्त के महीने में लगाएं तो उसमें सिंचाई की प्रबंधन ज़्यादा अच्छे से हो सकती है, क्योंकि ये बरसात का मौसम होता है तो इस वक्त किसान ज़्यादा अच्छे से वो पौधे लगने की जो संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और सकर्स जल्दी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद इन पौधों को जो लगाना है कितनी दूरी पे लगाना है, तो दूरी की बात करें तो अगर किसी बौनी किस्म को लगा रहे हैं तो आप 1.8 बाय 1.8 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। और अगर बहुत लंबी किस्में हैं जैसे मालभोग हैं,

0: चिन्नियाँ हैं, ये जो लंबी किस्में हैं इनको अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये 2 से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा सकते हैं, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर या 2.5 बाय 2.5 सेंटीमीटर पर भी लगा सकते हैं।
1: जी मैम, अब आप हमें ये बताइए कि सिंचाई के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखें, साथ ही उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए।
0: केले के पौधों को उनके पूरे जीवन चक्र में लगभग 900 से 1200 मिलीमीटर पानी की ज़रूरत होती है, और यह पानी की ज़रूरत या तो बारिश से हो जाए या फिर आर्टिफिशियली इरिगेशन देके सिंचाई करके दी जाए, दोनों से दिए जा सकते हैं। और इसमें हर चरण, विकास के हर चरण में पानी की ज़रूरत होती है। ये केला सूखा ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए गर्मियों के मौसम में 3 से 4 दिन के अंतराल पे तथा ठंडी के मौसम पे हर 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि पैदावार ज़्यादा अच्छे हों। इसके अलावा सिंचाई प्रबंधन में एक और चीज़ की ध्यान रखना बहुत ज़रूरत है कि जब हम सिंचाई करें तो या तो हम ड्रिप इरिगेशन लगा दें जिससे कि जितनी ज़रूरत है हर पौधे को उतना ही पानी दिया जाए, या अगर फ्लडिंग या चैनल इरिगेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, वो पानी पानी केले के पौधों के पास ज़्यादा दिन तक रुका ना रहना चाहिए। ये पौधों को अगर पानी रुका रह जाएगा तो पौधों के विकास में रुकावट कर सकता है। उसके बाद बात आती है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन केले में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केला पोटेशियम का एक हैवी फीडर है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम चाहिए। अगर बात करें तो एक केले के पौधे को उसके पूरे जीवन चक्र में 300 ग्राम नाइट्रोजन, 45 से 50 ग्राम फॉस्फोरस और 400 ग्राम पोटेशियम की ज़रूरत होती है। इसमें से जो खाद है और पौधे लगाने के समय ही हम खाद 20 किलोग्राम खाद और 1 किलोग्राम नीम की खली डाल सकते हैं, और साथ ही जो फास्फोरस है वो भी हम जब हम पौधे लगा रहे होते हैं उसी वक्त डाल दें। उसके अलावा जो नाइट्रोजन और पोटैश है ये आप 5 विभाजित खुराक में डालें, जैसे कि अगर आपने पहले लगाने के पहले महीने में नाइट्रोजन डाला है, फिर आप 3रे महीने में डालें, 5वें महीने में डालें, फिर 7वें महीने में डालें। इसी तरह से पोटेशियम का भी है कि अगर आपको 400 ग्राम पोटेशियम डालना है तो आप उसे 5 खुराकों में विभाजित करें, और पहले महीने, 3रे महीने, 5वें महीने, 7वें महीने और आखिरी खुराक जो फूल निकलते हैं उस वक्त आप डालें। इस तरीके से खाद एवं उर्वरक प्रबंधन करेंगे तो इससे आपके जो केले हैं उसकी वो फली बहुत अच्छी और भरी हुई होंगी और आपका जो उपज है वो ज़्यादा अच्छा आएगा।
1: और मैम, अब हमारे किसान भाई बहनों को आप ये बताइए कि केले की फसल में उसके तुड़ाई तक क्या क्या ऐसे विशेष देखभाल करने की ज़रूरत होती है।
0: तो केले में काफ़ी सारे कार्य होते हैं जो बुआई से लेके फसल कटने तक हमें करना होता है। उसमें से सबसे पहले आती है डीलीफिंग, यानी कि पत्तियों को हटाना। समय केले के पौधे से अतिरिक्त पत्तियों को समय समय पर हटाना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि केले के जो पौधे होते हैं उसके जो पुराने पत्तियां होती है वो सूख जाते हैं या गिर जाते हैं, तो आप उन्हें समय समय पर हटा कर खेत से बाहर कर दें, ताकि वो क्या होता है कि जो ये सूखी हुई पत्तियां होती है इसमें कीड़े मकौड़ों का घर हो जाते हैं। तो अगर वही सूखी पत्तियां वहीं गिरी रहेंगी तो उसमें कीड़े ज़्यादा अच्छे से पनप सकते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप केले के पत्ते हटा, जो भी सूखे हुए पत्ते हैं आप उन्हें हटाकर बाहर निकाल दें। दूसरा आता है वीडिंग, खरपतवार निराई गुराई। केले के जो बगान होते हैं उसमें निराई गुराई करना एक बहुत बहुत आवश्यक कार्य है, क्योंकि क्या होता है कि जो भी खरपतवार होते हैं उसमें भी जो कीड़े मकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाते हैं, उनको एक घर मिल जाता है, और केले में जो कीड़े मकोड़े हैं वो बीमारियों को फैलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसीलिए केले के खेत को आप जितने साफ तरीके से साफ सुथरा रख सके उतना अच्छा होगा केले के अच्छे पैदावार के लिए। उसके बाद आता है डीनेवलिंग। डीनेवलिंग होता है कि जो नर पुष्प होते हैं, आप देखेंगे जब एक गौंद में से सारे फल निकल जाते हैं उसके बाद लास्ट आखिर में एक फूल बचा रहता है, कली बची रह जाती है।

0: तो उसे भी हमें हटा देना चाहिए, ताकि जितनी भी एनर्जी है या जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो केला वो फल में दे सके और फल ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो सके। इसके बाद आता है फूल हटाना। ये आप अगर छोटी बौनी किस्म में है और फूल तक अगर आपके हाथ पहुंच रहे हैं, तो आप जो सूखे हुए फूल हैं, जो केले के फली लग गई है उसके नीचे जो सूखी फूले फूल है वो भी आप हटा सकते हैं। उसके बाद आता है गुच्छों को ढकना या बंच कवरिंग, जिसे बंच कवरिंग भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें क्या होता है कि जो जब घौन बाहर निकल रहा होता है उस वक्त ही हमें गुच्छों को, जो गुच्छे बाहर आ जाते हैं पेड़ से, तो हमें उसे ढकना चाहिए। वो ढकने के लिए या तो आप पीपी बैग्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसे जनरली हम पीपी बैग से, या फिर छिद्र युक्त पॉलिथिन या फिर नॉन वुवेन बैग से ढक देते हैं, ताकि इससे क्या होता है कि जो जो फल हैं उसमें एक तो डायरेक्ट सन धूप नहीं लगती है, और उससे टेम्परेचर, उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो स्केरिंग बीटल होता है, जो आप देखे होंगे कि केले के फल पे धब्बे हो जाते हैं, वो स्केरिंग बीटल के वजह से होती है। और जब अगर हम बंच कवरिंग कर दें तो ये जो स्केरिंग बीटल से नुकसान होता है, जो केलों पे धब्बे होते हैं, उससे भी बचा जा सकता है। कि बंच कवरिंग करने से जो किसान भाई कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, उसके इस्तेमाल की ज़रूरत भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो स्केरिंग बीटल होते हैं उसी की रोकथाम के लिए किसान भाई कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। बट इस स्केरिंग बीटल को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप उस बंच को ढक दें। जब बंच निकल रहा है उसी वक्त स्टार्टिंग के टाइम पे अगर आप उसे ढक देंगे तो वो स्केरिंग बीटल उसे नुकसान ही नहीं कर पाएगा, तो फिर आपको कीटनाशक देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद दूसरा आता है डीसकरिंग, या फिर जो जो सकर्स होते हैं। आप देखेंगे कि केले के जो पौधे होते हैं उसके चारों तरफ छोटे छोटे और नए पौधे आते रहते हैं, तो आपको किसान भाइयों को ये छोटे छोटे जो सकर्स निकलते रहते हैं उसे समय समय पर हटा देना चाहिए। क्योंकि ये सकर्स क्या होते हैं कि अगर आप इसे भी साथ साथ में ग्रो करने देंगे तो ये सकर्स भी मिट्टी से वो खाद लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे जो आपने मेन पौधे के लिए दिया था। तो इसलिए कोशिश करें कि सारे सकर्स को आप हटा दें, और एक बार जब फूल आ जाए, फल आने लगे, तब रेटूनिंग के लिए आप एक सकर को रखें, उसे बढ़ने दें। जब फूल आके फल आ जाए उसके बाद आप एक सकर को मेंटेन करके रख सकते हैं, जो आप अगले साल जिससे आप अगले साल फसल लेने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं आगे बताना भूल गई थी कि अगर आप केले की खेती करते हैं तो 3 बार से ज़्यादा एक ही सकर से आप ग्रो नहीं करेंगे। मतलब 3 रेटूनिंग के बाद आप फसल चक्र अपनाएं और उस खेत को पूरा खाली करके उसमें कुछ और फसल लगा दें, चाहे आप मक्का लगा दें या फिर धान लगा दें, गेहूं लगा दें, कुछ भी लगा दें, और उसके बाद 1 साल का गैप छोड़ें, उसके बाद ही दूसरा फसल लगाएं उसमें। फिर आता है एक प्रॉपिंग, यानी कि सहारा देना। जब केले के घौन निकल जाते हैं और फलियां बड़ी होने लगती हैं तो केले के पेड़ फलों के भार से झुक जाते हैं, तो इस वक्त ज़रूरी है कि केले के पौधे को सहारा दिया जाए। तो अक्सर हम क्या करते हैं, बांस से ही हम केले के पौधे को सहारा दे देते हैं, और इससे क्या होता है कि फल पेड़ गिरते नहीं, झुकते नहीं हैं और ना गिरते हैं। बहुत बार संभावना होती है कि जो फल है वो ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो पौधे झुक जाते हैं और झुककर गिर जाते हैं, तो इससे फलों को नुकसान हो सकता है। इसलिए जब फल आ जाए, पूरा गोंद बाहर आ जाए और सारे फल निकल जाए, तो बांस की सहायता से पौधों को आप सहारा दे दें।
1: मैम, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि तुड़ाई किस प्रकार से करनी चाहिए और उस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
0: तो जब केले की तुराई की बात होती है तो सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो तुराई करें वो जब केले परिपक्व हो जाए उसके बाद ही करें। बहुत बार किसान क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर हम दूर कहीं किसी दूर बाज़ार में हमें केले बेचने हैं तो वो अपरिपक्व स्टेज पे ही केला को तोड़ लेते हैं या हार्वेस्ट कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आप परिपक्वता के पहले उसे तोड़ेंगे तो वो इथिलीन देने से वो पक तो जाएगा या फिर रखे भी वो पक जाएगा, लेकिन जो उसका स्वाद है वो

0: खराब हो जाएगा, जो अंदर की जो फली है वो उसका जो गूदा है उसमें ना वो स्वाद आएगा ना ही वो उतना भरेगा। तो अभी आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप इंतज़ार करें कि जब वो केला परिपक्व हो जाए तभी तोड़ें। अब बात आती है कि आप कैसे जानेंगे कि ये केला परिपक्व हो गया है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप केले का एक एक जो फली है उसे देखें। तो जब कच्चा रहता है तो आप देखेंगे वो उसके चारों तरफ किनारे नुकीले होते हैं, मतलब किनारे गोल नहीं होते हैं। तो जब केले परिपक्व हो जाते हैं तो उसके किनारे गोल हो जाते हैं, केला पूरा ही गोल हो जाता है। अगर केले गोल हो चुके हैं तो यानी कि वो परिपक्व हो चुके हैं, वो केले आपको दिखेंगे वो गहरे हरे रंग से वो हल्के हरे रंग की तरफ उसका रंग छिलके का रंग बदलने लगता है। तथा अगर कुछ केले गोंद में कुछ केले पीले पड़ने लगते हैं तो समझना चाहिए कि अब ये केले परिपक्व हो चुके हैं और हम इसकी तुराई कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकांश किस्मों में 90 से एक फूल निकलने के 90 से 100 दिन के 120 दिन तक में केला परिपक्व हो जाता है और आप इसकी तुराई कर सकते हैं।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाई बहनों, जिस प्रकार से मैम ने बताया आप उस प्रकार से केले की खेती कर सकते हैं, और जिन भी बातों का ध्यान रखने की बात मैम ने कही उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके केले के जो फसल होंगे वो बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छे उत्पादन का आप लाभ उठाएंगे। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही आप अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
6: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों जो लेडीज होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उन पे सामाजिक पारिवारिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है और जब महिलाएं कामकाजी हो या फिर घरेलू हों उन पर एक अलग तरह का दबाव आज भी महसूस वो करती होंगी। कई बार महिलाओं पर ये दबाव होता है कि महिलाओं को सहनशील दिखना है, कई बार परफेक्ट दिखने का दबाव, कई बार करियर में अच्छा करने का दबाव, कई बार करियर के साथ घर को संभालने का दबाव, अलग अलग तरह के दबाव होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही जिंदगी में ऐसे प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, पुरुषों को भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, पर कई बार महिलाएं अकेली पड़ जाती हैं क्योंकि अगर वो किसी को बताती भी हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, करियर और घर साथ में नहीं संभल रहा या फिर बच्चों से ऊब गई है, तो फटाक से उसे ये सवाल कर लिया जाता है कि कोई महिला होकर बच्चे से कैसे ऊब सकती है, करियर के साथ तो घर संभालना ही पड़ेगा, घर संभालने का काम तो महिलाओं का ही है ना। मतलब इतनी सारी बातें कह दी जाती है कि एक वक्त आते आते महिला ये समझना शुरू कर देती है कि उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा ख़राब लग रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। करियर, रिश्ता, घर, सोसाइटी, इन सब की उम्मीदों के बीच महिलाएं अपनी इमोशंस को एडजस्टमेंट समझकर दबा लेती है और यही वजह होती है कि मेंटल हेल्थ से जुड़े शुरुआती लक्षण वो टाइम पर नहीं पहचान पाती और प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत गहरी होती जाती है। अगर आप में भी ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो बाद में जाकर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आपको लगातार थकान लग रहा है, मोटिवेशन की कमी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद आप थकी थकी सी लगती हैं, छोटे छोटे काम भी आपको भारी लगने लगे हैं, जिन काम को आप बहुत पहले आराम से निपटा लिया करती थी, जो चीज़ें आपको पहले बहुत खुशी देती थी, अब वो करने की एनर्जी ही नहीं बची है, वो करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपको पहले शॉपिंग करना पसंद था, फिल्में देखना पसंद था, खाना बनाना पसंद था, पर अब वो चीज़ें करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपके अंदर उन चीज़ों को करने के लिए एनर्जी नहीं बची है, उनमें अब दिलचस्पी ही नहीं रही है। तो ये सिर्फ शारीरिक थकान की वजह से नहीं हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि आप मेंटली परेशान हो, आप मेंटली थक गई हो। ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी की शुरुआती निशानी भी हो सकती है, जिसे अक्सर महिलाएं कोई रूटीन स्ट्रेस कहकर टाल देती हैं कि चलो इतने काम के बाद ये तो थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेस है ही, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें लगातार हो रही है तो फिर आप हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर परेशान हों। अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बात बात पर रो देती हैं या बिना किसी वजह के आप उदासी महसूस कर रही हैं या फिर आपको अचानक गुस्सा आ रहा है, तो आपके आसपास बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी इन अचानक बदले हुए मूड को समझेंगे, लेकिन आपको आपके पास होना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा। जब हमारे शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और साथ में लगातार स्ट्रेस भी होता है, तो ये दोनों मिलकर बहुत बुरी तरीके से मेंटल बैलेंस को बिगाड़ सकती है, और जब ये बदलाव लंबे समय तक बने रहते हैं तो इन्हें इग्नोर करना नुकसानदेह हो सकता है। मान लीजिए कि आप छोटी छोटी बात पर आजकल गुस्सा करने लगी हैं और इस बात से आप खुद भी परेशान होंगे कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, आप छोटी छोटी बात पर इमोशनल होकर रोने लग गई हैं, या फिर बिना मतलब के बहुत छोटी सी बात है या फिर कोई बात है ही नहीं फिर भी आपको बहुत उदासी हो रही है, तो सिर्फ ये इमोशनल वीकनेस नहीं हो सकती है, ये हो सकता है कि आप मेंटली भी थोड़ी परेशान हो या फिर ज़्यादा परेशान हो। और कई बार ये भी देखा जाता है कि नींद और भूख के पैटर्न में भी बदलाव आता है। आप पहले आराम से आपका टाइम फिक्स था सोने का, आपको नींद भी अच्छी आ जाती थी, लेकिन अब आपको अगर रात में नींद नहीं आ रही है या फिर आपको बार बार जगना पड़ रहा है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा भी आप सो रहे हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि दिमाग आपका ओवरलोड हो चुका है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भर गई है और आपका दिमाग थक चुका है। इसी तरीके से अगर आप कम खा रही हैं या फिर अचानक आपके खाने के पैटर्न में बदलाव आया है, आप बहुत ज़्यादा खाने लग गई हैं, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। नींद, खाना, अगर इन दोनों ही पैटर्न में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं या तो दोनों ही अगर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से गिरा है या फिर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से बहुत बढ़ गया है, तो ये खतरनाक हो सकता है। और कई बार महिलाएं तो अपनी स्थिति के लिए या दूसरों की स्थिति के लिए भी खुद को ब्लेम देना शुरू कर देती हैं और ऐसे में उनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। जब महिलाएं ना हर

छोटी छोटी बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगती है और कहीं ना कहीं ये शुरुआत उनके घर वाले करते हैं कि उन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना। और एक वक्त पे महिलाएं भी ये मान लेती हैं कि अगर उनके आसपास कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है और वो अपने हर फैसले पर शक करना शुरू कर देती है कि कहीं मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, मेरे उस गलत फैसले की वजह से आज ये तो मुझे नहीं झेलना पड़ रहा, या फिर मेरे गलत फैसले की वजह से मेरे परिवार को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी कितनी ही सारी बातें होती हैं जब महिलाएं खुद पे ब्लेम डालने लगती है और ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है। तो ये हो सकता है कि आप लो सेल्फ स्टीम से गुजर रही हो, आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम का ये संकेत हो सकता है। और अक्सर ना महिलाओं के ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो परफेक्ट बने और ये उम्मीद जो की जाती है महिलाओं से, ये महिलाओं को और भी ज्यादा परेशान करती है। कई बार तो महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि वो बिल्कुल अकेली हैं। और कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि जो पहले बहुत फ्रेंडली थी, या फिर बहुत फ्रेंडली नहीं पर ठीक ठाक थी सामाजिक तौर पे, लेकिन वो अचानक धीरे धीरे लोगों से कटने लगी है, बातचीत करने से बचने लगी है और अपने मन की बात उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया है, तो इसे क्वाइट नेचर समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो अब थोड़ा शांति पसंद कर रही है। अगर वो लगातार ऐसा कर रही है तो हो सकता है कि वो अपने अंदर चल रहे मेंटल थकान को और अकेलेपन का संकेत दे रही है। हो सकता है कि वो अपने अंदर ही इतनी सारी बातों से परेशान हो गई है कि वो बात बाहर निकाल ही नहीं पा रही, या फिर उन्हें लगने लग गया है कि किसी से बात करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन फायदा हो सकता है, और अगर आपने इन सारे संकेतों को इग्नोर किया तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएं। कई बार तो आप ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं, चीजें रखकर भूल जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को भूलते हैं, किसी चीज पर आप फोकस करना चाह रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा है, जबकि आप हमेशा से ऐसी नहीं थी। अचानक या फिर धीरे धीरे आप में ये बदलाव अगर दिखने लगे हैं तो जरूरी है कि आप टाइम पर मदद लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ना अचानक नहीं होती। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे होती हैं। और ये सारे संकेत उनके शुरुआती संकेत हैं, और अगर आप इन संकेतों को पहचान कर टाइम पर सपोर्ट लेते हैं, फिर चाहे वो दोस्त से बात करना हो, काउंसलिंग करना हो, या फिर ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेना भी हो, तो आप इन सारे संकेतों को बड़ी परेशानी में बदलने से रोक सकते हैं। तो इन संकेतों को अगर आप पहचानती हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई भी परेशानी समझ आ रही है, खुद के अंदर कोई भी समस्या महसूस हो रही है, तो सबसे पहले खुद को समय देना शुरू करें। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ना काम के प्रेशर से खुद को थोड़ा दूर रखना चाहिए, और खुद को समय देने से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो तेजी से सुधरने लगता है। खुद को समय देना यानी कि आपको जो पसंद है ना वो कीजिए, नहीं अगर कोई काम समझ आ रहा है, क्योंकि जब हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं तो हमारी पसंद के काम भी हमें करने की इच्छा नहीं होती है। तो बस आप खुद के साथ थोड़ी देर बैठ जाइए खुली हवा में, नेचर के साथ, फिर देखिए धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव खुद ही नजर आने लगेंगे। इसके साथ ही एक सही रूटीन फॉलो नहीं करने की वजह से भी महिलाओं में या फिर किसी में भी ऐसी परेशानी देखी जा सकती है। तो जरूरी है कि आप एक सही रूटीन फॉलो करें। आप कोशिश करें कि हर काम का एक समय फिक्स कर दें, उसी समय पर करें, और जब आप अपने डेली लाइफ में भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगती हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करने लगता है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है और उससे कम परेशानी होती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें, जैसे ही आप एक सही रूटीन फॉलो करने लगेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल में अपनी लाइफ में कुछ हेल्दी एक्टिविटी जैसे कि योगा शामिल करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज को शामिल करें, और साथ ही सुबह या शाम के समय जरूर थोड़ा सा समय निकालें जिसमें आप कोशिश करें कि आप ना पैदल चलें। इससे बहुत फायदा होता है, और सुबह और शाम के समय जब आप थोड़ा पैदल चलते हैं तो इस दौरान आप खुद के साथ भी थोड़ा वक्त बिताते हैं, और इस वक्त ये ना करें कि आप फोन चला रही हैं या फिर कुछ और, नहीं, बस खुद के साथ वक्त बिताना है, खुद से बातें करनी है। पर्याप्त नींद तो बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, तो कोशिश करें कि आप सही समय पर सोने जाएं, और नहीं भी नींद आ रही है तो फ़ोन यूज़ नहीं करना है, किसी से बातें नहीं करनी है, बस सोने की कोशिश करनी है। कुछ दिनों में नींद आने लगेगी, और दोस्तों से और परिवार से खुलकर बात करें। कोई तो होगा आपके परिवार में जो आपको समझता होगा, आपके दोस्त होंगे, आपकी बहन, माँ, या फिर कोई भी, आपका पति, उनसे बात करें, खुलकर बात करें, और ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी बिल्कुल नहीं घबराएं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि पर्याप्त नींद लेना

बहुत ज़रूरी है। और कई बार नींद आने में अगर परेशानी होती है तो अगर आपको दूध सूट करता है तो रात में गुनगुना दूध पीकर सोएं, और अगर उसमें हो सके तो कच्ची हल्दी मिला दें, आप थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला दें। इससे क्या होता है कि नींद अच्छी आने में बड़ी मदद मिलती है। बस करना क्या है, शाम में या रात में आपको दूध में ये दोनों चीज़ें डालकर उबाल लेना है, और आप हल्की इलायची भी मिला सकते हैं। 3 से 5 मिनट आप उबालेंगे तो जो दूध है वो तैयार हो जाएगा, और इसे गुनगुना या बिल्कुल ठंडा आप पी सकते हैं। तो ये भी आपको नींद आने में काफी मदद करता है, तो ये चीजें भी आप अपना सकते हैं। और अगर इन चीजों से भी आपको आराम नहीं हो रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना, आप नींद, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप में जो लक्षण थे वो अब भी जस के तस बने हुए हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए। क्योंकि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा रहते हैं तो डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके अंदर आत्महत्या या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के कोई भी विचार आए तो डॉक्टर से तो मिलिए ही। और अगर आपके लक्षण इतने ज्यादा बढ़ गए कि आप रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उनमें भी आपको परेशानी हो रही है, तो भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। पैनिक अटैक भी कई बार आ जाता है और बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में आपको मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। तो ध्यान रखें कि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्तों से ज़्यादा बना रहे, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुँचाने के विचार आए, रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगे, या फिर पैनिक अटैक या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगे, तो मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट से मिलना जरूरी होता है, या फिर आप काउंसलर से भी मिल सकती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखें, खुद के दिमाग को शांत रखें और बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। खुद से प्यार करें, स्वस्थ रहें, और तभी आप अपने अपनों को भी प्यार दे पाएंगे, उन्हें स्वस्थ रख पाएंगे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल, और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप बने रहें हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ। लेडीज फर्स्ट।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a

0: vaccine. Hear the speed. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
1: So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं। उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं। तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
7: तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ। सर, आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं?
8: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से चार कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है, जैसे माहू, जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड उसको, वो एक लीफ ऑफर है, होते हैं, और एक है फली छेदक जिसको पॉड बोरर कहते हैं। तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं। सफेद मक्खी भी छोटे होते हैं, लेकिन ये सफेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं। और जैसीड जो लीफ ऑपर होते हैं, इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है, तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुंचाता है। और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक जो है, इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं।
7: जी, तो सर, ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
8: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी, ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में, या तो जहां से वो रस चूसते हैं, जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है। और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है। और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उत्पादन घटता है।
7: तो सर, फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
8: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीड प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं, और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं।
7: और इससे बचने का कोई तरीका, जिससे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सके और अपने फसलों को बचा सके?
8: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं। जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए, वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए, ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफेद मक्खी है या जैसीड है। अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है।
7: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है।
8: बिल्कुल।
7: और सर, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
8: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में

0: कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे, और कुछ जैविक कीटनाशी भी है। लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे। तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे, हम लोग प्रमाणित बीज को ले और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें। खेत की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें। समय पर बुआई करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा। अच्छा। आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़े होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक एक मतलब एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत ज़रूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 g प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 g प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे
1: जी। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
0: यस, तो उड़द मैं एक लास्ट संदेश ये देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए एक बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का ज़रूरत है, और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
1: जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि
3: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाए।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: रात मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दे पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं, उन्हें बता दे मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दे कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर

30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें, इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलो

0: किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटा रीजियम स्पीक का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: आप जुड़े हैं 90.8 FM ग्रीन से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी एक ऐसी लड़की की जिसके सपने बहुत बड़े थे और हौसले उससे भी बड़े। कहानी है सुधा चंद्रन की। मुंबई में जन्मी सुधा को बचपन से ही नृत्य से बहुत प्यार था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब सुधा नृत्य की दुनिया में खो जाती थी। उनके माता पिता ने उनकी इस रुचि को समझा और सिर्फ 5 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें कला सदन नाम के एक प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय में दाखिला दिलाया। 5 साल की छोटी सी बच्ची जिन्हें बहुत सारी बातें समझ भी नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को लगा कि इतनी छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी। शुरुआत में शिक्षकों को ऐसा लगा था, लेकिन जल्दी ही सुधा की प्रतिभा ने सबको चौंका दिया। उनके गुरु KS रामास्वामी भागवतार ने उन्हें अपना विशेष शिष्य बना लिया और उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण देना शुरू किया। सुधा नृत्य में तो अच्छी थी ही बल्कि पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। उनका जीवन एक सुंदर से इंद्रधनुष की तरह रंगों से भरा हुआ था, सपनों, मेहनत और सफलता के रंग। लेकिन इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं। सपनों, मेहनत, सफलता, परेशानी, कठिनाई, इन सब के रंग सुधा के लिए अभी आने बाकी थे। किस्मत में कुछ और भी लिखा था। 2 मई 1981 का वो दिन जब सुधा की जिंदगी बदल गई, उनकी जिंदगी का वो सबसे कठिन दिन 2 मई 1981। तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान उनके दाहिने पैर में ग्रैंगीन हो गया। डॉक्टरों के पास उनकी जान बचाने के लिए एक ही रास्ता था, उनकी टांग को काट देना। एक नृत्यांगना के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उनके सारे सपने एक ही पल में टूट गए हों। लेकिन सुधा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बैसाखियों के सहारे चलना सीखा, अपने दर्द को सहा और धीरे धीरे खुद को संभाल लिया। इसी दौरान उन्हें जयपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर PK सेठी के बारे में पता चला। डॉक्टर सेठी ने उन्हें जयपुर फुट नाम का एक कृत्रिम पैर लगाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो फिर से सामान्य जीवन जी सकती है। लेकिन सुधा को सामान्य जीवन नहीं जीना था, वो तो एक नृत्यांगना बनना चाहती थी। और सुधा के मन में बस एक ही सवाल था, एक ही बात की बेचैनी कि क्या वो फिर से नृत्य कर पाएंगी, अपने बचपन का प्यार, अपना सपना जी पाएंगी। तो उन्होंने डॉक्टर सेठी से पूछा, क्या मैं फिर से नृत्य कर पाऊंगी? डॉक्टर सेठी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कोशिश करोगी तो सब संभव है। बस यही शब्द सुधा की ताकत बन गए। उन्होंने दोबारा नृत्य का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत बहुत दर्दनाक था क्योंकि कई बार नृत्य करते वक्त उनके पैर से खून निकलता, उनका संतुलन बिगड़ता और शरीर साथ नहीं देता। लेकिन मन सुधा के साथ था और सुधा अपने शरीर को बारंबार इस चीज के लिए तैयार कर रही थी कि उन्हें नृत्य करना है। उनका हौसला नहीं टूटा, उन्होंने दिन रात मेहनत की। उनके गुरु ने, उनके डॉक्टर ने और उनके घर वालों ने मिलकर उनका

साथ दिया। गुरु और डॉक्टर ने मिलकर उनके लिए एक विशेष कृत्रिम पैर तैयार किया जो नृत्य करने के लिए उपयुक्त था। धीरे धीरे कठिन अभ्यास के बाद वही सुधा जो कभी चल भी नहीं पाती थी फिर से मंच पर नृत्य करने लगी। उनका हर कदम हर मुद्रा लोगों के दिल को छू जाती थी। ये सिर्फ नृत्य नहीं था, ये कहानी थी उनके संघर्ष और जीत की। और आपको पता है उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा पर एक फिल्म भी बनाई गई मयूरी, जिसमें उन्होंने खुद अभिनय किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। बाद में उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में काम भी किया और एक सफल अभिनेत्री के रूप में पहचान भी बनाई। शायद आपने भी सुधा चंद्रन को किसी फिल्म में या फिर किसी सीरियल में देखा होगा। 1984 में जो उन्हीं के ऊपर फिल्म बनी थी मयूरी, उसमें भी उन्होंने काम किया। कई सारी हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया। हालांकि मयूरी तेलुगु फिल्म थी, लेकिन हिंदी फिल्मों की बात करें तो मालामाल वीकली, उसमें आपको वो ठकुराइन का किरदार याद तो होगा जो बड़ी कठोर थी। शोला और शबनम में गोविंदा की बहन बनी थी। रघुवीर में आरती वर्मा और मिलन फिल्म में जया। अंजाम में भी उन्होंने काम किया और उन्होंने कई सारे सीरियल्स में भी काम किया। चश्मे बदूर, हीना, रिश्ते, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तुम बिन जाऊं कहां, विष्णु पुराण, जमी से आसमां तक जैसी बहुत सारे धारावाहिकों में उन्होंने काम किया। किस देश में मेरा दिल है, कस्तूरी में मासी का किरदार निभाया, माता की चौकी में श्वेता देवी का किरदार निभाया। तो उन्होंने अपने नृत्य के साथ साथ एक्टिंग भी की। वैसे आपको बता दूं, सुधा चंद्रन के पिताजी एक अभिनेता भी थे, साथ ही उन्होंने USIS कंपनी में काम भी किया था। और उनकी बेटी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बनी और साथ ही उन्होंने अभिनय में भी अपना रंग जमाया। दोस्तों, सुधा चंद्रन की कहानी हमें ये बताती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हम हार न माने, हम अपने हौसले को कभी टूटने ना दें, तो हमारी मंजिल हमसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है। हमारे आपके सबके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमें लगता है कि अब शायद हमसे और नहीं होगा, अब हमारी मंजिल हमें नहीं मिलेगी, हमारा सपना हमसे रूठ गया। लेकिन जिंदगी में चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना आए, अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम हार ना माने, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। और ध्यान रखें कि आप खुद से तभी प्यार कर पाएंगे जब आप अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने लिए जीना नहीं छोड़ेंगे। मैं चलती हूँ, लेकिन आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की

0: समय तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं सस्य फसलों में फास्फोरस के महत्व के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फास्फोरस कितना महत्वपूर्ण है, खास तौर से सस्य फसलों के लिए, और बिहार की मिट्टी में फास्फोरस की उपस्थिति परिस्थिति क्या है। इस बारे में हमें समझाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरिका सेन ब्योरा। मैम है डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस से और मैम है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

विद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

FM Green. आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FA।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी हमेशा की तरह। और अभी गर्मी की जो बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहने, अभी चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, पर क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे में हमारी सेहत के ऊपर जो असर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और बुरा असर होता है। ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का अंदर से भी ध्यान रखें और बाहर से भी हम अपनी स्किन का, यानी कि अपनी जो हमारी ये प्यारी सी चमड़ी होती है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आप, बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आप बहुत सारा पानी पिए और साथ ही जो भी अभी मौसमी फल हैं उसका सेवन ज़रूर करें। तरबूज है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है, तो उसका भी सेवन करें। इस तरीके के मौसमी फलों का सेवन करना, खूब सारा पानी पीना और जो एक बैलेंस डाइट होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही ऊपर से भी हम अगर अपने स्किन के देखभाल की बात करें तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप कुछ फेस पैक का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अगर किसी के पेट में गड़बड़ी होगी तो आप कुछ भी कर लो, उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ परेशानी होगी ही। और भी ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है जो आपके चेहरे पर नजर आती है, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो जो सूरज की किरणें हैं वो आपको परेशान किए जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उन सूरज की किरणों को थोड़ा मात देने के लिए हम थोड़ी सी तैयारी तो कर ही लें। जी हाँ, यानी कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ही लें। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही आसान है लेकिन आपके स्किन को वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं। और इसके लिए घर पर कुछ जो रखी चीजें हैं उन्हीं चीजों से आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप

चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल तो मतलब मौसम चाहे कोई भी हो, हमारे त्वचा का सबसे अच्छा साथी होता है गुलाब जल। तो आप खीरा लीजिए और खीरे को आप कद्दूकस करके उसका, खीरे को पहले छील लेना है, ठीक है। तो खीरे को आप छीलने के बाद कद्दूकस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसमें दही और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। और अब इस फेस पैक को चेहरे पर, गर्दन पर अच्छी तरीके से लगा लेना है और 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। और फिर से मैं वही कहूँगी, तब तक 15 से 20 मिनट के लिए आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़िए, जहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती है। तो फिलहाल आगे 15 से 20 मिनट के बाद आपको करना क्या है, तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर ले। और तीसरे अगर फेस पैक की हम बात करें तो वो है एलोवेरा और चंदन का फेस पैक। गर्मी के मौसम में ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं, और ख़ास तौर से चंदन और एलोवेरा। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि सूट ना करता हो और कुछ लोगों को सूट करता है। अगर आपको जो हमारा फ्रेश एलोवेरा होता है ना, जो आप पौधे से बिल्कुल तोड़कर निकालते हैं, कुछ लोगों को वो फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो आप बाहर जो डिब्बे में एलोवेरा जेल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ना आप क्या करेंगे कि एलोवेरा और चंदन का फेस पैक बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलोवेरा किस तरीके से हमारे स्किन को मदद करता है। तो एलोवेरा ना हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चंदन तो सभी को पता है, चंदन चेहरे को बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है। इस बात से कौन नहीं वाकिफ होगा कि चंदन हमारे चेहरे के लिए क्या करता है। और गर्मियों में ये फेस पैक ना हमारे चेहरे की गर्मी को, और कई बार जो गर्मी की वजह से जलन होती है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शाम ढलते ढलते उनके चेहरे पर गर्मी की वजह से ना जलन होने लगती, तो उनके लिए फेस पैक रामबाण साबित हो सकता है। और तो अगर हम बात करें तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे की गर्मी और जलन को कम करने के लिए। साथ ही ये आपके स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है और नमी भी प्रदान करता है। और साथ ही सोने पे सुहागा, ये नेचुरल ग्लो भी लाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच चंदन पाउडर और 1 चम्मच गुलाब जेल। तो गुलाब जेल हर जगह फिट हो जाता है ना हमारे स्किन केयर में। और अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी कटोरी में एलोवेरा जेल ले। अगर आपके पास फ्रेश है और आपको फ्रेश एलोवेरा जो पल्प है वो सूट करता है तो अच्छी बात है, वरना आप जो बाहर बाजार में मिलते हैं एलोवेरा जेल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कटोरी में आपको एलोवेरा जेल लेना है, फिर इसमें चंदन पाउडर और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ सा, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर इससे आपको ना चेहरे को पहले

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफ
1: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई की विभिन्न तकनीकों के बारे में। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि धान हमारे लिए एक प्रमुख खाद्यान्न है, साथ ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। इसलिए कई मायनों में धान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि धान की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि किसान भाई बहन ये समझे, ये जाने कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की बुआई करनी चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद उमा, नमस्कार।
1: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि धान की बुआई की कितने प्रकार की तकनीकें होती हैं?
2: विशेषतः धान की बुआई जो हम करते हैं वो कई हद तक डिपेंड करती है कि किस तरह की मिट्टी है या किस तरह का जल वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम तरीकों की बात करें, विभिन्न तकनीकों की बात करें, तो बेसिकली तीन चार तकनीकें होती हैं।

तो वो मेन लाइन में काफ़ी अच्छे से उनकी जड़ें पकड़ लेती हैं। तो इसलिए पडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे मेन लाइन के लिए इस केस में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब। तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या किया हमने, पहले नर्सरी तैयार किया जब हमारा बिछड़ा गिराया हमने, और जब वो 20 से 25 दिन पुराना हो गया तो हमने उस बिछड़े को, हमने उस पौधे को, मतलब हमने उस सीडलिंग को निकाला और निकाल कर उसने अपने मेन लैंड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। और ट्रांसप्लांट करने के समय हमें ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी मिट्टी की पडलिंग काफ़ी अच्छे से हो गई हो, अतः क्या होगा कि जड़ें हमारी जो पौधे रहेंगे उसके जड़ें पकड़ेंगे नहीं मिट्टी पे। तो इसलिए ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पर कुछ विशेष ध्यान रखनी पड़ती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग में, वो ये कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें दूरी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, 20 से 25 या 20 से 10, मतलब 20 बाई 10 या 20 बाई 25, ये हमारा 20 बाई 10 या 20 बाई 15, तो ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग करने का स्पेस होता है। यानी दो रो टू रो के बीच की स्पेसिंग हमारी 20 होती है और पौधे पौधे की स्पेसिंग जो होती है हमारी 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, किस तरह की वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान देना होता है आपको कि आपकी स्पेसिंग मेंटेन रहे उसमें। और पानी हमेशा रहना चाहिए, सबसे खास बात जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस केस में हमें ये ध्यान देना, जो कि DSR में नहीं था, हमने जब ट्रांसप्लांट किया तो हमने विशेषता ये ध्यान रखना है कि हम जब पौधे को लगा देते हैं तो उसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक की पानी हमेशा हम बरकरार रखते हैं ताकि हमारा पौधा अच्छे से रहे। तो यूजुअली कहा जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो, जैसे वर्षा हो गई और वर्षा का पानी काफ़ी हद तक उस ज़मीन पर टिका रहा, तो उस केस में हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, काफ़ी आराम से कर सकते हैं। तो जिस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं होता उस केस में हम DSR कर सकते हैं। तो ये फ़र्क हो गया। और तीसरी विधि हो गई जो हमारी श्री विधि। तो श्री विधि तो और साइंटिफिक विधि हम जिसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें किसानों को विशेषतः बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ें तो हो गई हमारी नर्सरी की प्रिपेरेशन। तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, अभी जैसे मैंने ट्रांसप्लांटिंग के समय बताया हमने कहीं पे भी नर्सरी लगा दिया 20 से 25 दिन पे, तो उस केस में हमारे SRI के केस में क्या होता है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो काफ़ी एरिया में, छोटे एरिया में करते हैं, और या तो हम डिपॉग नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो उस डिपॉग नर्सरी में क्या होता है कि जब पौधे जो आपके 12 से 14 दिन के हो जाते हैं तो उस केस में हम 12 से 14 दिन के पुराने पौधों को हम उठाकर उसको अलग अलग कर करके और फिर हम मिट्टी में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं, पर ये ट्रांसप्लांटिंग से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने नर्सरी जो लगाया था पहले, तो वो 20 से 25 दिन पुराना था। यहाँ पे जो हमारा नर्सरी है वो हम 10 से 12 14 दिन पुरानी

0: उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और उसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप उसके ऊपर गनी बैग, मतलब जो जूट के बैग होते हैं, उसके ऊपर लगा दीजिए, बिछा दीजिए, और अपना हल्का हल्का पानी आप हर 2-3 दिन में देते रहिए। तो इससे क्या रहेगा कि अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा, और उसके बाद कुछ 4-5 दिनों के बाद आप गनी बैग को हटा दीजिए, देखिएगा कि वो आपका जो बीज है वो अंकुरण हो गया है। दूसरा विधि हो गया हमारा लोलैंड नर्सरी। तो लोलैंड नर्सरी तो सिंपल होता है, जहाँ पे पानी है आप पडलिंग कीजिए अपने ज़मीन पे, पडलिंग करके उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ठहर रहा है, उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका नेचुरल जैसा सीड आता है आप उसको सिंपल ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। प्री जर्मिनेटेड सीड दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर प्री जर्मिनेटेड है तो वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप प्री जर्मिनेटेड सीड ही लें और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दें, और ब्रॉडकास्ट करने के बाद, जैसे हम नॉर्मली अपना ब्रॉडकास्ट करने के बाद हम वेट करेंगे 20 से 25 दिन के बाद हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने श्री विधि के लिए बताया था, डेपोग नर्सरी। तो ये डेपोग नर्सरी के लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं कि अपने सीमेंट एरिया पे भी अपना वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर कुछ 2 से 5 सेंटीमीटर का बालू हमें परत बना लेनी है उसकी, और उस बालू के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने बीजों को काफ़ी घने मात्रा में ब्रॉडकास्ट करके, वो बीज जो हम छिड़क रहे हैं वो काफ़ी घना होना चाहिए। तो घना इसलिए होना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा, अंकुरण जब होगी उसमें और जब उसकी जड़ें आएंगी तो वो जड़ें आपस में मिल जाएंगी, मतलब वो जड़ें आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पकड़ लेंगी। तो इससे क्या होगा कि एक तरह का मैट बन जाता है। तो जब आप उसको निकालिएगा बालू से, तो आप उसको रोल करके निकाल सकते हैं, ऐसे ही रोल मैट बनाकर आप उसको खेत पे लेके जाइए। खेत पे लेके जाने के बाद हर एक एक सीडलिंग को आप अलग कीजिए और उस सीडलिंग को आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये होता है डेपोग नर्सरी। तो ये डेपोग नर्सरी हम श्री विधि में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैंने बताया था कि पानी मॉइस्चर जो होता है वहाँ पे काफ़ी स्टिकनेस होती है, तो जब आप डेपोग नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी आसानी से वो चिपक जाता है, तो इसलिए हम श्री विधि में यूजुअली डेपोग नर्सरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 बेसिक नर्सरी हैं हमारे।
1: तो मैम, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितनी तरीके से धान की बुआई होती है, साथ ही कितने प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है अलग अलग बुआई के लिए। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद मुझे।
1: तो किसान भाई बहनों, आप अलग अलग तरीके से धान की बुआई कर सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी है उस तरीके से, और साथ ही अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग तरीके से नर्सरी तैयार करनी होती है, और कभी कभी नर्सरी नहीं भी तैयार करनी होती है, जैसे कि सीधी बुआई में। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

बुआई से पूर्व बीज उपचार करना जरूरी है, क्योंकि बीज उपचार से बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है और साथ ही साथ अंकुरण अच्छा होता है। इससे पौध गलन, झुलसा और अन्य रोगों का प्रकोप भी कम होता है। तो बीजोपचार करने के दो तरीके हैं। पहला तो हम नमक के घोल से बीज का उपचार कर सकते हैं। इसे लवणीय जल उपचार भी कहते हैं। लवणीय जल उपचार के लिए हमें 1.65 kg सादे नमक को 10 लीटर पानी में उसका घोल बना लेना चाहिए और इस घोल में बीज को डालकर अच्छी तरह से हिला देना चाहिए। इससे क्या होता है कि स्वस्थ एवं भारी बीज जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के खराब और हल्के बीज ऊपर तैरने लगते हैं, और फिर ऊपर तैरने वाले हल्के एवं खराब बीज को हम बर्तन से हटा सकते हैं और शेष डूबे हुए बीज को हमें फिर से शेष डूबे हुए बीज जो वो बीज जो डूब जाते हैं वो स्वस्थ होते हैं और उन्हें हमें फिर से 2 से 3 बार पानी में धोकर छाया में सुखा लेना चाहिए ताकि इस बीज में नमक का कोई अंश ना रहे। तो इस तरह से हम लवणीय घोल बनाकर बीज का उपचार करते हैं। इसके अलावा हम रासायनिक बीजोपचार भी कर सकते हैं। रासायनिक बीजोपचार के लिए हमें सबसे पहले फफूंदीनाशी से उपचार करना चाहिए। फफूंदीनाशी यानी कि फंगीसाइड जो है वो हमें बेवेस्टीन 1 ग्राम या फिर कैप्टन या थीरम ये 2.5 ग्राम पर केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। जीवाणुनाशी दवा से उपचार हेतु स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर एग्रीमाइसिन हमें 2.5 ग्राम दवा जो है उसका

0: आदि का उपयोग कर सके और सिंचाई की क्रिया भी वहां पे कर सके। इसके बाद पौधशाला में हमें बीजोपचारित एवं अर्ध अंकुरित बीज को कदवा के ऊपर समान रूप से छींट देना चाहिए और शुरू में मिट्टी को केवल गीला रखें। जब हम उसको बीज को छींट देते हैं तो उसके बाद खेत में सिंचाई कर पहले जो है हमें पानी का 1 से 2 सेंटीमीटर तक पानी का लेवल रखना चाहिए और बाद में 4 से 5 सेंटीमीटर तक खेत में पानी को बनाए रखना चाहिए। और इस बात का हमें हमेशा किसान भाइयों आप लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बिचड़े पानी में डूबे नहीं।
1: और मैम अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: 1000 मीटर स्क्वायर की नर्सरी में हमें सबसे पहले पोषक तत्व प्रबंधन के लिए 1.5 टन गोबर खाद या 200 से 300 केजी केचुआ खाद को बुआई के 10 से 15 दिन पहले डालना चाहिए ताकि मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़े तथा बिचड़े उखाड़ते समय दिक्कत ना हो। फिर 1000 मीटर स्क्वायर में बीज की बुआई के पूर्व 5 केजी नाइट्रोजन, 5 केजी फॉस्फोरस और 5 केजी पोटास को समान रूप से छिड़क देना चाहिए, को क्यारी में समान रूप से छिड़क देना चाहिए। और फिर हमें बीजों को बहुत ज़्यादा अधिक गहराई में नहीं बोना चाहिए और बीज को अधिक घना भी ना गिराएं। 20 से 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर बीज की मात्रा इसके लिए उपयुक्त होती है। और अगर हम ज़्यादा घना बीज गिराते हैं तो इससे बिचड़े जो हैं वो पतले और कमजोर होंगे। और इसके साथ साथ ही पौधशाला को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए ताकि जड़ों का समुचित विकास हो एवं बिचड़े स्वस्थ और मजबूत हों। इसके अलावा जो हमारी नर्सरी है उसमें कीट व्याधि का भी नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ वैसे खेत जिसमें जिंक की कमी हो उसमें हम तीसरे सप्ताह में जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। इस हेतु प्रति हेक्टेयर 5 केजी जिंक सल्फेट को घोल को 2.5 केजी चूना के घोल के साथ मिलाकर 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव अगर नहीं कर पा रहे हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे ये छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे बिचड़ों को उखाड़ने के बाद भी रोपाई के पहले 2% जिंक के घोल में डुबाकर उपचारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम नर्सरी में पोषक तत्व का प्रबंधन कर सकते हैं।
1: मैम अब अगर रोपनी की बात करें तो बिचड़े रोपनी के लिए किस समय पर तैयार हो जाते हैं?
0: रोपनी के लिए सामान्यतः 3 सप्ताह के बिचड़े जिसमें कि 4 से 6 पत्तियां आ जाती हैं वो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जो है अलग प्रभेद के अनुसार बिचड़ों का जो है समय अलग अलग होता है। तो जहाँ पर हम बात करेंगे जो शीघ्र पकने वाली प्रभेद होती है जो कि हम ऊपरी जमीन यानी कि अपलैंड में लेते हैं, वो जैसे कि इस प्रभेद में एग्जाम्पल में आप जानते होंगे सौबर, दीप, सहभागी, शुष्क, सम्राट, इन प्रभेदों का बिचड़ा जो है जब वो 20 से 22 दिन का हो जाता है तब तैयार होता है। जबकि मध्यम जमीन हेतु और जो यानी कि मीडियम लैंड और जो मध्यम अवधि में पकने वाले ऐसे प्रभेद होते हैं वो जैसे कि राजेंद्र, श्वेता, सबौर, अर्ध सब

0: माइट, ये बहुत सूक्ष्म एक कीट है जो पत्तियों पर आक्रमण करता है और रस चूस के नुकसान पहुंचाता है। और ये तीनों कीड़ों को अगर ससमय हम लोग प्रबंधन ना करें तो ये सारे कीट गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचा सकते हैं।
1: तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर इनका सही समय पर प्रबंधन ना किया जाए तो काफी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये लीची के कीट किस प्रकार से लीची के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं?
0: जी, तो ये प्रत्येक जो अलग अलग कीट है जिसका जिक्र हमने किया, ये इसका नुकसान करने का तरीका अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे फल छेदक, ये फल छेदक जो है फल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसका गुद्दे को खाते, और इसके वजह से फल बाजार योग्य नहीं होते और समय से पहले वो फल गिर जाते हैं। पत्ती मोड़क जो कीट के बारे में हमने बात किया, वो कोमल पत्तियों को मोड़कर अंदर से खाता है और इसके प्रकोप से प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र कम हो जाता है और नई वृद्धि बहुत भारी रूप से प्रभावित होते। और जो लास्ट वाला कीट के बारे में जिक्र किया जिसका नाम है लीची माइट, ये कोमल पत्तियों पर आक्रमण करता है और पत्तियों के निचली सतह पर भूरे रंग की मखमली परत बन जाती है जिसके वजह से पत्तियों विकृत होकर मुड़ जाती है और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है।
1: सर, जैसे कि आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो वो अलग अलग कीट अलग अलग अवस्था में दिखते होंगे, तो कौन से कीट कौन से अवस्था में देखे जा सकते हैं?
0: जी, तो ये जो पत्ती मोड़क कीट है उसका अगर एग्जाम्पल ले और माइट का भी एग्जाम्पल ले, तो ये दोनों कीट नई शाकीय वृद्धि के समय दिखाई देते हैं। फल छेदक मुख्यतः पुष्पन और फल विकास की अवस्था में दिखाई देता है। इसके लिए किसानों को फूल आने, फल बनने और नई पत्ते के समय बाग की नियमित निगरानी बहुत अच्छे से करना चाहिए।
1: सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि नए बाग की निगरानी करनी चाहिए, तो ऐसे में ये

0: कुछ उपाय है, जैसे नीम तेल उसका 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। ये एक पर्यावरण के अनुकूल एक उपाय है और इससे रस चूसने वाले कीट तथा छोटी सुंडिया ये सब जो है इनके अगेंस्ट में ये बहुत कारगर होता है। कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो आपका क्षति पहुंचाने वाला कीट है उसको खा जाते हैं, जैसे मकड़िया, लेडीबर्ड बिटल, लेस विंग, तो इसको बचा के रखना चाहिए, हम कहें कि संरक्षण करना जरूरी है।
1: सर, अगर प्रकोप अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसान भाई बहन क्या करें?
0: जी, तो यदि कीटों का संख्या आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच जाए तो स्थानीय जो कृषि विशेषज्ञ है उसका सलाह लेना चाहिए। फिर भी मैं 2-3 केमिकल का नाम यहाँ पे जिक्र करूँगा, जैसे फल छेदक और फली पत्ती मोड़क के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट बोल के एक दवा आता है, जिसका 5 SG मतलब सोल्यूबल ग्रैन्यूल, उसका 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और माइट के लिए फेनाजक

के काम में ला सकते हैं। इसके गुठलियों के रेशा से बुश बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ तक के चिकित्सक कहते हैं कि आम जो है वह ब्लड और वजन बढ़ाने में कारगर साबित होता है, यदि इसके हम नियमित रूप से अपने डाइट में लें। यदि कितने लोग दुबले पतले हैं, वो वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए आम एक बहुत अच्छा आहार है। और इसके अलावा इसके नियमित सेवन से त्वचा में निखार आता है। इसमें चूंकि विटामिन्स मिनरल्स पाया जाता है, तो ऑटोमेटिक है और ये

0: जो हमारा फल सब्जी है वह उत्पादन होकर जो उपभोक्ता तक जाने से पहले ही खत्म हो जाता है,
1: खराब हो जाता
0: यदि
1: है।
0: उसको हम परिरक्षित करके बचा लेते हैं तो हम एक तरह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ा लिए, क्योंकि जो खराब हो रहा था उसको बचा लिए। इसके बाद यदि हम इसको घरेलू स्तर पे करके महिलाएं करती हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ऑक्सीजन में यूज करती है तो खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा हासिल होता है। इसके अलावा यदि वो इसको स्वरोजगार रूप में अपनाती है तो आमदनी भी होता है, रोजगार भी होता है। घर बैठे महिलाएं इसका करती है तो महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। युवाएं इसको करते हैं तो युवाओं का पलायन हमारा रोकता है, उनको घर में अपने रोजगार मिल जाता है। इस तरह से हम काफी फल सब्जी का काफी महत्व है और इसको हमें अवश्य करना चाहिए।
1: जी मैम, देखा जाता है कि तेल युक्त अचार तो बनाए जाते हैं आम के, लेकिन क्या लोगों के मन में सवाल है कि क्या तेल रहित अचार इसके बनाए जा सकते हैं?
0: बिल्कुल अनु, तेल रहित अचार हम बना सकते हैं और तेल रहित अचार आजकल बहुत लोकप्रिय भी हो रहा है।
1: अच्छा।
0: इसको बनाने के लिए कच्चे आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, उसमें 20% नमक, 7.5% पीसी लाल मिर्च और 1% हींग जो है, जो तो जो हमारा आम को मेजर कर लेते हैं उसके भार के अनुसार उसमें मिलाते हैं और मिश्रण को बार बार हिलाते हुए उसे कुछ घंटे धूप में रखते हैं। उसके बाद उसको बोतल में डाल देते हैं और 4-5 दिन तक उसको धूप में लगाते हैं। उसके बाद फिर वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। उसको आप अच्छे स्वच्छ जगह पर भंडारित कर दीजिए, उसको उपयोग कीजिए। इसमें आपको तेल की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: हाँ, मतलब आप अगर तेल आपको पसंद नहीं है और तेल रहित आप अचार बनाना चाहते हैं वो भी बन सकता है इसे। मैम, अब बात करते हैं आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद की। ये जानकारी सभी लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से मूल्य संवर्धित उत्पाद हम बना सकते हैं इससे।
0: आम के बहुत ढेरों सारे मूल्य संवर्धित उत्पाद है, जैसे एक तो आप तेल रहित अचार मैंने आपको बताया, इसके अलावा तेल युक्त अचार जो कि हम

दें टुकड़ों में काट लें। यदि गुठली वाला है तो टुकड़े में नहीं भी काटते हैं तो उसको पूरा डाल दें, लेकिन यदि गुठली नहीं हुआ है तो टुकड़े में काट करके बीज का जो आपका बीज है उसको निकालना अति आवश्यक है, नहीं तो उसको पकाएंगे तो वो चूंकि हार्ड नहीं हुआ रहता है तो वो स्वाद को खराब कर देता है। इसलिए यदि छोटा फल है तो उसको टुकड़ों में अवश्य काट करके बीज का जो बीज है उसको निकाल लीजिए। यदि आपका पूरा मैच्योर है तो गुठले में नहीं भी टुकड़े में काटते हैं तो उसको एज सच भी आप उबाल सकते हैं। तो या तो आप टुकड़े में काटिए या फिर गुठली सहित है तो आप उसको ऐसे छील करके बराबर पानी के साथ उसको हम लोग पूर्ण रूप से गल जाए तब तक उसको हम लोग उबालते हैं। उसके उबालने के बाद उसको या हमारे पास यदि मशीन है पल्पर है तो पल्पर में डाल करके उसको गुदा को अलग कर लेते हैं, रेशा बीज को अलग कर लेते हैं। यदि नहीं है तो हम हाथ से मसल करके गुठली को हटा देते हैं। मिक्सी है तो मिक्सी में उसको हम लोग थोड़ा पीस लेते हैं। उसके बाद कपड़े से मसलिन के कपड़ा मार्किन के कपड़ा से छान करके उसके गुदा को हटा लेते हैं, रेशा को साइड कर देते हैं। इसके बाद उस जो आपका गुदा हुआ है उस गुदे को हम लोग थोड़ा सा हल्का सा भफा लेते हैं, क्योंकि हम लोग हाथ लगाए हैं, भफा करके उसको रख लेते हैं, ठंडाने देते हैं। और हम लोग जितना रस निकला उस रस को मेजर करके उसका डेढ़ा चीनी लेते हैं, चीनी का आधा पानी लेते हैं। चीनी पानी का हम लोग आंच पे चढ़ा करके जब तक चीनी नहीं गल जाए तब तक पकाते हैं, उसके बाद हाँ चाशनी बनाते हैं। उसके बाद प्रति केजी चीनी के उसमें हम लोग 4 से 5 ग्राम 4 ग्राम क्योंकि कच्चे आम का बना रहे हैं इसलिए 4 ग्राम साइट्रिक एसिड डालते हैं। उसके बाद जब चाशनी हमारा चाशनी और आम दोनों जो आम का रस दोनों ठंडा जाता है तो धीरे धीरे आम के चाशनी को हम लोग आम में डालते हैं, गूदा में डालते हैं और धीरे धीरे चलाते रहते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग जब पूरे अच्छे से मिल जाता है तो 5 लीटर स्क्वैश में आपको 3 ग्राम KMS की दर से थोड़े से पानी में घोल करके उसमें मिला देते हैं और आप इसको अब ये आपका बॉटलिंग कर देते हैं और इसको आप पैक करके रख दीजिए। इसको जब पीना हो तो 3 से 4 भाग पानी मिलाकर 1 भाग ये मिलाकर आप इसको पीजिए और इसका आनंद लीजिए। इसी तरह से आप पके आम का भी स्क्वैश बना सकते हैं, बिल्कुल यही प्रक्रिया है। आपको पके आम में जैसे यहाँ आप 4 ग्राम साइट्रिक एसिड डाले तो वहाँ 5 से 6 ग्राम साइट्रिक एसिड डालिए प्रति केजी चीनी के हिसाब से और उसको आपको कच्चा आम को आपको उबालना पड़ा पानी से तो उसमें उबालना नहीं, उसको सीधा छिलका कुछ हटा करके उसके गुदे को निकाल लेना है, गुदा को भफा लेना है। भफा के जैसे कच्चे आम के लिए प्रक्रिया है उसी तरह पके आम के स्क्वैश बनाने की भी प्रक्रिया वही है। इसी तरह से आप उसका स्क्वैश बना सकते हैं। इसके बाद आपका आम का जैम बना सकते हैं। ये कच्चा और पके दोनों आम का जैम बना सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए कच्चा आम है तो उसको छील करके टुकड़ों में काट लीजिए, फिर थोड़ा सा पानी में से गर्म करके गुदा को नरम कर लेते हैं। अब गुदे की मात्रा का 3/4 या बराबर, मान लीजिए खट्टा आम है तो बराबर चीनी दे दीजिए, यदि पका आम है तो 3/4 में चीनी मिला करके पकाते हैं। उसी यदि पका आम, ये तो कच्चे आम का हो गया, यदि पका आम हम लेते हैं तो पका आम का गुदा लेते हैं उसी के मात्रा में चीनी डालकर उसको पकाते हैं। अब

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

उसको दूर, बगीचे से दूर आप जो है गड्ढे बना करके उसमें डाल दें और उसको ढक दें। इसके बाद आप विटेबल सल्फर 0.3% 1 ग्राम पर 1 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसका छिड़काव करें, और छिड़काव जो है 20 दिन के अंतराल पे 2 बार करें। इससे आपको, लेकिन आवश्यक है कि जो भी आक्रांत टहनियाँ हों उसको काट कर आप बिल्कुल हटा दें और बगीचे में ना छोड़ें। और इस तरह से जो है आप लीची के माइट से आप बचाव कर सकते हैं अपने लीची को। उसी तरह से अगस्त सितंबर के महीने में शूट गॉल का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, प्रभाव देखने को मिलता है, तथा जाला बनाने वाले भी टेंट कैटरपिलर का प्रभाव भी बहुत होता है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे प्रथम जाला साफ करके प्रभावित भाग को काट देना चाहिए, और अधिक प्रकोप होने पर 0.2% कार्बरिल का 3 ग्राम प्रति लीटर या 0.04% मोनोक्रोटोफॉस यानी कि 1 ml प्रति लीटर मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव करना चाहिए। रेड रस्ट या एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण हेतु, क्योंकि

आम में या बहुत सारे फूल या फल के पौधों में लगते हैं कि छोटा छोटा उजले रंग का थोड़ा सा गद्देदार टाइप का जो है वो कीड़े जो है लग जाते हैं, खासकर जो मुलायम पत्तियां होती हैं टिप पे बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप होता है, उसको मिली बग कहते हैं, या आम में उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको गुजिया किट भी कहते हैं। इसके रक्षा हेतु दिसंबर माह में तने पर भूमि से 40 मीटर की ऊंचाई तक मिट्टी का लेप लगा दें, उस मिट्टी में क्लोरोपायरीफॉस का भी आप समावेश कर दें, और मिट्टी का लेप लगाने के बाद जो है इसके ऊपर, उस मिट्टी के लेप के ऊपर 25 सेंटीमीटर चौड़ाई की पॉलीथीन आप लपेट दें, और उसके ऊपर नीचे, पॉलीथीन के ऊपर और नीचे दोनों भाग में को आप सुतली से बांध दें, तने तने के धड़ को चारों तरफ से सुतली से बांध दें, और पट्टी के नीचे की तरफ थोड़ा सा ग्रीस लगा दें, क्योंकि इसी महीने में वो मिली बग के जो लार्वा होता है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। अगर आप वो प्लास्टिक की पट्टी लगा के उस पर ग्रीस लगा देंगे तो गुजिया कीट जो है उसे पार नहीं कर पाएंगे, वो वहीं पर चिपक रह जाएंगे, और यदि कीटों का प्रकोप अधिक हो तो ये आवश्यक है कि मिट्टी में क्लोरोपायरीफॉस को भी 200 ग्राम प्रति पेड़ की दर से मिला दीजिए, और उसके बाद से उसको प्लास्टिक से लपेट करके और नीचे और ऊपर पोर्शन में ग्रीस लगा दें, ताकि आप जो गुजिया कीट से आप बचा सकें।

फ़ोन को चला रहे हैं, दिन भर फ़ोन चला रहे हैं और सोने से ठीक पहले भी आप फ़ोन चला रहे हैं, तब तो आपको नींद आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपकी नींद बहुत हल्की आती है, आपकी नींद बार बार टूट जाती है और जब आप सुबह जागते हैं तो आपको बहुत थकान लगती है। तो साइंस और आयुर्वेद दोनों को माने तो रात 9:30 से 10 बजे तक सोना सबसे सही है और सुबह 5 बजे से 6 बजे तक जगना सबसे बेहतर माना जाता है। और जो लोग दिन भर स्क्रीन पर काम करते हैं वो सोच रहे होंगे हम क्या करें, हमारे पास तो हमेशा ब्लू लाइट रहता है, तो आप दिन में काम कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी या तेज़ लाइट वाली कोई भी चीज़ है तो उसे बंद कर दीजिए। आप दिन भर काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वैसे तो कहा जाता है कि सोने से 3 घंटे पहले ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो कम से कम 1 घंटा पहले तो ये काम ज़रूर करें। तो आप सोने से पहले कर क्या सकते हैं, तो आप हल्का संगीत सुनिए, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो पढ़िए, पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। और एक रूल बना लें कि बिस्तर पर मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है। और इसके साथ ही अब तक हमने मोबाइल के बारे में बात की, हमने कहा ना आपको कि रात में जो हमारा शरीर होता है वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है, उसे ठीक ठाक करता है। तो उस दौरान अगर हमारा शरीर सोचिए खाना पचाने में लग जाए तो हमारा शरीर रिपेयर कब होगा, इसलिए सुझाव दिया जाता है कि देर रात खाना नहीं खाना चाहिए, खास तौर से सोने के 3 घंटे पहले तक आप अपना खाना फिनिश कर लीजिए। और अगर आपको उसके बाद कुछ खाना भी हो तो बहुत हल्का, तला भुना नहीं और बहुत स्पाइसी मत खाइए। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लग ही गई हो या फिर आप काम में बिजी रहे और आपको खाने का वक्त नहीं मिला तो, ये कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन आमतौर पर आपको सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि खाना जो होता है हमारा 3 घंटे में पच जाता है और जब हम सोएंगे तो हमारा शरीर खाना खाने में वक्त नहीं लगाता बल्कि वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है। और अगर हम सिंपल सी बात करें तो कितनी नींद से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोते कब हैं और क्या आप निश्चित वक्त पर सोते हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आज से आप समझ जाइए कि अगर आप 12 बजे सो रहे हैं ना तो रोज़ 12 बजे सोइए, अगर आप 3 बजे सोते हैं तो रोज़ 3 बजे ही सोइए, और अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो रोज़ 10 बजे सोइए। हाँ, कभी कभार 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आपके सोने और जागने का समय निश्चित हो। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से 10 बजे तक नहीं सो सकते हैं, आपका काम लंबे समय तक चलता है, 12-1 बजे तक चलता है, तो कोई बात नहीं, हर रोज़ 1 बजे सोइए, आपके शरीर को पता लग जाएगा कि यही है हमारा स्लीप साइकिल, हम 1 बजे के बाद ही सोएंगे और 1 बजे के बाद ही हमें अपने शरीर को रिपेयर करने का काम करना है, तो आपका शरीर वैसे अपने आप को ढाल लेगा। हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि वैसे मुझे तो रात का कोई काम है नहीं, हमारा सारा काम तो शाम को ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर हम 10 बजे बिस्तर पर जाएं भी तो हमें नींद ही नहीं आती। कहाँ से आएगी आपको 10 बजे नींद, क्योंकि आपके शरीर को पता है कि आप तो 2-3 बजे सोने वाले प्राणी हैं। इसलिए अचानक अगर आप अपने शरीर को कहेंगे कि आपको 10 बजे अब सोना है तो आपका दिमाग स्लीप हार्मोन नहीं रिलीज करेगा। इसके लिए आपके शरीर को धीरे धीरे इस आदत में ढालना होगा। अगर आप मान लीजिए कि आपको रात के 1 बजे हर रोज़ सोने की आदत है, उसी वक्त आपको नींद आती है, तो आप पहले दिन क्या करेंगे कि आधा घंटा टाइम पीछे करेंगे, यानी कि आप उस दिन 12:30 बजे सोने की कोशिश करेंगे और फ़ोन 11:30 बजे तक चलाना बंद कर देंगे। और 12:30 बजे अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। ये काम आप 1 हफ्ते करेंगे, फिर उसके बाद जागने का भी उसी तरीके से, अगर आप 9 बजे सुबह जाग रहे हैं तो जागने का भी समय आधा घंटा पीछे कर दीजिए। बस 1 हफ्ते आप ऐसा कीजिए, फिर देखेंगे कि खुद ही आपको 12:30 बजे नींद आ रही है और आप 8:30 बजे जग जा रहे हैं, फिर आधे घंटे और पीछे करिए। इसी तरीके से कुछ दिन लगेंगे, हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, लेकिन आपका जो रूटीन है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। किसी भी अच्छी चीज़ को करने में वक्त तो लगता है ना, और अच्छी आदतें बनाना तो बहुत मुश्किल है, अच्छी आदतें बहुत मुश्किल से बनती है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, अच्छे से सोइए और अच्छे से जागिए और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, फ्रेश रखिए, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ये कहावत हमारे यहाँ बहुत मशहूर है। इसका मतलब होता है कि अकेले रहकर हम कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम संगठित हो जाएं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसान अगर संगठित हो जाए, यानी कि अगर हम किसानों का संगठन बना ले, जिसे कि हम FPO कहते हैं, तो फिर किसानों की कमाई बढ़ सकती है और बहुत तरह के उन्हें लाभ भी मिल सकते हैं। तो आज हम FPO के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि किसान संगठन के बारे में बात करने वाले हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे जी। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, आप हैं सहायक प्राध्यापक। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार मैडम।
1: मैम सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि किसान संगठन या फिर जिसे हम FPO भी कहते हैं वो क्या है और हमारे किसान भाई बहन अभी भी इससे अनजान कैसे हैं?
2: जी ये आपका बहुत ही बुनियादी सवाल है। देखिए बिहार में अधिकतर किसान छोटे या सीमांत हैं, उनके पास जमीन कम है।

0: लेकिन अगर संगठन संगठित होकर मिलकर मखाना की ग्रेडिंग करें, उसे पैकेजिंग करें, ब्रांडिंग करें, तो मुनाफा दोगुना तीन गुना तक हो सकता है।
1: जी मैम, तो मुनाफा हो सकता है अगर हमारे किसान भाई बहन संगठन से जुड़े, लेकिन अब सवाल यह है कि वो संगठन से कैसे जुड़े, या फिर अगर वो आपस में संगठन बनाना चाहें तो उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से वो सरकार से मदद ले सकते हैं।
0: जी, तो सबसे पहले तो जो किसान भाई बहन है उन्हें अपने क्षेत्र में कम से कम 10 से 20 जागरूक किसान जो है उनके साथ एक बैठक करने की ज़रूरत है। अपने जिले के कृषि विभाग या कि नाबार्ड उनके कार्यालय में संपर्क करने की ज़रूरत है। सरकार भी FPO बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देता है और विशेषज्ञों की मदद भी देती है। बिहार में जीविका के माध्यम से भी कई महिला किसान संगठन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
1: मैम, अब मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से बताएं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, और चरण दर चरण अगर कोई किसान भाई बहन चाहें FPO बनाना तो किस तरीके से बना सकते हैं।
0: जी ज़रूर, तो इसका जो तैयार होने का प्रक्रिया है ये मुख्यतः तीन चरणों में होता है। किसान संगठन मुख्य रूप से एक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। तो पहली प्रक्रिया में क्षेत्र और फसल का चयन किया जाता है। सबसे पहले एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जाता है जहां किसान एक जैसी फसलें उगाते हों। जैसे आम उगा रहे हैं तो सारे किसान आम उगाएंगे, मखाना की खेती हो रही है तो सारे किसान मखाना की खेती करेंगे, या सब्जी की वो FPO होने वाला तो सारे किसान सिर्फ सब्जी ही लगाएंगे अपने खेत में। फिर कम से कम 10 या उससे अधिक प्राथमिक जो किसान हैं, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी आवश्यकता होती है। हालांकि एक सफल FPO के लिए कम से कम 300 से 500 किसानों का लक्ष्य रखा जाता है। उसके बाद बारी आती है पंजीकरण कराने की। तो इसके लिए कम से कम 5 निदेशक जो कि बनाए जाते हैं किसानों के बीच से ही, उनका डिजिटल हस्ताक्षर जिसे DSC कहते हैं और DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वो बनवाना होता है। उसके बाद उस संगठन की नाम की स्वीकृति ली जाती है। अपने जो कंपनी बनाई है इसके लिए एक बहुत ही यूनिक सा नाम चुना जाता है और फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के से वो स्वीकृत कराया जाता है। उसके बाद बारी आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करने की, जिसमें कंपनी के नियम लिखे जाते हैं। उसके बाद आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र ROC के द्वारा जांच के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके बाद आप इसके प्रबंधन और

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।